0: a deathly silence around this makeshift mass burial ground here in Bharatpur district in Nepal. What you see behind me is where more than 300 unidentified bodies have been temporarily buried. Bodies recovered from the Narayani River over the last several days, ever since the flash floods struck. They have been brought here because the morgues and other facilities simply do not have the capacity to hold such a large number of bodies for an extended period. But this is not a final burial. The process of identifying these people continues, and there is another challenge here. As you can see, it continues to rain through the day, and the rain is softening the soil around these graves, making the ground more difficult to work with, and any future exhumation will be even more complicated. So let's tell you how these bodies will be ultimately identified. Bharatpur district, which is about 200 kilometers away from Kathmandu right now. To my left, you can see a lot of personnel from the Nepal police. One of them has a drone on him, and he set that drone off to find any indication of bodies or survival in the Narayani River here to my right. There are boats also. Rescue operations continue. According to the Nepali police, what we've got to know is from this river, the Narayani River, 355 bodies have already been recovered. About 335 have been buried for now. Of course, this is temporary burials that are taking place. Remember, Nepal cremates its people. It's a Hindu nation, but for now, temporary burials are taking place, given that they have not been able to identify these bodies, or the families have not claimed these bodies yet. That's the drone there. They're trying to look for any indication of any bodies or survival. This will continue through the day today for the next few hours. There's an overcast sky for now. That's the drone there on top that you see. It's going to go again into the river in a while from now for any signs of survival. Decomposed bodies, two of them, we believe both are of men, are now being pulled out of the boat by the teams there. You can see 1, 2, 3, 6 people who are helping with those bodies, I believe. And of course, they are in a highly decomposed state. They've been in the river for many days now. For almost 9 days, these bodies have been in the river. As you can see, these bodies are being taken away from the boat. All right, so those bodies are being kept here for now. I've been told that they'll be taken to the mortuary after this, after which these bodies will be, there'll be a DNA testing that will happen. There'll be an identification number that will be given to these two bodies. Then they will be temporarily buried till someone comes and claims those bodies based on the DNA evidence that is there. As you can see in Bharatpur, the tragedy continues to unfold every day through these people who've been on the ground relentlessly working, trying to find and recover these dead bodies, and through drones that have been used to identify these dead bodies in the Narayani River. These bodies are being pulled out on a daily basis. All right, so one of the bodies is now being taken to the ambulance. Like I said, there's a very strong stench coming from the body, highly decomposed. We believe it's of a man, the body, that has been lying in the Narayani River. It's been floating in the Narayani River now for 9 days. This body is being taken to the ambulance, which is still about 35, 40 meters away from us. This body will then be taken to the morgue, like I said. DNA sampling will be done. There will be an identification number that will be given to the body, and then the body will be temporarily buried. Remember, Nepal being a Hindu nation, they cremate bodies, but given the number of bodies as of now, they're temporarily burying these bodies till a family member comes to claim them. It's now being taken all the way to the ambulance, after which it'll be taken to the morgue. This is Vedika Sood for NDTV in Bharatpur district of Nepal.
1: Well, Nepal's rescue teams continue search operations along the Bhotekoshi River as well, recovering bodies amid deep debris and the challenging conditions that we have been showing you. Nepal's Prime Minister Balendra Shah has said that the scale of this devastation shows that countries in the Himalayan region were facing increasing risks alongside the effects of climate change. My colleague Sikta Deo brings us this report from Ground Zero.
2: We are at the Bhetravati Bazaar of Rasuwa district in Nepal, and this bazaar, this market was a place of 500 or more shops, and this is what is left after the flash floods which hit this area. These are the ruins which are now witness to that massive flood which hit Nepal, and Nepal is now at the crossroads of moving ahead. If we can zoom in and show, the rescue team is still working day and night to extract the bodies which are submerged under the debris. If this was a place of 500 or more shops, then obviously the number of people who were living here and who were here that morning, that's unaccountable. There's no particular figure the local administration or the government can give, but it was a buzzing place where every morning a lot of activity used to be the focal point of this Bhetravati Bazaar. And the extraction teams are here trying to locate if there are bodies, if any, under the debris. The river flowing here was a narrow, small mountain river which used to merge into Bhotekoshi ahead. But after the flash floods, this river has also widened and is flowing with equal force like the big Bhotekoshi River. So that's the geography has changed of this terrain. The geography has changed of this marketplace. The losses are uncountable. The human lives are still being traced and the rescue work is still on. We are in Bhetwadi right now, and we have reached the banks of Bhotekoshi River with this rescue team. There was a forward party who was working around this area. They got a sense that there is a dead body under the debris submerged, and then they informed the people up there, the other team members, and then the team members have arrived and they have excavated this body from the debris. And right now the wait is for the helicopter to reach here and airlift this dead body which has been recovered from this debris. Behind me is also this house to give you a sense how high those waves of flash floods were, which came with mud, silt, stones, boulders, and submerged everything which came its way. So the process now here is simple. There are many missing, many family members are waiting to hear some news about their near and dear ones who have been missing for last so many days. And the government has assured them that the rescue work won't be stopped.
1: You know, a hydropower project worker in Nepal has spoken to us, and they have told us about their tunnel escape. Vishnu Bahadur Thapa described the scene as he was among the 35 workers who were rescued soon after the deadly gush took death and destruction further downstream. For Vishnu Thapa and 34 others, it took 2 hours of finding their way through water and dark in the tunnel before they saw the light. Take a look at Sikta's report.
2: आप हाइड्रो पावर प्लांट में काम करते थे, उस दौरान टनल के अंदर आप थे उस वक्त जब ये पूरी बाढ़ आई. हमको एक्सप्लेन करिए क्या हो रहा था अंदर टनल के. जब आप अंदर टनल में,
3: अंदर के टनल में पहले बाद में हवा चढ़ गया ना, बहुत बहुत हवा आ गया. लेकिन हवा आ गया तो हम लोग को साथी और बोल रहा है कि लेकिन अभी हवा हो रही आ रहा है, हाँ भूकंप आ रहा है ऐसा बोल रहा है. लेकिन बाद में हम लोग को बत्ती आया था, लेकिन बाद में बत्ती गया नहीं. लेकिन अब बत्ती गया तो अभी भागने के चांस नहीं मिला. हम लोग ऐसे ऐसे करके हम लोग इतना देखा है पौड़ी खेल के
4: कौन से टनल की बात कर रहे हैं?
3: यहाँ हम लोग का थ्री बी टनल बहुत मुश्किल से आ गया ना, बहुत मुश्किल से होता है ना, अब बहुत अंदर से आ गया ना तो ऐसा होता ना, लेकिन अंदर में बत्ती नहीं है, नहीं था, है ना, लेकिन अब
4: आप जो अंदर लोग फंसे हैं उनकी मुश्किल को समझ पा रहे होंगे आप?
3: लेकिन बाद में अभी बारिश तो कम हो गया ना, कम हो गया फिर अंदर से गिर गए निचके आना।
4: आप लोग कितने घंटे में बाहर निकले?
3: मैं दो घंटे
4: आप दो घंटे में बाहर निकले और आपको लग रहा है कि आप उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन वो लोग तो 8 दिन से अंदर बंद हैं।
3: बंद वो लोग तो क्या हुआ था मालूम नहीं,
4: सोच भी नहीं पा रहे क्या होगा उनके साथ,
3: क्या हुआ मालूम नहीं।
4: पर आप जब बाहर निकले दौड़कर अपनी फैमिली के पास गए, सुरक्षित हैं सब आपके घर में?
3: अभी सुरक्षित है,
4: सब ठीक था आपके घर में? आपने दूसरी जिंदगी अपने लिए छीनी है किस्मत से, है कि नहीं?
3: दूसरा जिंदगी तो ऐसे लिया है ना, अभी मर के निसके है ना,
4: अभी आपने तो छीनी है अपने लिए, आप ये आपकी जिंदगी है, इस पर हक आपका है।
3: ऐसा है।
4: तो अब हाइड्रो प्रोजेक्ट जब दोबारा सेटअप किए जाएंगे आप लौटेंगे काम के लिए, क्या फैसला लिया?
3: अभी तक तो अब क्या हुआ मालूम नहीं सोचा है ना, नहीं सोचा है मैडम। अब दूसरा अब जिंदगी में अभी बोला था अब हाइड्रो चल रहा है या न चल रहा मालूम नहीं। अभी
4: आप करेंगे फिर से हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम?
3: अच्छा अभी चलेगा तो करेगा,
4: करेंगे, डरे नहीं है आप?
3: डर नहीं है,
4: बहादुर हैं आप।
3: नहीं है
4: अभी स्ट्रांग है, बहुत बहादुर हैं, बहुत ब्रेव।
3: हमने अलग लिया ना, अब फैमिली है, अब पैसा कमाना है ना, अभी पालना है, फैमिली पालना है, इसलिए अब दूसरे उसमें बाद में चलेगा था।
4: कोई बात नहीं, अब आगे की जिंदगी बची है, बिल्कुल
3: जाएगा।
4: तो ये है नेपाल का हौसला और इसी तरह से नया नेपाल भी अब बनेगा।
1: You must know that authorities in Nepal have been working for days to find more survivors of the devastating flash flood that ravaged their country. Their flood relief effort is now seeing a strong volunteer push. Prabhakar Kumar has been covering the strong volunteer push. This is the report he sent across.
5: नेपाल में जो त्रासदी हुई है उसका सबसे दिल दहलाने वाला अगर आपको नज़ारा देखना है तो पशुपति नाथ मंदिर के पीछे का ये घाट देखिए, आपको लगातार जो है वो डेड बॉडीज जलती हुई दिख रही हैं और इसमें ज़्यादातर जो बॉडीज़ हैं वो हैं जो इस घटना का शिकार हुई हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा जो आपको चौंकाएगी और सबसे ज़्यादा जो आपको परेशान करेगी वो ये देखिए, अगर मैं सामने आपको दिखाऊँ तो ये जो पूरे परिवार खड़ा है ये कूश का बॉडी जा रहा है, यानी कि इन्होंने घास और कूश का बॉडी बनाया है और वो बॉडी ये उसका दाह संस्कार कर रहे हैं। इनके जो परिजन हैं जिसके लिए दाह संस्कार कर रहे हैं वो परिजन की डेड बॉडी मिली नहीं है, लोगों ने उन्हें मरा हुआ मान लिया है और उसके बाद जो कूश का यानी कि जो पुआल होता है उसका ये बॉडी बना के और उसका दाह संस्कार कर रहे हैं। तो आप देखिए वो पशुपतिनाथ के मंदिर में तो इतने हृदय विदारक दृश्य है, हालांकि ये कैमरे पे बहुत सारे लोग बात करने से हिचक रहे हैं, उनके लिए अभी ये बहुत ही दुख की घड़ी है तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उनसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए जो चिता सजाई गई है उसमें ऊपर में कुश का एक पुतला बनाया गया है, यानी कि पुआल का एक पुतला बनाया गया है, उसे डेड बॉडी मान के जलाया जा रहा है क्योंकि डेड बॉडी जो है जिनकी मृत्यु हुई है उनका बॉडी मिल नहीं रहा है और परिजनों ने ये उम्मीद खो दी है कि अब उनका बॉडी उन्हें मिलेगा।
1: On that note, let's turn our attention to Uttar Pradesh, which is battling a widening flood situation, with 23 districts currently affected as rivers continue to swell after the incessant rainfall. More than 16,000 people have been evacuated so far, with at least 15 deaths that have been reported and that are rain-related. Around 1,500 boats, meanwhile, and over 1,000 medical teams have been deployed as part of the rescue and relief operations there. Chief Minister Yogi Adityanath conducted an aerial survey as far as Farukabad is concerned and distributed relief material to over 1,000 affected families. The Uttar Pradesh government says 24-hour control rooms, relief posts along with camps are operational. We've got some crucial reactions lined up for you, including from the Chief Minister. Listen in, followed by my colleague Ravish's report.
6: एक ओर हमारी संवेदना पीड़ितों के प्रति है, दूसरी ओर बाढ़ राहत कार्य के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम, बाढ़ चौकियां, राहत शिविर और जिन गांवों में बाढ़ का पानी घरों के अंदर घुस चुका है वहां पर उन सभी प्रभावित परिवारों के लिए राहत सामग्री की किट उपलब्ध करवाने की व्यवस्था। आपने देखा होगा ये राहत सामग्री का जो किट है ये लगभग 50 किलो का है, 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, यानी इस प्रकार की लगभग 50 आइटम उसके साथ जुड़ी हुई हैं।
7: माननीय प्रधानमंत्री जी का 10:37 पर एक फोन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बात करना चाहते, तो उस समय हम लोग वार्ड में ही घूम रहे थे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुझे लगता है कि जितना मुझे जानकारी है उससे अधिक जानकारी उनको अपने संसदीय क्षेत्र का है, उन्होंने गंगा जी का बाढ़ की स्थिति क्या है, कहाँ कहाँ पानी आया, मैंने जो बताया उन्होंने कहा कि रविदास गेट पर क्या स्थिति है, घाट पर क्या स्थिति है, अस्सी घाट की क्या स्थिति है, ढेलवरिया की क्या स्थिति है, नखी घाट की क्या स्थिति है, बरुणा का पानी कितना आगे गया है। तो एक नेता, एक सांसद अपने क्षेत्र के बारे में कितना चिंता कर सकता है, ये बहुत बड़ी बात है, उन्होंने दिशा निर्देश दिया।
8: मैं इस वक्त बनारस के मणिकर्णिका घाट पर हूँ जो कि एक यहाँ के बारे में किंवदंती है कि कभी भी जो चिता है यहाँ पर जलती हुई वो शांत नहीं होती है, लेकिन ये भी आप देखिए कि बाढ़ के वजह से लोगों को खासी यहाँ पर परेशानी हो रही है। ये बनारस की गंगा नदी है जो कि फिलहाल काफ़ी जलस्तर बढ़ने से कई सारे इलाकों में, निचले जो इलाके हैं वाराणसी के, वो उसमें पानी भर गया है और ना सिर्फ गंगा नदी बल्कि जो वरुणा नदी बहती है उसमें भी पानी काफ़ी बढ़ा हुआ है, कई सारे जो निचले इलाके हैं वो पानी में डूब गए हैं। अब ये आप देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं कि मणिकर्णिका जो घाट है वहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए रोजाना सैकड़ों जो चिताएँ हैं वो लोग लेकर आते हैं और आप देखिए कि नाव के ज़रिए अब यहाँ से लोग अंतिम संस्कार करने के लिए आ रहे हैं। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो DM है यहाँ के वाराणसी के, उनसे बात की है और उनको ये कहा है कि बाढ़ग्रस्त जो भी इलाके हैं वहाँ पर राहत की जो योजनाएं हैं और जो मदद है उसको जल्द से जल्द पहुँचाया जाए। लेकिन निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि बनारस के अगर पूरे घाट की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर घाट इस वक्त डूब चुके हैं और वहाँ पर नाव के ज़रिए अब यहाँ पर आप देखिए कि आवागमन हो रहा है।
1: All right, you must note that in Uttar Pradesh, the BJP is now taking its political outreach deeper into the digital space with a campaign that will rely heavily on short-form video. Basically, on the 17th of this month, as in 17th of September, the party plans to launch Seva Hi Sankalp alongside a digital campaign called Reel Se Dil Tak. Their plan is ambitious. The BJP workers across more than 27,000 Shakti Kendras will make 10 reels each, showcasing what the party says are the transformations brought by government schemes. You know, if we do the math, that's at least 2.7 lakh reels. So the scale is significant, but perhaps the more interesting question is the political strategy behind this. For more on this, let's go across to Ajay Dubey, who joins us live at the moment. Ajay, I'm given to understand the BJP is effectively asking its grassroots organization to become a content generation network, right? With the Chief Minister, then subsequently ministers also.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।

0: लेकिन बाद में अभी बारिश तो कम हो गया ना, अब कम हो गया था, फिर अंदर से गिर गए गिर गए गिर गए निचके आना।
1: आप लोग कितने घंटे में बाहर निकले?
0: मैं दो घंटे दो
1: आप दो घंटे में बाहर निकले और आपको लग रहा है कि आप उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन वो लोग तो 8 दिन से अंदर बंद है।
0: बंद वो लोग तो क्या हुआ था मालूम नहीं,
1: सोच भी नहीं पा रहे क्या होगा उनके साथ,
0: क्या हुआ मालूम नहीं।
1: पर आप जब बाहर निकले दौड़कर अपनी फैमिली के पास गए, सुरक्षित हैं सब आपके घर में?
0: अभी सुरक्षित है,
1: सब ठीक था आपके घर में? आपने दूसरी जिंदगी अपने लिए छीनी है किस्मत से, है कि नहीं?
0: दूसरा जिंदगी तो ऐसे लिया है ना, अभी मर के निसके है ना,
1: अभी आपने तो छीनी है अपने लिए, आप ये आपकी जिंदगी है, इस पर हक आपका है।
0: ऐसा है।
1: तो अब हाइड्रो प्रोजेक्ट जब दोबारा सेटअप किए जाएंगे, आप लौटेंगे काम के लिए, क्या फैसला लिया?
0: अभी तक तो अब क्या हुआ मालूम नहीं, नहीं सोचा है ना, नहीं सोचा है मैडम। अब दूसरा अब जिंदगी में अब अभी बोला था अब हाइड्रो चल रहा है या न चल रहा मालूम नहीं। अभी
1: आप करेंगे फिर से हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम?
0: अच्छा अभी चलेगा तो करेगा,
1: करेंगे, डरे नहीं है आप?
0: डर नहीं है,
1: बहादुर हैं आप।
0: नहीं, नहीं है,
1: बहुत स्ट्रांग है, बहुत बहादुर हैं, बहुत ब्रेव।
0: मैंने अलग लिया ना, अब फैमिली है, अब पैसा कमाना है ना, अभी पालना है फैमिली पालना है, इसलिए अब दूसरे उसमें बाद में चलेगा था।
1: कोई बात नहीं, अब आगे की जिंदगी बची है, बिल्कुल
0: जाएगा।
1: तो ये है नेपाल का हौसला, और इसी तरह से नया नेपाल भी अब बनेगा।
2: Meanwhile, authorities in Nepal have been working for days to find more survivors of the devastating flash flood that ravaged their country. Their flood relief effort is now seeing a stronger volunteer push. Prabhakar Kumar has been covering that push. He sent us this report from the Pashupatinath temple.
3: नेपाल में जो त्रासदी हुई है उसका सबसे दिल दहलाने वाला अगर आपको नज़ारा देखना है तो पशुपति नाथ मंदिर के पीछे का ये घाट देखिए, आपको लगातार जो है वो डेड बॉडीज जलती हुई दिख रही हैं, और इसमें ज़्यादातर जो बॉडीज़ हैं वो हैं जो इस घटना का शिकार हुई हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा जो आपको चौंकाएगी और सबसे ज़्यादा जो आपको परेशान करेगी वो ये देखिए, अगर मैं सामने आपको दिखाऊँ तो ये जो पूरे परिवार खड़ा है ये कूश का बॉडी जा रहा है, यानी कि इन्होंने घास और कूश का बॉडी बनाया है और वो बॉडी ये उसका दाह संस्कार कर रहे हैं। इनके जो परिजन हैं जिसके लिए दाह संस्कार कर रहे हैं वो परिजन की डेड बॉडी मिली नहीं है, लोगों ने उन्हें मरा हुआ मान लिया है, और उसके बाद जो कूश का यानी कि जो पुआल होता है उसका ये बॉडी बना के और उसका दाह संस्कार कर रहे हैं। तो आप देखिए वो पशुपतिनाथ के मंदिर में तो इतने हृदय विदारक दृश्य है, हालांकि ये कैमरे पे बहुत सारे लोग बात करने से हिचक रहे हैं, उनके लिए अभी ये बहुत ही दुख की घड़ी है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उनसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए जो चिता सजाई गई है उसमें ऊपर में कुश का एक पुतला बनाया गया है, यानी कि पुआल का एक पुतला बनाया गया है, उसे डेड बॉडी मान के जलाया जा रहा है, क्योंकि डेड बॉडी जो है जिनकी मृत्यु हुई है उनकी उनका बॉडी मिल नहीं रहा है और परिजनों ने ये उम्मीद खो दी है कि अब उनका बॉडी उन्हें मिलेगा।
2: Meanwhile, let's turn our attention now to the relief camps in Nepal. Survivors there are struggling to get basic commodities like food and medicine across a few districts. Authorities in fact set up a makeshift zip line across the raging Trishuli River after the devastating flood destroyed roads, bridges, leaving certain villages cut off as well. My colleague Manogya Loiwal tracks the latest from the rescue operations along the Trishuli River. This is the report she sent across.
4: The rescue and search operations are on war footing in Trishuli River in Chitwan district of Nepal. The difficulties are not just man-made but beyond anyone's control. This is the picture of the challenges that the armed forces are facing in Nepal, especially in the river where it's extremely difficult to even handle a boat, where no one knows how high the waves will turn out to be and what would be the approximate depth that we are standing in. The biggest challenge is that not even sniffer dogs are able to identify the flowing carcasses as well as the corpses that are flowing down the river and the bodies that have to be identified. It is very difficult given the circumstances, and if it rains, the challenges just increase manifold. There are landslides that have been happening continuously. These are live pictures of landslide happening just across the river, making it full of more mud, slush, and also debris.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाह मामा क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा,
5: सबका राजा प्योर मसाला।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आरती और मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: Renew clean energy humse hai.
1: Towards Kathmandu, there's a helicopter right there.
2: Trishuli Nadi ka ye wo ilaka hai.
3: In Nepal's darkest hour, being there mattered.
4: Baki jo log is waqt missing hai, unke bare mein aapke kya chal?
3: At any cost, across the devastation, through the impossible.
5: नीचे अगर हम जूम कर हम आपको दिखा सके उस सुरंग में फंसे लोगों
3: टू मेक श्योर नेपाल वाज हर्ट बियॉन्ड द हेडलाइन
6: रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशंस कंटिन्यू हियर
7: जो हैंगिंग ब्रिजेस बने थे वो भी सब कुछ बह गए
3: बिकॉज़ व्हेन इट रियली मैटर्स वाचिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस इज नॉट एन ऑप्शन एनडीटीवी व्हेन इट रियली मैटर्स
8: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
6: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
7: त्रिशूली नदी का ये वो इलाका है।
5: इन नेपाल्स डार्केस्ट स्टार, बीइंग देयर मैटर्ड।
8: बाकी जो लोग इस वक्त मिसिंग हैं, उनके बारे में आप किस क्या चल?

0: Bharadwaj, who is the main accused in this whole case. This whole issue came to limelight after his podcast had surfaced, wherein he had said, and he had in fact also boasted about how well politically connected he is. That is why he didn't have to face any kind of serious charges, and based on what he had done, it should actually be Section 360 that should be in fact implemented, that should have been in fact charged by the Delhi police. But since he was politically connected and had connection to the likes of Chirag Paswan and also Kapil Mishra, who's from the Delhi government, is that is why he was in fact let off the hook so easily. And now we are seeing CJP delegation taking cognizance of the viral video. They had come here today, they protested outside the Parliament Street police station and then went on to discuss this with the Delhi police, after which the Delhi police have added
1: to on with us. NDTV also spoke to Hindutva influencer Swatantra Bharadwaj. Let's take a look at what he said.
2: स्वतंत्र, आपका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें आप ये दावा कर रहे हैं कि आप जंतर मंतर गए थे और आपने निशु के पिता को वहां पर कड़ा मारा, क्या ये पूरा मामला था और जंतर मंतर पर आप क्या करने गए?
3: देखिए, एक्चुअली बात ऐसी है कि जंतर मंतर पे हम पहली बार गए थे 6 जून को, जब सीजेपी प्रोटेस्ट का आगाज हुआ था। उस दिन वहां गए थे समर्थन में, इस वजह से क्योंकि सीजेपी का जो मांग था वो सही था और वो हम अभी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। मांग को लेके जो अकाउंटेबिलिटी सरकार से मांग रहे थे वो, और दूसरी मांग जो भी परिवार को पैसा मिलना चाहिए उसको लेके। जब वहां पे जाते हैं तो वहां पता चलता है फ्री उमर खालिद को रिहा करो, उसके बाद ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, प्रेमानंद महाराज जी पाखंडी है, मोदी जी का तेरवी वगैरह, कई सारा चीज बयानबाजी हो रहा था वहां से। तो हम प्रोटेस्ट को क्विट कर दिया, वहां से निकल गए। लेकिन प्रोटेस्ट धीरे धीरे बढ़ते गया और जेन्युइन जो रियल में कुछ कुछ छात्र थे उन लोग का इन्वॉल्वमेंट हुआ, भले कुछ ही आए लेकिन आ रहे थे। तो 22 तारीख को, 6 जून को प्रोटेस्ट चालू हुआ था, हम शायद लगता है 21 या 22 को गए थे। जब वहां जाते हैं हम तो एक व्यक्ति रहता है जिसको हम जानते नहीं थे, ना ही हम नीशू को जान रहे हैं, ना ही हम उसके पापा को जान रहे थे पहले, ठीक है। वहां पे हम जब जाते हैं तो एक व्यक्ति मेरा वीडियो बनाता है विदाउट मेरे परमिशन, और वीडियो बना के वहां पे ये कुछ कुछ वॉइस कवर कर रहा था। तो मेरे माइंड में डायरेक्ट रिकैप आता है कि ये लोग जिस तरीके से सीजेपी प्रोटेस्ट में पत्रकार के साथ बदतमीजी कर रहे थे कि सुअर है, गोगी सुअर है, मीडिया ऐसे है वैसे है, कई सारा बयानबाजी कर रहे थे। तो हम सोचे कि हम भी इन्फ्लुएंसर है, मेरे छवि पे बात आता और मेरे खिलाफ भी ये लोग ऐसा वीडियो बना सकते हैं। तो हम जाके बस कैमरा को डाउन किए थे। कैमरा को डाउन करने के बाद पता नहीं, हो सकता है प्री प्लान्ड हो या जानबूझ के साजिश के तहत मेरे पास कैमरा लेके आया गया हो, क्योंकि अचानक से इस तरीके से मॉब लिंचिंग करने का साजिश, 25 से 30 आदमी, मेरे पास बकायदा हर एक चीज का प्रूफ भी है, सारे लोग आके पूरे अटैक करते मेरे ऊपर, जबकि सिर्फ हम कैमरा डाउन किए थे। और अटैक करने के बाद वहां पे एक डस्टबिन रहता है जिसकी वजह से मेरा पैर स्लिप करता है, अपने सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि मेरा भी कुछ छवि है, अगर हम गिरते और वहां पे मेरे ऊपर अटैक हो जाता, कुछ लोग वहां मुस्लिम भी शामिल थे और कई सारे मुस्लिम का मेरे पास कंटिन्यूअसली डेथ थ्रेट्स आते रहता है कि मतलब जान से मार देंगे, गुस्ता के नबी ऐसे वैसे, तो वहां पे कई सारे मुस्लिम भी अटैक करने का साजिश रच रहते हैं। हम बस वहां गए, जितना हमसे बन पाया उठे, अपना हाथ चलाए। अब बाइलक मेरे हाथ में उस टाइम कड़ा था, तो अगर हमको कड़ा से अटैक करना रहता तो कड़ा हम यहाँ पहनते हैं, यहाँ मुक्का में बांध के मारते हैं, लेकिन मेरे कड़ा हैंड में था और जब मार रहे थे कड़ा से लगा होगा। अब वो भी जांच का विषय, मेरे ही कड़ा से लगा है या फिर किसके कड़ा से लगा, क्या पता जो उसके समर्थन में जो हमको हाथ चला रहा था, क्या पता उसी बंदा की तरफ से लगा हो, इसका कोई सिक्योरिटी नहीं है।
2: लेकिन क्या कपिल मिश्रा ने फोन किया था पार्लियामेंट थाने में आपको बचाने के लिए, फोन किया था उन्होंने?
3: नहीं, ये उन लोग का कहना है, मेरे लिए कोई क्यों कॉल करेगा? आप खुद सोचिए ना, एक बात बताइए, हम किसी को बोल के तो नहीं गए कि हम जा रहे हैं प्रोटेस्ट में, या कोई भी नेता अपना छवि कैसे धूमिल करवा लेगा ऐसा करके? ये लोग, उन लोग का कहना है कि कपिल मिश्रा का कॉल आया तो छोड़ा गया। मेरा
2: लेकिन आपका फोटो कपिल मिश्रा के साथ है, चिराग पासवान के साथ है, और आप कह भी रहे कि हमारे बड़े भाई है, तो ये तो बात सही है कि आप जानते हैं उनको।
3: हम तो कह रहे हैं भगवान से आप मनाइए, मुकेश सिंह सेंगर जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, आप भगवान से प्रे करिए जल्दी मोदी जी के साथ भी मेरा फोटो आए, ताकि मेरा ये बात भी प्रूफ हो जाए कि मोदी जी रियल में मेरे बड़े भाई हैं। हम क्या बोले, सरकेस्टिक वे को आप लोग समझते नहीं, हम इन्फ्लुएंसर हैं, मेरा कई प्रोग्रामों में जाना होता है, कई सारे पीवीआर में, सिनेमा हॉल में जो मूवीज वगैरह आता है उसमें भी जाना होता है, तो काफी सारे पॉलिटिशियन से मेरा मुलाकात होता है, वहां पे राहुल गांधी भी कई बार मिले हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाना पसंद नहीं करते। हमको कपिल मिश्रा ठीक लगता है, हिंदुत्ववादी नेता है, खिंचवाते हैं फोटो, मेरा अपना, अब तुम्हारे तरह उमर खालिद के साथ थोड़ी फोटो खिंचवाएंगे? तो आतंकवादी तो नहीं है कपिल मिश्रा, आतंकवादी तो नहीं है चिराग पासवान? अरे प्रधानमंत्री मोदी जी है, और मोदी जी अगर हेलो फ्रेंड्स बोलते हैं ना, तो हम उनको भाई बोल दिए तो कहाँ गलत है? मोदी जी भी खुश होंगे मेरा वीडियो देख के। और दूसरी चीज, हम लोग अच्छा एक चीज चलाते हैं कि जात पात हिंदू हिंदू भाई भाई, तो मोदी जी आते हैं ओबीसी समाज से, चिराग पासवान जी आते हैं एससी समाज से, और कपिल मिश्रा जी आते हैं जनरल समाज से। तो मेरा एक स्टेटमेंट यहाँ ये भी क्लियर है कि हम तीन शख्स का नाम लिए, तीनों अलग अलग समाज से, क्योंकि आर्थिक आरक्षण मोर्चा का कैंपेनिंग हम चला रहे हैं।
1: All right, so that's a conversation with Swatantra Bhardwaj. Also thanking Anushka Garg for joining us with all the important details from outside the police station. Let's shift our focus now. Preliminary report into the air.

0: around this makeshift mass burial ground.
1: Real-time rescue operation in the middle of Trishuli River.
2: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
3: Towards Kathmandu, there's a helicopter right there.
1: Trishuli Nadi ka ye wo ilaka hai.
4: In Nepal's darkest hour, being there mattered.
5: Baki jo log is waqt missing hain, unke bare mein aapke kya jaane?
4: At any cost, across the devastation, through the impossible.
6: नीचे अगर हम जूम कर हम आपको दिखा सके उस सुरंग में फंसे लोगों
4: टू मेक श्योर नेपाल वॉज हर्ट बियॉन्ड द हेडलाइन
0: रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशंस कंटिन्यू हियर
7: जो हैंगिंग ब्रिजेस बने थे वो भी सब कुछ बह गए
4: बिकॉज व्हेन इट रियली मैटर्स वॉचिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस इज नॉट एन ऑप्शन एनडीटीवी व्हेन इट रियली मैटर्स 3 decades ऑफ वॉचिंग द वर्ल्ड चेंज Asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.
2: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: big breaking news now coming in, and Delhi police teams are now in the Bulan Shahar, and Swatantra Bhardwaj, the Hindutva activist, may be taken into custody soon. Swatantra Bhardwaj, an influencer accused of attacking a student activist's father on the head during the Cockroach Janta Party protest at Jantar Mantar, has claimed that it was an act of self-defense since he was on the verge of being lynched by a mob. But his video boasting about the attack went viral, and today there was a showdown, in fact, at the Parliament Street Police Station, where CJP leaders demanded that action be taken against him, and also the SC-ST Act be added to the FIR. Let's go across to Mukesh now for all the very latest. Mukesh, tell us what's happening.
1: देखिए, जो 23 जुलाई को इंसिडेंट हुआ था जंतर मंतर पर, उसी मामले को लेकर अब कॉकरोच जनता पार्टी के साथ में और भीम आर्मी के साथ में जो संजय जो विक्टिम हैं, वो आज पार्लियामेंट थाने पर आए थे और इन्होंने कहा था कि उनके साथ में 23 जुलाई को जो इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट में उनके साथ में उनके जाति सूचक शब्द भी कहे गए हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनकी नई कंप्लेंट पर जो पुरानी FIR है उसी में SC-ST एक्ट जो है वो ऐड कर लिया है। ये जो एक्ट होता है ये नॉन अवेलेबल होता है, गैर जमानती है, इसीलिए दिल्ली पुलिस की टीम अब बुलंदशहर पहुँच गई है, क्योंकि स्वतंत्र भरद्वाज जो इस केस में आरोपी है उसकी आखिरी लोकेशन बुलंदशहर थी। आज सुबह ही हमने भी उसका इंटरव्यू किया था जिसमें वो बुलंदशहर से ही बात कर रहा था। तो दिल्ली पुलिस की टीम उसको डिटेन करने के लिए बुलंदशहर पहुंच गई है, और दिल्ली पुलिस का दावा यह है कि बहुत जल्दी ही उसको डिटेन किया जाएगा और इस केस में उसको अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि अब जो नया सेक्शन है FIR में SC-ST एक्ट का, वो जोड़ दिया गया है जो कि नॉन अवेलेबल है। इसके अलावा जो दूसरी मांग थी संजय की, जो विक्टिम है, उनका कहना यह था कि इस पूरे मामले में अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन लगाया जाए, क्योंकि जो एक्यूज्ड है वो खुद ही कह रहा है कि उसने हाफ मर्डर किया था, अटेम्प्ट टू मर्डर करने की कोशिश की थी, और उसके बाद भी पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा। वो थाने के बाहर घूमता रहा और बड़े बड़े लोगों के फ़ोन आ गए थे और पुलिस जो है उसको जानती है। तो पुलिस ने ये कहा कि इस मामले में एक नई मेडिकल रिपोर्ट जो है वो तैयार करवाई जाएगी, जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट होती है। संजय का दोबारा से मेडिकल होगा और दोबारा मेडिकल होने के बाद उस मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाएगा कि क्या अटेम्प्ट टू मर्डर के सेक्शन इसमें लग सकता है कि नहीं लग सकता है FIR में। तो ये बात का प्रोसेस है, लेकिन फिलहाल SC-ST एक्ट जो है वो जोड़ दिया गया है FIR में, और उसके बाद दिल्ली पुलिस स्वतंत्र भरद्वाज को गिरफ्तार करने पहुँच गई है। जी,
0: all right, police teams are there in Buland. Spoke to him, in fact it was Mukesh who spoke with him, and he seemed to backtrack his boasts, what he said on the podcast when he boasted about injuring the activist's father. Now he said that he did it in self defense. Let's listen into what he said to us.
2: स्वतंत्र, आपका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें आप ये दावा कर रहे हैं कि आप जंतर मंतर गए थे और आपने निशु के पिता को वहां पर कड़ा मारा, क्या ये पूरा मामला था, और जंतर मंतर पर आप क्या करने गए?
3: देखिए, एक्चुअली बात ऐसी है कि जंतर मंतर पे हम पहली बार गए थे 6 जून को, जब CJP प्रोटेस्ट का आगाज हुआ था। उस दिन वहां गए थे समर्थन में, इस वजह से क्योंकि CJP का जो मांग था वो सही था, और वो हम अभी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं मांग को लेके, जो अकाउंटेबिलिटी सरकार से मांग रहे थे वो, और दूसरी मांग जो भी परिवार को पैसा मिलना चाहिए उसको लेके। जब वहां पे जाते हैं तो वहां पता चलता है फ्री उमर खालिद को रिहा करो, उसके बाद ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, प्रेमानंद महाराज जी पाखंडी है, मोदी जी का तेरवी वगैरह, कई सारा चीज बयानबाजी हो रहा था वहां से। तो हम प्रोटेस्ट को क्विट कर दिया, वहां से निकल गए, लेकिन प्रोटेस्ट धीरे धीरे बढ़ते गया और जेन्युइन जो रियल में कुछ कुछ छात्र थे उन लोग का इन्वॉल्वमेंट हुआ, भले कुछ ही आए लेकिन आ रहे थे। तो 22 तारीख को, 6 जून को प्रोटेस्ट चालू हुआ था, हम शायद लगता है 21 या 22 को गए थे। जब वहां जाते हैं हम तो एक व्यक्ति रहता है जिसको हम जानते नहीं थे, ना ही हम निशु को जान रहे हैं, ना ही हम उसके पापा को जान रहे थे पहले, ठीक है। वहां पे हम जब जाते हैं तो एक व्यक्ति मेरा वीडियो बनाता है विदाउट मेरे परमिशन, और वीडियो बना के वहां पे ये कुछ कुछ वॉइस कवर कर रहा था। तो मेरे माइंड में डायरेक्ट रिकैप आता है कि ये लोग जिस तरीके से CJP प्रोटेस्ट में पत्रकार के साथ बदतमीजी कर रहे थे कि सुअर है, गोगी सुअर है, मीडिया ऐसे है वैसे है, कई सारा बयानबाजी कर रहे थे, तो हम सोचे कि हम भी इन्फ्लुएंसर है, मेरे छवि पे बात आता और मेरे खिलाफ भी ये लोग ऐसा वीडियो बना सकते हैं। तो हम जाके बस कैमरा को डाउन किए थे। कैमरा को डाउन करने के बाद पता नहीं, हो सकता है प्री प्लान्ड हो या जानबूझ के साजिश के तहत मेरे पास कैमरा लेके आया गया हो, क्योंकि अचानक से इस तरीके से मॉब लिंचिंग करने का साजिश, 25 से 30 आदमी, मेरे पास बकायदा हर एक चीज का प्रूफ भी है, सारे लोग आके पूरे अटैक करते मेरे ऊपर, जबकि सिर्फ हम कैमरा डाउन किए थे। और अटैक करने के बाद वहां पे एक डस्टबिन रहता है जिसकी वजह से मेरा पैर स्लिप करता है, अपने सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि मेरा भी कुछ छवि है, अगर हम गिरते और वहां पे मेरे ऊपर अटैक हो जाता, कुछ लोग वहां मुस्लिम भी शामिल थे और कई सारे मुस्लिम का मेरे पास कंटिन्यूअसली डेथ थ्रेट आते रहता है कि मतलब जान से मार देंगे, गुस्ताखे नबी ऐसे वैसे, तो वहां पे कई सारे मुस्लिम भी अटैक करने का साजिश साज रहते हैं। हम बस वहां गए, जितना हमसे बन पाया उठे, अपना हाथ चलाए। अब बाई लक मेरे हाथ में उस टाइम में कड़ा था, तो अगर हमको कड़ा से अटैक करना रहता तो कड़ा हम यहाँ पहनते हैं, यहाँ मुक्का में बांध के मारते हैं, लेकिन मेरे कड़ा हैंड में था और जब मार रहे थे कड़ा से लगा होगा। अब वो भी जांच का विषय, मेरे ही कड़ा से लगा है या फिर किसके कड़ा से लगा, क्या पता जो उसके समर्थन में जो हमको हाथ चला रहा था, क्या पता उसी बंदा की तरफ से लगा हो, इसका कोई सियोरिटी नहीं है।
2: लेकिन क्या कपिल मिश्रा ने फोन किया था पार्लियामेंट थाने में
3: नहीं,
2: आपको बचाने के लिए फोन किया था उन्होंने?
3: ये उन लोग का कहना है, मेरे लिए कोई क्यों कॉल करेगा? आप खुद सोचिए ना, एक बात बताइए, हम किसी को बोल के तो नहीं गए कि हम जा रहे हैं प्रोटेस्ट में, या कोई भी नेता अपना छवि कैसे धूमिल करवा लेगा ऐसा करके? ये लोग, उन लोग
2: लेकिन
3: का
2: आपका,
3: कहना है कि कपिल मिश्रा का कॉल आया तो इसको छोड़ा गया। मेरा
2: लेकिन आपका फोटो कपिल मिश्रा के साथ है, चिराग पासवान के साथ है, और आप

0: क्या भी रहे कि हमारे बड़े भाई
1: हाँ
0: हैं,
1: बिल्कुल
0: तो ये तो
1: है।
0: बात सही है कि आप जानते हैं उनको।
1: हम तो कह रहे हैं भगवान से आप मनाइए, मुकेश सिंह सेंगर जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, आप भगवान से प्रे करिए जल्दी मोदी जी के साथ भी मेरा फोटो आए, ताकि मेरा ये बात भी प्रूफ हो जाए कि मोदी जी रियल में मेरे बड़े भाई हैं। हम क्या बोले सरकेस्टिक वे को आप लोग समझते नहीं, हम इन्फ्लुएंसर हैं, मेरा कई प्रोग्रामों में जाना होता है, कई सारे पीवीआर में सिनेमा हॉल में जो मूवीज वगैरह आता है उसमें भी जाना होता है, तो कई काफी सारे पॉलिटिशियन से मेरा मुलाकात होता है, वहां पे राहुल गांधी भी कई बार मिले हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाना पसंद नहीं करते हैं। हमको कपिल मिश्रा ठीक लगता है, हिंदुत्ववादी नेता है, खिंचवाते हैं फोटो, मेरा अपना एड्रेस, अब तुम्हारे तरह उमर खालिद के साथ साथ थोड़ी फोटो खिंचवाएंगे, तो आतंकवादी तो नहीं है कपिल मिश्रा, आतंकवादी तो नहीं है चिराग पासवान, अरे प्रधानमंत्री मोदी जी है, और मोदी जी अगर हेलो फ्रेंड्स बोलते हैं ना तो हम उनको भाई बोल दिए तो कहाँ गलत है, मोदी जी भी खुश होंगे मेरा वीडियो देख के। और दूसरी चीज, हम लोग
0: अच्छा
1: एक
0: ये
1: चीज
0: बताए।
1: चलाते हैं कि जात पात हिंदू हिंदू भाई भाई, तो मोदी जी आते हैं ओबीसी समाज से, चिराग पासवान जी आते हैं एससी समाज से, और कपिल मिश्रा जी आते हैं जनरल समाज से, तो मेरा एक स्टेटमेंट यहाँ ये भी क्लियर है कि हम तीन ही तीन शख्स का नाम लिए, तीनों अलग अलग समाज से, क्योंकि आर्थिक आरक्षण मोर्चा का कैंपेनिंग हम चला रहे हैं।
2: All right, so that was Swatantra Bhardwaj speaking to NDTV earlier, speaking with Mukesh. Now, teams have arrived there in Bulandshahr to arrest him and to take him into custody. Now, let's take you through all the developments today. There was a showdown today. CJP leaders, also Chandrasekhar Azad, all arrived at the Parliament Police Station. The Delhi Police finally, after that showdown, added sections of SC-ST Act in the FIR against the Hindutva activist there, Swatantra Bhardwaj. Bhardwaj, although addition of attempt to murder charge now depends on a fresh medical test of Nishu Azad's father, Sanjay Azad. Nishu Azad, whose father was attacked, said that the Delhi police has assured that he will be arrested in 72 hours. And she also claimed that she and her family is getting threats. This comes after a viral video in which Swatantra Bhardwaj, who was speaking in a podcast, claimed that he had attacked the father of Nishu Azad during the Jantar Mantar protest, and he made some big claims. He said he had to get, you know, over a dozen stitches on his head, and he says that he escaped getting any being you know, any action by the police because he had the backing of BJP leaders Kapil Mishra and Chirag Paswan, claiming that Kapil Mishra even made a phone call. Later, speaking to NDTV, as you heard there, he said that he struck the protester's father with his iron bracelet, but it was in self-defense after he was gheraud by a group of people. Meanwhile, NDTV has accessed the FIR filed by the Delhi police, in which Swatantra is booked under three sections. Delhi police also added the SC-ST Act after the CJP's demand.
3: हम अभी काफ़ी देर अंदर थे, पुलिस ऑफिसर्स के साथ थे, उन्होंने हमारे साथ कॉपरेट किया और वो कह रहे हैं कि 72 आवर्स के अंदर स्वतंत्र की गिरफ्तारी होगी, उसे अरेस्ट किया जाएगा और जल्द ही उन्होंने कहा है कि वो उनको अरेस्ट करेंगे और हाँ 72 घंटे के अंदर, और साथ ही वो कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे और इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे, और हमें भरोसा है कि ये वाकई में इस पे काम करेंगे, जिस तरीके से अब तक ये डिले करते आ रहे थे अब ये और नहीं करेंगे।
4: सोशल मीडिया पे हमें जानता ही था, लेकिन इसे अच्छी तरीके से, लेकिन इसने मेरे ऊपर अचानक हमला किया, और ये भी नहीं है कि कोई जो तेजधार जो कड़ा था हथियार जो उसके पास हाथ में, उससे हमला किया और उससे कहने के मैं दो जगह सिर फटा, और उसी दौरान मैंने पार्लियामेंट थाने में इसके ऊपर FIR भी करवाई, लेकिन जो पार्लियामेंट थाना और वहाँ का प्रशासन जिस हिसाब से इसे बचाया, तो मैं कहता हूँ पुलिस का यही काम रह गया गुंडों को बचाना, और अपराधियों को इतना कमज़ोर कर, पीड़ित को इतना कमज़ोर कर दो वो थाने के पास ही आप मदद के लिए आए ना कभी न्याय मांगने के लिए, तो जो पार्लियामेंट थाना यही करता है वहाँ पर।
5: संजय और उनकी बेटी जिनको लगातार बलात्कार करने की जो है धमकियां दी जा रही है, जिनको लगातार तेजाब डाल के जलाने की, उनकी हत्या करने की धमकी दी जा रही है, वो डरे हुए। अगर देश की राजधानी में ये हाल है तो ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह के हाल होंगे आप देखो। तो हम लोग गए थे अधिकारियों से मिले, अधिकारियों ने हमें वादा किया कि वो 72 घंटे के अंदर गिरफ्तारी करेंगे, और जो ऑफेंस है, क्योंकि बेटिया बेटी जो है माइनर है, तो पोस्को अनुसूचित जाति से बच्ची आती है, तो SC-ST एक्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराएं वो इसमें लगाएंगे।
6: इससे आज कांग्रेस जनता पार्टी, आज हमारे जो MP भी है चंद्रशेखर आजाद जी एंड बाकी तमाम CJP के मेंबर्स, उनके सपोर्टर्स सब लोग आए एंड दिल्ली पुलिस से बात किया। एडिशनल DCP ने हमें कमिटमेंट दिया कि शाम तक ये जो FIR एग्जिस्टिंग है संजय जी के अटेम्प्ट टू मर्डर पे, उस पे अटेम्प्ट टू मर्डर का धारा लगेगा एंड ये आज शाम तक हम लोगों को कमिटमेंट दिया है एंड हम आके वो कॉपी भी लेंगे। अब रही बात अरेस्ट की, उन्होंने निशु को, संजय जी को, हम सभी को कमिटमेंट दिया है 72 घंटे के अंदर सारे ऐसे गुंडों का अरेस्ट होगा। वो एक टीम गठन कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन अगर ये कमिटमेंट नहीं फुलफिल करते हैं तो जैसे ऑलरेडी चंद्रशेखर जी ने बोला, हम लोग वापस हमें आना पड़ेगा एंड हमें कोई मुश्किल नहीं है वापस आने के लिए।
7: अक्षय लाकर जॉइनिंग गाइस ऑफ द इंडियन यूथ कांग्रेस, यू नो सर, यू वर जस्ट इनसाइड द पुलिस स्टेशन, इफ यू कुड जस्ट टेल अस व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड एंड व्हाई आर यू हियर।
8: Our first demand of adding section under SCST has been agreed upon by the Delhi Police. Secondly, our prime demand of adding attempt to murder is yet under scrutiny because they need medical expert opinion on that, because the MLC already being filed by the doctors and today being a gazetted holiday, they need some more time for that. And they have verbally agreed on that. Thirdly, rape threats were being issued to Nishu constantly on social media, which the Delhi Police has taken cognizance of. They asked us to make a written complaint and they will be taking care of that. Apart from that, few of the Delhi Police staff is under the BRICS arrangement and meeting going on, but we are in constantly touch via phone. While they have agreed to invoke SCST, we are still adamant that they should add section under attempt to murder as well. And rape threats being given to minor, action should be taken against them.
7: Thank you so much for speaking to NDTV.
2: All right, and after that showdown at the Parliament Police Station, now the police is going to take action against Swatantra Bhardwaj. Police teams have in fact reached Bulandshahr, but the Hindutva activist himself has sparked a fresh controversy with his latest remarks made to the media in Bulandshahr, where Bhardwaj claimed that neither Rahul Gandhi nor the entire opposition can harm him. He even invoked U.S.

0: इस समय दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पानी निकालने की कोशिश करी जा रही है। वहां पर देखिए कि जो हाउसकीपिंग के लोग हैं वो भी है, और वहीं वाटर जो यहां पर आप देखिए जो सीवर का ढक्कन है वहां से किस तरीके से पानी निकलता हुआ नजर आएगा। आप देखिए कि दिल्ली के एयरपोर्ट का ये हाल है, जहां पर देखिए कि एनडीटीवी की टीम पहुंची और एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि एयरपोर्ट पर इस तरीके से पानी भरना, जाहिर सी बात है कई सारे सवाल जरूर खड़ा करता है कि जीएमआर लगातार जो कोशिश करता है कि एयरपोर्ट को काफी अच्छा खूबसूरत बनाया जा सके, लेकिन इस बारिश की तस्वीर से आप देख सकते हैं कि राजधानी दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी का, वहां का हाल क्या है। इससे पहले कुछ दिन पहले ही आपको बता दें कि जो नोएडा का एयरपोर्ट है जो वहां पर भी पानी भरा था और वहां के हालात से कहीं ना कहीं सबक नहीं लिया एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, और शायद इसी वजह से कि यहां पर आप देखिए कि किस तरीके से पानी जो है वो भरा हुआ है, लोग हैं उनसे जाने की कोशिश है। आप लोग यहीं पर काम करते हैं क्या एयरपोर्ट पे?
1: हां जी सर।
0: क्या इससे पहले कभी एयरपोर्ट में पानी भरा है था?
1: सर जी इतना तो नहीं भरा जितना आज भरा।
0: अच्छा,
1: पहले तो निकल जाता था निवास।
0: कितनी देर की बारिश हुई है?
1: सर जी कम से कम नहीं तो आधा पौन घंटा।
0: आधा पौन घंटा?
1: हाँ जी।
0: उसमें ये हाल है। तो देखिए कि किस तरीके से जो बारिश है वो हो रही है, हमारे साथ और लोग भी है। आप लोग एयरपोर्ट में आते हैं किस तरीके से? कोई भी आप लोग देखिए यहाँ पर लोग है बात कर रहे हैं, लेकिन आपको हम पानी की ये तस्वीर दिखाएंगे क्योंकि पानी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, कम होने नेशनल एयर।
2: All right, so there you could see that report in which Rakesh Soni getting us the situation outside the airport. And you know, every year we see this sort of waterlogging taking place at the international airport. Passengers highly inconvenienced, you know, walking through that ankle deep water to get to their cars. So a heavy rain across the national capital, and do take care if you know you're traveling through that evening traffic. Heavy rain lashing the national capital, and that is the forecast as well by the IMD in the national capital region. With that, we'll slip into a short break. More news and updates coming up on the other side, including our ground reports from Nepal. Remember, there's been a miracle today in Nepal. After 9 days trapped in darkness, two workers were rescued alive, and it's given hope and it's given cheer across the world. We'll get you all the latest from Nepal.
3: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.

0: And Millennium TV has been on ground zero since that mishap happened. My colleague Vedika Sood joining me live on the show. Vedika, over to you.
1: What Nepal needed was hope, at least a sliver of hope. What Nepal has got today is just that. Two miraculous rescues, two survivors from inside the Trishuli tunnel. They were pulled out this morning. This is news Nepal was desperate to hear. Why? Because there are 4,000 people still missing, and the rescue of these two men have rekindled hope in this Himalayan nation that has seen a Himalayan tragedy. Welcome to the special edition. I'm Vedika Sood. I'm reporting right outside the Army Hospital where Mr. Sanjay and Mr. Kabir have been brought a couple of hours back. Family members of both these gentlemen are now inside. I have with me the uncle of Mr. Sanjay Shah as well, who's going to join us live. Aye. Sanjay Shah ji, se aapki baat hui hai?
2: नहीं अभी नहीं बाजी
1: लेकिन आज तो मिरेकल हो गया है कि संजय शाह जी आए हैं हॉस्पिटल में ही सर्वाइव्ड आपको क्या कहना है इसके बारे में
2: बहुत खुशी की बात है जी बहुत खुशी हुआ है जी
3: उसको उपचार हो रहा सही है सही जगह पर पहुंच गए हम लोग भी पहुंच गए
1: नौ दिन बाद
3: इतना हम लोग भगवान से इतना दुआ करे हम लोग पूछो मत
1: उम्मीद था
3: कि संजय
2: उम्मीद करके बैठे हुए थे जी
3: हम लोग उम्मीद दे रहा था
1: उनके माता पिता है अंदर
2: पिताजी है
1: जी जी
3: मम्मी आने की अवस्था में नहीं था तो मम्मी नहीं आए
1: उनसे बात हुई आपकी
3: संजय सर
1: नहीं माँ से
3: हाँ से उसी पास हम रहते थे वहीं
1: उन्होंने क्या कहा
3: वो बोला कि हमारे बेटा के लेकर आना बस हम बोले ठीक है हम जा रहे हैं हम ले कर आएंगे
1: चलिए मुबारक हो और इससे ये भी उम्मीद जागी है लाइक आई वाज सेइंग होप हैज रिकिंडल फॉर सो मेनी फैमिलीज हु बीन वेटिंग टू हियर न्यूज ऑन देयर लव्ड वंस द होम मिनिस्टर आल्सो ऑफ द कंट्री वाज देयर असिस्टिंग द रेस्क्यू ऑपरेशन टेकिंग वन ऑफ दीज जेंटलमैन टू द चॉपर दे राइट बिहाइंड मी इन दिस हॉस्पिटल दे बीइंग ट्रीटेड हियर माई कॉलीग प्रभाकर स्पोक विद द फैमिली मेंबर्स आई स्पोक विद द नेव्यू ऑफ मिस्टर शाह हियर्स व्हाट दे हैड टू से दे सेड Today, he's got a second life. Both of them have got a second life. I have Mr. Sanjay's nephew with me, Mr. Rishi. Rishi ji, aapki baat hui hai Sanjay ji se?
4: Haan, thoda hua hai. Baba to hui hai abhi. Yahi.
1: Unhone kya bola aapko?
4: Kya abhi to baat utna nahi hua. Thoda bahut baat hua. Theek hai, abhi sab kuch pehchanta hai sab log ka. Utna mein khushi hogi. Hum log aur kya puchhenge aur kaisa rahe. Ab wo bol raha hai, us bhitar mein akash baadi aa gaya. हम लोग क्या कर सकते थे उसमें भी इधर से भी बाढ़ आ गया हम लोग तो हवा में उड़ने लगे वहाँ पर भीतर में अब तो हवा में उड़ने अब जाके उस शुरू में भीतर में 5-6 तला घर था बोल रहा है उसी ऊपर में जाके हम एक ठो बाड़ी से बगा के वो ढेंग लाया था उस ढेंग के माध्यम से एक ठो वेंटिलेशन था उसी वेंटिलेशन में थोड़ा दिन हम बैठे 3 दिन ऊपर थे थोड़ा नीचे पानी थे तो ऊपर वो चला गया ना ऊपर चला गया उसी में हम बैठे थे थोड़ा दिन इसके बाद नीचे हुए के बाद तो अब पानी थोड़ा कम हुआ था हम नीचे आए तो एक छोटे ढेंग पे बैठकर गुजारा हम कर रहे थे
1: डॉक्टर क्या बोल रहे हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में
4: अभी तो डॉक्टर सब उतना गप नहीं हुआ है ठीक है अब डॉक्टर का अभी अब आएगा दूसरा टीम आएगा तो वो बोलेगा हमको अभी हम

0: Azad's father on his skull, at least, which led to a huge fracture on his skull. There was a huge showdown at outside the Parliament police station today, where the CGP leaders were demanding an arrest of that influencer you see on the screens right now, Hindutva influencer Swatantra Bhardwaj. The big news is that the Delhi police has now detained him. He has now been taken into custody. He has now been taken into custody by the Delhi police from Bulandshahr. Earlier, of course, the Delhi police had fact-checked all those allegations and the statements made by Swatantra Bhardwaj, where he said that I have done so much mayhem during the Jantar Mantar protest, Jantar Mantar stir, but despite all of that, I have walked free because I have close proximity to the BJP leaders. But the Delhi police said that we are doing everything according to rules and regulations. And now the Hindutva influencer, after around 10 hours of those statements that he made in a podcast, he has now been taken into custody by the Delhi police from Bulandshahr. This, of course, comes after there was a huge showdown outside the police station, outside the Parliament police station. We have those visuals of an influencer on your screens right now, wherein, without any kind of shame, he said that I have hit Nishu Asad's father during the Jantar Mantar protest on his skull, and which led to major fracture of his skull. But I walked free because I have close proximity with the BJP leaders. He even took names like Chirag Paswan. The Delhi police, of course, fact-checked all those statements. I will go across to Mukesh, who's joining me on the phone line on this story. Mukesh, what more can you tell us after Delhi police fact-checked all those statements by the Hindutva influencer Bhardwaj? He's now been taken into police custody from Bulandshahr. What more can you add?
1: देखिए बिल्कुल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और जो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की लोकल पुलिस है वो आज दोपहर के बाद बुलंदशहर पहुंच गई थी और उसके बाद जो स्वतंत्र भरद्वाज है उसकी जो लास्ट लोकेशन है वो भी बुलंदशहर में ही आ रही थी। आज सुबह हमने उसका इंटरव्यू भी किया है एनडीटीवी पर। उसके बाद पुलिस ने उसको डिटेन कर लिया है, उसको कस्टडी में ले लिया है और उसको कस्टडी में लेने के बाद जो पुलिस है वो दिल्ली की तरफ आ रही है। दरअसल जो निशु आजाद है उनके पिता संजय ने आज एक नई कंप्लेन दी है जिसमें कहा है कि जो स्वतंत्र भरद्वाज है उसने जासी सूचक शब्दों का प्रयोग किया था 23 जुलाई को और इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज होना चाहिए। उसके बाद पुलिस ने एसटी एक्ट के तहत जो नया सेक्शन है बीएनएस का वो जोड़ा था और ये सेक्शन जो है नॉन अवेलेबल होता है, इसलिए उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो स्वतंत्र भरद्वाज को बुलंदशहर से पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है और दिल्ली लाकर उसे अरेस्ट किया जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि जो एससी एक्ट होता है वो नॉन अवेलेबल सेक्शन होता है। और जहां तक अटेम्प्ट टू मर्डर के सेक्शन की बात है, पुलिस का कहना यह है कि जो विक्टिम है संजय, उनकी दोबारा से मेडिकल जांच होगी और मेडिको लीगल रिपोर्ट के आधार पर जो इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन बनता है या नहीं बनता है वो बाद में ऐड किया जाएगा अगर जरूरत पड़ी तो, और अगर नहीं बना तो नहीं ऐड किया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर ये है कि स्वतंत्र भरद्वाज को बुलंदशहर से डिटेन कर लिया है। जी
0: मुकेश, ये दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस जनता पार्टी के लीडर्स को भी कहा था कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा स्वतंत्र भारद्वाज के अगेंस्ट, जो एक पॉडकास्ट में आके उन्होंने कहा कि कुछ भी कर सकते हैं हम बीजेपी लीडर्स के बहुत क्लोज में हैं। एंड जैसे आप कह रहे थे कि वो बुक हो गए हैं चार्जेस अंडर क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड SC ST एक्ट, अब हमें बताइए कि आगे की प्रोब में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके दो पहले हैं, एक पॉलिटिकल और एक लीगल भी।
1: देखिए बिल्कुल, इसमें बहुत सारे जो वीडियोज हैं वो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं जिसमें जो स्वतंत्र भरद्वाज है उसका वीडियो आया है, उसमें वो कुछ और क्लेम कर रहा है, जबकि जो निशु आजाद के पिता हैं उनका भी एक नया वीडियो आ गया है जिसने इस पूरे मामले को नया ट्विस्ट दे दिया है। वो कह रहे हैं कि अगर पुलिस नहीं पहुंचती तो वो स्वतंत्र भरद्वाज को जान से मार देते, ऐसी बातें वो कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ से एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से CJP और भीम आर्मी के लोग आज संसद मार्ग थाने पहुंचे उसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है जिसमें SC ST एक्ट को FIR में ऐड करके जो स्वतंत्र भरद्वाज है उसको कस्टडी में ले लिया गया है।
0: मुकेश, धन्यवाद ये सारे अपडेट्स देने के लिए। एंड दैट्स द बिग न्यूज कमिंग इन, द दिल्ली पुलिस हैज टेकन स्वतंत्र भारद्वाज इन टू कस्टडी एंड द प्रोब इज अंडर वे। वेल, वी बी ट्रैकिंग दैट स्टोरी वेरी क्लोजली, बट फॉर नाउ वी स्लिपिंग इनटू वेरी शॉर्ट ब्रेक। कम राइट बैक। कमिंग अप नेक्स्ट वी टेल यू अबाउट हाउ एन इंडिगो फ्लाइट फ्रॉम नवी मुंबई टू श्रीनगर केम इन टू कॉन्टैक्ट विद अ पोल व्हाइल बीइंग पार्क्ड एट द श्रीनगर एयरपोर्ट दिस

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: बनाने के लिए दिल्ली पुलिस के शिकंजे में अब आ गया है।
1: देखिए बिल्कुल, दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्र भरद्वाज को बुलंदशहर से पकड़ लिया है। दरअसल इस मामले में जो विक्टिम है संजय, उन्होंने आज एक नई कंप्लेंट दी है जिसमें कहा था कि 23 जुलाई को जब उनके साथ में मारपीट हुई तब जो स्वतंत्र भरद्वाज है उसने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया था। हालांकि जो उनकी पहली कंप्लेंट थी उसमें इस तरह की बात नहीं थी। तो दिल्ली पुलिस ने FIR में SC ST एक्ट का जो सेक्शन होता है वो जोड़ लिया है जो कि नॉन बेलेबल सेक्शन है, इसीलिए दिल्ली पुलिस ने उसको बुलंदशहर से पकड़ा है क्योंकि उसकी लास्ट लोकेशन भी बुलंदशहर में आ रही थी। और आज सुबह हमने उससे जब बात की थी, उसका इंटरव्यू किया था, तब भी वो बुलंदशहर में ही था। तो पुलिस ने उसको डिटेन कर लिया है और वहां से डिटेन करने के बाद पुलिस उसको दिल्ली लेकर आ रही है और दिल्ली लाने के बाद यहाँ पर उसे गिरफ्तार किया जाएगा और इसके बाद उसकी कोर्ट में पेशी होगी और उसके बाद जो फर्दर इस मामले में कार्रवाई है वो की जाएगी। वही जो विक्टिम है उनकी दूसरी मांग ये थी कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया जाए क्योंकि आरोपी खुद ही कह रहा है कि उसने हाफ मर्डर कर दिया था लेकिन पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा, छोड़ दिया, नेताओं ने फोन कर दिए। तो इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि जो संजय है उनकी दोबारा से मेडिकल जांच होगी और नई मेडिको लीगल रिपोर्ट के आधार पर जो अटेम्प्ट टू मर्डर का जो केस है वो दर्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा वो उसी रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाएगा। तो कुल मिलाकर बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें स्वतंत्र भरद्वाज को डिटेन कर दिया गया है बुलंदशहर से और पुलिस उसे दिल्ली लेकर आ रही है। इस पूरे मामले पर कई सारे वीडियोज सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, कुछ वीडियोज जो है वो स्वतंत्र भरद्वाज के हैं जिसमें वो अपने दावे कर रहा है। वहीं अभी कुछ देर पहले कुछ नए वीडियो जो निशु आजाद हैं जिनके पिता के साथ में मारपीट हुई, निशु आजाद के पिता संजय के वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें वो स्वतंत्र भरद्वाज को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर एलिगेशन और फिर काउंटर एलिगेशन चल रहे हैं लेकिन इसी बीच दिल्ली पुलिस
0: एलिगेशन काउंटर एलिगेशन तो बिल्कुल चल रहे हैं लेकिन जरूरी बात यह है कि ये व्यक्ति खुद इस बात को कबूल रहा है कि मैंने पीटा, पिटाई हुई, उनको इंजरी हुई, ये दिल्ली पुलिस भी मान रही है। वो इंजरी किस नेचर की थी उसके ऊपर एक नया मेडिकल जांच हो सकती है लेकिन सवाल ये है कि इसने किसी को मारा और उसके बाद इस बात को कहता नजर आया कि दिल्ली पुलिस ने मुझे पकड़ा ही नहीं, मैं आराम से घूम रहा था, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। 2.5 महीने बाद अब दिल्ली पुलिस ने प्रेशर में इसको अरेस्ट किया है तो क्या कुछ ना कुछ दिल्ली पुलिस की तरफ से भी रीथिंक हो रहा है कि इसको पहले क्यों अरेस्ट नहीं किया गया?
1: देखिए दिल्ली पुलिस के मुताबिक जो पहले सेक्शन लगे थे क्योंकि जो पहली मेडिको लीगल रिपोर्ट आई थी उसमें जो नेचर ऑफ इंजरी था वो सिंपल था, इसीलिए BNS के ऐसे सेक्शन लगे थे जो अवेलेबल थे और उसको थाने में बुलाने के बाद उसको बेल मिली थी और उससे दो बार पूछताछ हुई थी। लेकिन जिस तरह से उसने अपना एक कबूलनामा किया है इंटरव्यू के दौरान कि उसने हाफ मर्डर किया, वो घूमता रहा, तो ये जो कबूलनामे हैं इस पर जो CGP है और जो भीम आर्मी है उसने इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया, थाने पर गए, प्रोटेस्ट हुआ, पुलिस से बातचीत हुई और फिर SC ST एक्ट जोड़ दिया गया। सबसे खास बात यह कि आज हमने इसका जो स्वतंत्र भरद्वाज है इसका हमने आज इंटरव्यू किया, उसमें वो कह रहा है कि हमने जो बोला था इंटरव्यू के दौरान वो सब मजाकिया लहजे में कहा था, उसमें कोई सच्चाई नहीं है और उसका ये भी कहना था कि अपने विरोधियों को चढ़ाने के लिए उसने मजाक में ये किया था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए जिस तरह का वो इंटरव्यू दे रहा है निश्चित तौर पर वो एक तरह से ये मान रहा है कि उसने जो
0: केश वो तो वो साफ दिखाई पड़ रहा है कि डर में, प्रेशर में, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि जो उसने बोला है अब उसके लिए मुसीबत बनने वाला है, वो आपके इंटरव्यू में भी अपनी बात बदल रहा था। मैं एक छोटा सवाल और पूछना चाहता हूं, इसने काफी सारे दावे किए थे कि दिल्ली पुलिस के डंडे भी उसके पास हैं और वो उनकी यूनिफॉर्म और जूते भी पहनता है और वो बिना फॉर्म भरा हुआ दिल्ली पुलिस में उसका सब क्या इसकी भी कुछ कार्रवाई, इसके ऊपर कुछ जांच दिल्ली पुलिस कर रही है? कैसे इसके पास वो दिल्ली पुलिस का जो लाठी है वो पहुंच गई और ये जो बातें बता रहा था कि दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म के जूते और बाकी सारी चीजें इसके पास आती हैं?
1: देखिए पुलिस के मुताबिक ये सारी जो एलिगेशन है वो बेसलेस है। उसका कहना ये है कि इंटरव्यू में जो भी दावे कर रहा है इसमें इसको लेकर कोई सच्चाई नहीं है कि पुलिस की लाठी या पुलिस के जूते या वर्दी उसके पास पहुंच रही थी, ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो दावे कर रहा है और एक वीडियो में वो दिखाई भी दे रहा है कि एक लाठी लेकर वो कनॉट प्लेस के पास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब मैंने उससे पूछा कि आखिर पुलिस की लाठी उसके पास कहाँ आई तो इसका उसने कोई ठीक तरीके से जवाब नहीं दिया। उसने ये कहा कि जो लोग पेट्रोल बम लेकर आते हैं, जो पत्थर लेकर आते हैं, पहले वो बताएं वो कहाँ से लाते हैं, तब मैं बताऊंगा कि मैं पुलिस की लाठी कहाँ से लाया था। तो कुल मिलाकर अब जब कस्टडी में उसको लिया जाएगा तो उससे पूछताछ होगी, जो क्लेम कर रहा है इन सारी बातों के बारे में पुलिस उससे डिटेल इंटरोगेशन करेगी कि आखिर जो दावे कर रहा है किन दावों में क्या सच्चाई है।

0: के बाद उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। वो ये भी कह रहे थे, मैंने उसमें सुना कि अभी तो निशु का भी नंबर आएगा, उसके लिए भी हमने तैयारी की हुई है। क्या उसके बाद से आपके लिए डर और बढ़ा? क्या आप जो पुलिस से आपने सुरक्षा की मांग की, पुलिस को आपने जब ये बताया ये सब चीजें, तो उनका रिएक्शन क्या था?
1: देखिए, सबसे पहली बात तो ये स्वतंत्र भारद्वाज ने जिस तरीके की बातें कही, इससे मेरे को भी बहुत डर लगा। और मैंने जब ये बात पुलिस के सामने रखी तो वो बोल रहे हैं कि हाँ, हम आपके लिए ये सब कर रहे हैं एंड आप इन लोगों के खिलाफ आप कंप्लेन फाइल कर दीजिए। हमने बोला कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमने तो कंप्लेन ऑलरेडी फाइल करवा दिया ना। तो पुलिस ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे नथिंग, कुछ हुआ ही नहीं है। बाय द वे, उन्होंने फिर भी हमारी एटलीस्ट कुछ तो बातें मानी और वो कार्यवाही एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो कर ही रहे हैं।
0: ये जो जिस तरीके की बातें कर रहा था अपने वीडियो में कि देखिए मेरे पास बहुत पॉलिटिकल सपोर्ट है, इसके दावे जिस तरह के थे, आपको लगता था कि इसके ऊपर कोई एक्शन होगा?
1: अफकोर्स, मैंने अभी देखा चिराग पासवान जी का भी एक इंटरव्यू आ रखा है कि मैं स्वतंत्र को जानता नहीं हूँ, इसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी क्योंकि उसने मेरी पार्टी का नाम बदनाम करने की कोशिश की है। एंड साथ ही मैंने देखा कपिल मिश्रा जी का भी एक इंटरव्यू देखा, उन्होंने भी यही बात कही। तो मुझे नहीं लगता
0: निशु, आप शायद आप म्यूट हो गई, एक बार अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार बोलिए दोबारा।
1: हेलो
0: जी जी बोलिए बोलिए, अब हम आपको सुन पा रहे हैं। जी
1: क्या आपके पास मेरी आवाज आ रही?
0: मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ आपको। जी अपनी बात पूरी करिए।
1: हाँ, तो मैंने अभी हाल ही में चिराग पासवान जी की एक वीडियो देखी जिसमें वो बोल रहे हैं कि भाई मैं उसके साथ नहीं हूँ, हम उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही करेंगे। और साथ ही मैंने कपिल मिश्रा का भी इस तरीके का एक वीडियो देखा जहाँ पर उन्होंने भी सेम ऐसी ही बात कही थी। तो मुझे लगता है कि इनके साथ इनका इन लोगों ने स्वतंत्र भारद्वाज की कोई भी हेल्प नहीं की थी, और अगर की भी होगी तो आप कोई हेल्प होगी नहीं, क्योंकि ये टॉपिक अब इतना ज्यादा वायरल हो चुका है कि सब अब हाथ खड़े कर रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्र भारद्वाज ने वाकई में एक अपराध किया था और अब उसको उसकी सजा मिलेगी।
0: इशू में आपसे दो सवाल बस मेरे और हैं, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, आपने इसके ऊपर आपको काफी पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिला, आज चंद्रशेखर आजाद आपके साथ गए थे, एमपी हैं, राहुल गांधी ने भी आपके ट्वीट को रीट्वीट किया, आपको लगता है कि अब ये किसी ना किसी तरीके से एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है, बीजेपी वर्सेस आपका मुद्दा बन गया है क्योंकि ऑपोजिशन आपको सपोर्ट कर रही है?
1: देखिए, मैं इसको बीजेपी वर्सेस अपोजिशन का कोई टैग नहीं देना चाहूंगी, मुझे न्याय चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा को जस्टिस मिले और स्वतंत्र भारद्वाज को उसके किए की सजा मिले। अब इसमें मेरा जो सपोर्ट करेगा मैं उसकी हेल्प लूंगी, अब वो चाहे कोई भी हो। तो आई होप कि भाई लोग इसको पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाएं। पॉलिटिकल लीडर्स ने मेरी हेल्प की, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उसके लिए उनकी सदा आभारी रहूंगी, क्योंकि अगर वो इस पर ध्यान ना देते तो शायद ही ये मुद्दा इतना हाईलाइट हो पाता और स्वतंत्र भारद्वाज गिरफ्तार हो पाता।
0: आप चाहेंगी कि बीजेपी के नेता भी आपके सपोर्ट में आए?
1: जी,
0: मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि कुछ लोग इस बात की भी मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई आपके खिलाफ भी होनी चाहिए, कुछ वीडियोस आपके पिताजी के और आपके भी वायरल हो रहे हैं जिसमें वो कह रहे थे कि स्वतंत्र भारद्वाज और मेरे अगर अकेले आमने सामने आ जाए तो मैं उसको सबक सिखा दूंगा, आपके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं?
1: सच बात है, ये अग्रेशन में आके बोला, क्योंकि जिस तरीके की हवाबाजी वो कर रहा था और पुलिस ना हमारी सुन रही थी ना कोई हमारा उस टाइम पे साथ दे रहा था, तो हमें लगा शायद अब हमें ही कुछ ना कुछ तो लोगों के सामने करना चाहिए, दिखाना चाहिए कि हम डर नहीं रहे हैं कि, है ना। तो उस वजह से हमने अग्रेशन में आकर पापा ने ये कह दिया। और वहां पर ये भी बात हुई थी कि अगर वहां पर बाई चांस पुलिस ना आती तो तुम्हारा भी वही हाल किया जाता जिसका जो हाल तुमने मेरा किया, लाइक खून वगैरह निकला। तो हाँ, अग्रेशन में आके कहा ये सब।
0: आपको लगता है कि इस तरह का आपको नहीं कहना चाहिए था आपके पिताजी को?
1: हाँ, वाकई में नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि हमने उस टाइम पे कानूनी तौर से नहीं सोचा था कि हाँ।
0: जी
1: आई एम रियली सॉरी। तो हाँ, हमें वाकई में ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि हमें संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए थी, बट उस टाइम हमारा साथ किसी ने नहीं दिया था, तो शायद ये बातें हमारे दिमाग से निकल गई थी और अग्रेशन में आके हमने ये बोल दिया था।
0: मैं अंत में आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपको अब यकीन है कि आपको जस्टिस मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा? दिल्ली पुलिस ने जो इनको अरेस्ट किया है, अरेस्ट होने के बाद एक कानूनी कार्रवाई भी इनके खिलाफ जिस तरह की हुई है उसके बाद सजा भी मिलेगी?
1: देखिए, पुलिस पे हमने भरोसा किया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 7 दिन के अंदर इनके ऊपर जितनी भी धाराएं होंगी सब लगेंगी और इनको सजा मिलेगी, इनको जेल भेजा जाएगा। तो आई होप कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है वो वाकई में सच हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये लड़ाई एक तरीके से कानूनी तौर से लड़ी जाए, ना कि किसी और तरीके से। और पुलिस ने अगर कहा है तो वो शायद करेगी, और अगर बाई चांस नहीं करती तो हम अब फिर से अपने नेताओं के पास जाएंगे और फिर वो जो कहेंगे फिर आगे चलकर हम वो करेंगे।
0: निशु, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस। यू नो यू हैव द सपोर्ट ऑफ द पीपल बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड विद योर फादर, एंड वी आर होपिंग दैट दिस मैन इज टॉट अ लेसन। ही इज अ यंग मैन, ही नीड्स टू बी टॉट अ लेसन सो दैट दिस डजंट बिकम अ वे ऑफ लाइफ एज फार एज दिस मैन इज कंसर्न। ऑलराइट, लेट मी गो बैक टू माई गेस्ट एट दिस मोमेंट, कीर्ति राठौर। लेट मी जस्ट चेक इफ शी इज बैक विद अस और नॉट। वी हैव बीन ट्राइंग टू, कीर्ति इज बैक। ओके कीर्ति, you've not been able to speak on this. That was Nishu Azad, hopeful that the police has arrested him and now there will be a whole legal process. The might of the law is going to come down on Swatantra Bharadwaj. What do you have to say, Kirti? Because the kind of things that he said are deeply troubling, not only about accepting that he indulged in violence, that he had political support, but the kind of things that he said about the Muslim community, the way he was speaking about it is deeply, deeply disturbing.
2: Of course, I would love to say that it's a great step that police has arrested him. And now that he's been arrested, let the law take its own course and the culprit should be behind the bars. Of course, it's so disturbing.
0: Okay, I apologize to our viewers. There is a bit of that problem with her line. But Anish, let me bring you in at this moment. There, like Mr. Vikram Singh also said, while you are right to question the Delhi police, and we have also done that, you know, the delay as far as the sections are concerned, the fact also remains, you know, Anish, that a lot of people will draw equivalence that, you know, there were a lot of people there, those who made some objectionable remarks. Policemen have also been injured. Should the CJP not be vociferous about that as well?
3: Ankit, the answer to that is very simple. Who controls the Delhi police? The BJP and the Home Ministry. Who has access to CCTV footage? The BJP and the Home Ministry. Who deserves to take action against people who are beating police officers? The BJP and the Home Ministry. It is in fact the failure of the government that they have not taken action against those who beat up police officers. Please show us the footage of who was beating police officers. Please find out who was beating police officers. The reason that they will not do that is because they were planted goons put in place by the government. And these are serious allegations to be making, but these are allegations that have to be made, because if 2 months later, there is nobody who is arrested for beating up a police officer, and the government claims that more than 100 police officers were seriously injured in these protests, then the only question that has to be asked is who is protecting the people beating up police officers? If the government is in your hand, if the police is in your hand,
0: right,
3: the Home Ministry is in your hand, why are you not taking action?
0: Vikram Singh ji, let me ask you this. You know, in terms of the policing, sir, this also, policing is a lot about trust as well. When residents have to, in fact, for basic FIRs, have to stage a protest, political figures have to come out and sit in the police station, whether it was the case of the FIR when Rahul Gandhi had to go and sit because of the pellet gun victim, or in this case as well. This does erode the trust of the people in the police force, which is meant to protect them, sir.
4: Trust begets trust and distrust begets distrust. And trust is a relationship that is built over decades and broken in just single incidents. And therefore, I would say it cuts both ways. You have to be trustworthy to be trusted. In this case, the police have been caught on the wrong foot because, yes, they faltered and did not apply the entire sections of the rule book. And that is where I hold them responsible. But that does not condone the fact that the fact of the matter is that nobody, it's so easy and simplistic to say it's for the government to identify the criminals and put them behind bars. But I would say that the loud silence in respect of the people, that they should all be equally vociferously pursued, as in this any case, the case of a single person being brutalized, and it is not 100, it is around more than 150 plus Delhi policemen and women. And therefore,
0: but Vikram Singh ji, who's responsible for that? Who's responsible for the investigation? It is the Delhi police itself.
4: Obviously, the Delhi police is there, but you have in fact made an ecosystem in which whatever the police does, you would accuse them of high-handedness now. I'm sure of that. The fact of the matter is, all the media would take up all the cases where it contains to matters pertaining to an agitation, pertaining to an agitator. But when it comes to being on the side of the policeman, name a single agency who has stood by the side of the police families.
0: Not one. But I, like I said, I mean, we would want those who have beaten up the men in uniform to be absolutely put behind bars. They have our full support. But again, let me circle back to the same question, sir. Is the Delhi police only working or because of the pressure in the ecosystems, whether it is in this case or like you said, there will be ecosystem that will come and condemn the Delhi police, then where is the professionalism as far as the Delhi police is concerned?
4: Are you not working in an ecosystem? All of us have worked in an ecosystem, and to say that there is no pressure would be living in a fool's paradise. Of course, there is pressure, but the qualities of leadership are such that only legal orders are complied with. Illegal and illegitimate orders are not complied with. Therefore, in any system, whether yours or the police, there is an ecosystem where there are bound to be pressure. But you have to be a man enough to say no to an illegitimate order.
0: So that is something that the Delhi police leadership should think about. You have a very good advice for them. They should be thinking about that, what you are saying at this moment. Anil Gupta, spokesperson of the Bharatiya Janata Party, is joining me on the phone line at this moment. Mr. Gupta, Swatantra Bhardwaj claimed that he had support of a full galaxy of the BJP leaders. He named a few as well. He has been arrested by the police right now. What do you have to say about the claims that he had made, sir?
5: See, anybody who is accused, anybody who is criminal, should we rely on his sentence onwards? The Delhi police is doing their duty. The case has been registered, the accused has been arrested. And we are ruled by the constitution, we are ruled by the Bharatiya Nyaya Sanhita. So I think the importance should not be given to the public statement of the accused. Already he has been arrested, he is now under investigation, and we should have faith on Delhi police.
0: Would you extend your support to the victim in this case, sir? Meesho Azad and her father, those who were beaten up?
5: See, we are with the people who are, victim of all these crimes. So we are against the criminals. Already I said the person who has suffered, we are with him. And Delhi police is taking care of all these things.
0: Absolutely.
5: And
0: will your party stand with others' demand that strict action, punishment should be given to this guy?
5: We are always in support that all the things should be taken care of.
0: Okay.
5: And we also request the judiciary to decide this case on the priority basis, on fast track court. This is our stand.
0: I'm glad you're saying that, sir. Thank you so much for speaking to us. Anish, I'm completely out of time. I want to give you the last word on this. There seems to be an ecosystem. All right. I think we have lost Anish as well. I'm completely out of time. Thank you so much to my guest for joining me on this very important story. Why is it important? Because there is a system that seems to be at this moment in place where such people think that they can get some credit, that they can, in fact, go ahead in life by being so hateful, violent, and boast about it on social media. And this should be an example for many more, those who want to follow the footsteps of this guy called Swatantra Bhardwaj. Leaving it there, quick break, coming back with much more. Stay tuned.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्थोन मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।

0: drive in the Kia Sorento.
1: Kia, movement that inspires.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आके और मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।

0: no matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा प्योर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।

0: if a boy from Ahmedabad could build what stands here today, then there must be 1,000 more Gautam Adanis simply waiting for someone to notice them.
1: इसी सोच के साथ संघर्ष की खदानों में छिपे देश के हीरों को तराशने के लिए श्री गौतम अदानी ने शुरू किया देश का सबसे बड़ा ग्रास रूट्स इनोवेशन मूवमेंट वंदे भारतम। एक ही महीने से कम समय में देश भर से जुड़े लाखों लोग, हजारों सपने, टॉप मेंटर्स, कई शीर्ष नेतृत्व, बदलने देश के स्टार्टअप का सीन, करने करोड़ों का निवेश, आइडियाज को साल भर वेलकम करने के लक्ष्य के साथ। तो मंच है शानदार, करोड़ों की प्राइज मनी का हो रहा है ऐलान, स्पेशल कैटेगरी पर भी है खास ध्यान। और बात सिर्फ पुरस्कारों तक सीमित नहीं है, क्योंकि हो सकता है मेंटर्स को किसी इनोवेशन या बिजनेस आइडिया में पोटेंशियल नजर आता है तो वे शुभारंभ के लिफाफे के साथ कर सकते हैं उसमें इन्वेस्ट। या ये भी हो सकता है कि किसी इनोवेटर की कहानी और उनका स्ट्रगल किसी मेंटर को इंस्पायर कर दे तो वे उन्हें दे सकते हैं वंदे विंग्स, जिसमें उन्हें मिलेगी अदानी ग्रुप के साथ 10 दिनों की मेंटरशिप। और अगर आपका आइडिया नहीं बन सका हमारा भागीदार तो निराश न होना, बस रजिस्ट्रेशन करो, पाओ निवेश में मदद, मेंटरशिप या अदानी ग्रुप का सहकार। और हाँ, ऑडियंस भी हमारे पोर्टल पर जाकर इनोवेटर्स को वोट कर सकती है, और यदि आपका टॉप 5 का सिलेक्शन मेंटर्स के सिलेक्शन से मैच होता है तो 3 लकी विनर्स को मिलेगा स्पेशल प्राइज। तो अब क्यूरियोसिटी कम करते हैं और इनोवेशन की ओर आगे बढ़ते हैं।

0: मैं हूं राजीव खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका उस सफर में जो दे रहा है हौसलों को उड़ान। एक बार फिर मैं आपको मिलवाता हूं हमारे आज के मेंटर्स, वेंचर कैटलिस्ट के को फाउंडर और 9 यूनिकॉर्न एक्सीलरेटर फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर। प्लीज वेलकम डॉक्टर अपूर्व रंजन शर्मा।
1: हाय राजीव।
0: हाय डॉक्टर अपूर्व।
1: लवली कैचिंग अप।
0: वंदे भारतम के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। प्लीज सर, 1400 करोड़ से ज्यादा के पोर्टफोलियो के साथ लाखों इन्वेस्टर्स की प्रेरणा बन चुके हैं हमारे ये इन्वेस्टर। प्लीज वेलकम केडिया सिक्योरिटीज के मैनेजिंग डायरेक्टर विजय खेड़िया।
2: हेलो
0: विजय जी, वंदे भारत में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: प्लीज सर, इनका हर मूव विनिंग स्ट्राइक है। ताइक्वांडो और रूरल ई कॉमर्स की चैंपियन, रोजाना की को फाउंडर। प्लीज वेलकम अंकुर धैया।
3: हेलो राज।
0: हाय,
3: नाइस टू मीट यू।
0: नाइस टू मीट यू टू एंड वेलकम टू वंदे भारत।
3: थैंक यू।
0: प्लीज, आज हमारे साथ हैं अदानी फैमिली के एक और होनहार सुपरस्टार जो नए भारत के कल को आज से मजबूत बना रहे। He has transformed Adani Enterprises into India's largest infrastructure incubator, creating businesses across real estate, renewable energy, data centers and mining. ये अदानी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फोरम्स में। अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर, प्लीज वेलकम मिस्टर प्रणव अदानी। हाय प्रणव।
4: हाय राजीव।
0: थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू वंदे भारत।
4: थैंक यू राजीव फॉर हैविंग मी ओवर।
0: प्लीज हैव अ सीट। प्रणव, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका क्राइटेरिया क्या रहता है किसी भी स्टार्टअप को जब आप गेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट वर्दी समझते हैं।
4: राजीव, मेरा जो क्राइटेरिया है, खास करके मैं देखता हूं कि हाउ इम्पैक्टफुल दैट आइडिया इज at the grassroots level and also at the country level. That is something that I'll look for.
0: All right, prepared hai aap log hamare innovators milne ke liye?
4: Bilkul.
0: You know, passion ko profession bahut log bana dete hain. Lekin ek school ke project se ek prototype banana aur phir us prototype ko apna profession banana shayad kuch kam log karte hain. Hamare jo agle innovators hain, wo bhi un kuch kam logon mein se hain. So please welcome Patna Bihar se Navmark Research and Innovation ke innovator Arpit Kumar and Abhijit Kumar. Arpit, kaun hai aap?
5: Main.
0: Aap hain Arpit?
5: Abhijit.
0: Abhijit. Aur aap dono dost hain?
5: Hi.
0: भाई हैं, रियल ब्रदर्स हैं।
5: दो साल बड़े हैं।
0: ये स्कूल का प्रोजेक्ट था किसका, आपका या आपका?
5: हमारा, दोनों।
0: अच्छा, आप दोनों का स्कूल का प्रोजेक्ट था।
5: यस, हमने 2018 जून में, हम बिहार बाल भवन किलकारी, हर स्टेट में एक बाल भवन होता है, वहाँ हम दोनों साइंस विधा में सीखते थे प्रोफेशनल स्टेम। तो हमें वहाँ प्रोजेक्ट दिया गया कि बिहार से हमें, और ये समस्या बहुत लोकल है, इस पर आप लोग कुछ असेस करिए कि टेक्नोलॉजीज क्यों फेल होती है। तो तब से हमने 2018 से स्टार्ट किया, एक साइंस कांग्रेस में पार्टिसिपेट किया, हमें A+ ग्रेड मिला और बिहार को 6 साल के बाद A+ ग्रेड मिला था। फिर बिहार सरकार ने हमें सपोर्ट किया इस प्रोजेक्ट को।
0: लोग कहते हैं अक्सर बिहार से सिर्फ या तो IAS ऑफिसर्स निकलते हैं या इंजीनियर्स निकलते हैं। आज एक स्टार्टअप कंपनी के ओनर्स वंदे भारतम के मंच पर पहुंच गए हैं। आपकी पिच रेडी है?
5: हाँ,
0: yes. आपके मेंटर्स आपके सामने बैठे हैं, तो विश यू ऑल द बेस्ट। और आपके चमकने का समय शुरू होता है अब।

0: नमस्कार मेंटर्स, मैं अर्पित कुमार, मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स में।
1: और मैं अभिजीत कुमार, थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ IIT पटना
0: से। और हम आए हैं पटना बिहार से, और जिस समस्या पे हम काम कर रहे हैं वो पानी से जुड़ा है। बिना पानी के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, और अगर वही पानी जहर बन जाए तो जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। और बिहार में 38 में से लगभग 20 जिले और भारत राज्य के 25 राज्यों के 221 जिले पानी से आर्सेनिक प्रभावित पाए जाते हैं। और ये जो आर्सेनिक है वो नेचुरली ऑक्रिंग केमिकल एलिमेंट है, जो ग्राउंड वाटर हैवी मेटल पाया जाता है। और इससे बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कैंसर, स्किन लेजर। और ये आजकल जो बीमारियां होती है ये पता लगने में भी 5 से 10 साल तक का समय लगता है डेवलप होने में। तो इमेजिन करिए, अगर एक बच्चा एक स्कूल में पहली कक्षा में जाता है और वो 10 साल तक उस स्कूल में ये पानी पीता है। ये हमारे कुछ रियल पेशेंट्स हैं जिन्हें हम अपने स्कूल्स में देख रहे हैं, और इस बच्चे को स्किन कैंसर पाया गया है। और आजकल आर्सेनिक सिर्फ पानी नहीं, पानी से माँ के दूध के थ्रू नवजात बच्चों में भी जा रहा है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमने सोचा कोई वैसा टेक्नोलॉजी बनाए जो कि एटलीस्ट 5 से 10 साल तक बिना हैवी मेंटेनेंस के ये आर्सेनिक फ्री, हैवी मेटल फ्री वाटर प्रोवाइड कर सके। और हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को 2018 जून में देखा, और तब से हम लोगों ने इसको सॉल्व करना शुरू किया।
1: और पिछले 7 सालों से हम लोगों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कम्युनिटी ट्रायल्स एंड फीडबैक लेकर के डेवलप किया है मेटल। तो 2020 से हम लोगों ने इसको 13 जगह पे पायलट्स अपना ट्रायल किया था, जनरली स्कूल्स और कम्युनिटी में, जहाँ पे इन टोटल हम लोगों ने 30 लाख लीटर अभी तक सर्व कर चुके हैं। इन 13 जगहों पे ऑलमोस्ट 50,000 लोगों को इम्पैक्ट किया है। साथ ही साथ ये डिफरेंट CSIR लैब्स के थ्रू वैलिडेटेड है, जल जीवन मिशन में इम्पैनल्ड है, और हम लोग जेम पे भी अवेलेबल हैं फॉर द नेशन वाइड यूज केस। इसके साथ साथ हमारे पास 5 पेटेंट्स हैं इस टेक्नोलॉजी को लेकर के।
0: और हम लोग अभी अपने कमर्शियल ट्रायल के फर्स्ट फेज में फाउंडेशन और CSR के साथ मिलकर लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, जिसके लिए हमें जरूरत है 5 करोड़ रुपए की। और नवमार्क सिर्फ आर्सेनिक रिमूवल तक सीमित नहीं है, हम वाटर में और भी चैलेंजेस पर काम कर रहे हैं, ताकि इन टर्म्स ऑफ बिजनेस व्यू हम इसको सस्टेनेबल बिजनेस बना सके। हमारा लक्ष्य बहुत साफ है, कोई भी बच्चा पानी, भोजन या माँ के दूध के रास्ते आर्सेनिक जैसे जहर के साथ बड़ा ना हो, यही हमारा नवमार्ग। थैंक यू।
1: थैंक यू।
2: आई थिंक बहुत बढ़िया आइडिया है जो आप लोग ने सोचा है। और मैं जानता हूँ कि बिहार की आज आबादी ऑलमोस्ट 14 करोड़ लोगों की है, और ये प्रॉब्लम तो ज़रूर है। और सबसे अच्छी आइडिया इसमें क्या है कि आपने इसको सोशल प्रोजेक्ट एज वेल एज, जैसे मैंने सुना कि इसको इवेंचुअली कमर्शियली वायबल भी करने वाले हो, बिकॉज यू हैव टू हैव अ सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपने कहा कि आप पायलट स्टेज पर कर रहे हो, तो वो जो पूरा अपना नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट है, आई थिंक यू शुड ट्राई इन मेनी अदर लोकेशंस बिसाइड्स जस्ट पटना।
0: यस,
2: बट दिस इज द नीड ऑफ इंडिया एंड द नीड ऑफ द आवर, सो आई थिंक इट्स अ गुड प्रोडक्ट।
0: मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग अभी कर्नाटक में भी स्टार्ट कर चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के सपोर्ट से, और हम लोग फाउंडेशन को अप्रोच कर रहे हैं कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट में कैसे स्टार्ट करें।
2: पर आज की तारीख में सरकार भी काफी चीजें कर रही है, तो यू हैव टू आल्सो सी दैट हाउ यू आर एबल टू बैलेंस दैट।
0: इसलिए हम लोगों ने इसे जल शक्ति मंत्रालय ने नेशनल टेक्नोलॉजी में इंपैनल किया, क्रॉस वेरीफाई करके आर्य मास्केलकर कमेटी ने, और हमें जेम पे स्पेशल कैटेगरी में डाला, ताकि हम जेम से सारे राज्यों में आपूर्ति कर सके, और जल जीवन मिशन में भी जो 2.0 है, जहां भी रिक्वायरमेंट वहां हम लोग पार्टिसिपेट कर सके भारत सरकार के साथ मिलकर।
2: तो आप अज्यूम करो कि एक कम्युनिटी ने अगर पक्का किया कि दे वांट टू यूज नवमार्क, तो फिर इसका फंडिंग कैसे होगा वो कम्युनिटी में?
0: तो अभी जो फर्स्ट स्टेज में हम जो कस्टमर डिस्कवरी में जा रहे हैं, तो उसमें कम्युनिटी में हम अप्रोच करते हैं फाउंडेशन को, जो ऑलरेडी स्केड्यूल 7 के अंतर्गत वाटर पे काम कर रहे हैं। तो फंडिंग हमें फाउंडेशन के थ्रू आती है, हम इसको वहाँ इंस्टॉल करते हैं, और पूरा मेंटेनेंस हम देखते हैं इसका 5 से 10 साल तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये हमारा एक मॉडल अभी है। पैरेलली हम लोग EPC भी देख रहे हैं, अगर सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर सके, और दूसरा B2G टेंडर में बिड्स में पार्टिसिपेट करना। ये 3 तरह का मॉडल हम लोग पैरेलली अभी 1-2 साल प्लान किए देखने का।
2: और इसका कैपिटल कितना है? ये जो आपने
0: 400 लीटर का जो कैपेसिटी है, इसका 2.59 लाख रुपीस है, और ये 15 साल के लिए, यानी एक बार जब हम मैग्नेट लगाते हैं ये 15 साल तक इसको कुछ नहीं होगा, उसके बाद इसको रिचार्ज करना पड़ता है, बिकॉज दीज आर रेयर अर्थ एलिमेंट।
3: एक बात मेरे को समझाइए लेमन लैंग्वेज में, साधारण आदमी के हिसाब से, कि जैसे हम लोग RO यूज करते हैं, फिल्टर विल्टर यूज करते हैं, जो प्रॉपर्टी जो पानी की जो होती है, इसमें और उनमें क्या फर्क है? प्रॉपर्टीज के अंदर में वो कितना शुद्ध है, और इसमें इसमें क्या फर्क है, ये जरा समझाइए।
0: घरेलू स्तर में जो RO फिल्टर होता है, उसमें हम मेम्ब्रेन यूज करते हैं, जिसका काम होता है सारे कंटामिनेंट्स को रिजेक्ट करना। उसमें होता है कि

0: है कि मेम्ब्रेन हमारे एसेंशियल मिनरल्स को भी रिजेक्ट आउट कर देता है। इस फिल्टर के केस में क्या होता है कि यहाँ कोई मेम्ब्रेन नहीं यूज हो रहा है, यहाँ सेपरेशन मेथड यूज हो रहा है, यानी हम सिर्फ हेवी मेटल्स को ही एलिमिनेट करते हैं और कुछ जैसे पीएच, पानी के पीएच और टीडीएस पे थोड़ा प्रभाव छोड़ते हैं, ताकि पानी पीने लायक, जो भारत सरकार का मानक है टीडीएस 500 तक होना चाहिए, पीएच 8.7.5 तक होना चाहिए, उस स्तर का पानी दे सके।
1: माय क्वेश्चन टू यू इज दैट व्हाट इज योर बिजनेस मॉडल?
0: सो फार विद दिस प्रोडक्ट वी फॉलो हाइब्रिड बिजनेस मॉडल। राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन फॉर नेक्स्ट 2 ईयर इन 2 चैनल्स, वन फाउंडेशंस, अनदर वन इज सीएसआर एंड ईपीसी प्रोजेक्ट।
2: मैं रोजाना एक कंपनी चलाती हूँ जिसमें हम लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, झारखंड, इन्हीं सब स्टेट्स में काम करते हैं। अगर आपकी कोई मदद कर सकें किसी जगह इम्प्लीमेंट करने में, आपकी फुल सर्विसिंग कराने में, बिकॉज बहुत सारे लोग फील्ड में काम करते हैं, तो विल बी वेरी वेरी यूजफुल।
0: या वेरी गुड विजन, बिकॉज वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन फुल स्टैक डेवलपमेंट, एंड टू एंड वर्टिकल, देन वी कैन क्रिएट मोर इम्पैक्ट व्हाट वी हैव लर्नड।
1: सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक द प्लेस फ्रॉम वेयर यू आर एंड द स्टेज ऑफ लाइफ वेयर यू आर, I think you've taken big courage to create something different. Actually, it's a very large problem there. You know, there are two large things which is happening. If the next war will happen, it will happen for water. So we should support more and more water startups. And the way they are addressing, I think, I've never heard so far somebody talking about the arsenic removal, all of
3: that. Abhi is umar mein.
1: Yeah, or maybe that stage of their life, you know, if they're taking that courage, I'll say if you really permit, then probably
4: yes,
1: this you can think about.
4: But they deserve the one day wings.
3: Pranav Adani ji ne decide kiya hai ki wo aapko one day wings denge. One day wings ka matlab hai ki aapko 10 din ki mentorship milti hai Adani Group ke saath mein. Thank you so much. All the best. Mentors course. आगे बढ़ते हैं। हमारा हर बड़ा फैसला जो है ना, वो एक छोटे से सवाल से शुरू होता है हमेशा। ऐसा किया तो क्या होगा? हमारे जो अगले इनोवेटर्स यहाँ पर आ रहे हैं, वो इसी सवाल का जवाब लेकर आ रहे हैं। Please welcome फरीदाबाद हरियाणा से चननीति टेक्नोलॉजीज के इनोवेटर सक्षम पृथ्वी एंड ऋषिका सरस्वत।
5: हेलो सर, नमस्ते।
3: हाय, वेलकम टू वंदे भारतम। आप दोनों दोस्त हैं?
5: हाँ जी।
6: जी सर।
3: दोस्त से ज्यादा हैं?
5: जी सर।
3: तो बताइए ना, आप लोग पार्टनर्स हैं?
5: यस सर।
3: फैंटास्टिक। बिजनेस में भी और लाइफ में भी।
5: सर।
3: आप लोगों की मुलाकात कहाँ पे हुई, इस प्रोजेक्ट पे काम करते करते? या
5: तो सर, वी मेट ड्यूरिंग आवर डेज एट IIT कानपुर। वी स्टार्टेड डेटिंग इन द फर्स्ट ईयर एंड नाउ इट हैज बीन 6.5 इयर्स।
3: हम इस मंच पर और भी कोई हैं जिन्हें हम जानते हैं जो ऐसे काम करते करते किसी से मिली थी और मिलने के बाद में उनकी जिंदगी आगे बढ़ गई।
5: सही बात।
3: अंकुर जो हमारी सामने मेंटर बैठी हैं, इनका भी लाइफ स्टोरी कुछ ऐसी थी, बट ऑफ कोर्स वो जहाँ पर हैं, हम चाहते हैं कि आप भी वहीं पर पहुंचे बहुत जल्दी। आप लोग रेडी है?
5: हाँ जी।
3: आपके पास में 3 मिनट है और आपके चमकने का समय शुरू होता है। आप
7: नमस्ते मेंटर्स, हम IIT कानपुर और स्टैनफोर्ड के इंजीनियर्स हैं और हम बना रहे हैं जननीति, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड AI प्लेटफॉर्म जो डिसीजंस को लॉन्च होने से पहले उनका इम्पैक्ट बता देता है। मेरा नाम सक्षम प्रूति है, मैंने ETH ज्यूरिक और स्टैनफोर्ड से मास्टर्स करी, जहां मैं AI और ह्यूमन ब्रेन एंड बिहेवियर पर रिसर्च कर रहा था। वहां से एक यकीन आया, जैसे हम एक इंडिविजुअल को सिमुलेट करते हैं, वैसे हम एक पूरी सोसाइटी को भी सिमुलेट कर सकते हैं।
5: मेरा नाम ऋषिका सारस्वत है, मैंने एल्वरेज एंड मार्शल में मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, लेकिन ये जाना है कि सबसे मुश्किल डिसीजन वो होता है जिसका रिजल्ट आज नहीं, इम्प्लीमेंटेशन के काफी समय बाद पता चलता है। हर साल गवर्नमेंट्स और बिजनेसेस लाखों करोड़ों रुपए पॉलिसीज एंड प्रोजेक्ट्स पर खर्च करते हैं, डिसीजन पहले लिया जाता है और उसका रिजल्ट काफी सालों बाद पता चलता है।
7: इसी सफर को सालों से घटाकर हफ्तों का करने के लिए हम बना रहे हैं जननीति। मेंटर सोचिए, जैसे गूगल मैप्स कोई भी सफर शुरू होने से पहले उसका ट्रैफिक दिखा देता है, वैसे ही जननीति कोई भी डिसीजन इंप्लीमेंट करने से पहले उसका इम्पैक्ट दिखा देता है।
5: जननीति AI से एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाता है जिसमें लोग, कम्युनिटीज, businesses,

0: इंस्टीट्यूशंस सब अपने अपने डिसीजन खुद लेते हैं, एक्ट और रिएक्ट करते हैं बिल्कुल असल जिंदगी की तरह। सिमुलेशन के बाद हम की रिस्क्स, कंसर्न्स एंड हिडन अपॉर्चुनिटीज हाईलाइट करते हैं।
1: जैसे कि क्या ये पॉलिसी ऑन ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होगी,
0: लॉन्च करें तो कस्टमर्स कैसे रिएक्ट करेंगे,
1: किसका फायदा होगा
0: और किसका नुकसान,
1: और कौन पीछे रह जाएगा, ताकि कोई भी कमी जमीन पर नहीं स्क्रीन पर ही पकड़ी जाए।
0: हम अब तक भारत और यूएस की गवर्नमेंट्स को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स डिलीवर कर चुके हैं और फॉर्च्यून 500 कंपनीज, बिग फोर कंसल्टिंग फर्म्स और अन्य एडवाइजरी फर्म्स के साथ प्रोजेक्ट कॉन्वर्सेशंस में हैं।
1: हमने नीति आयोग के लिए जल जीवन मिशन पर एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट डिलीवर किया था। जन नीति ने 2019 का एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाया और जल जीवन के जो इम्प्लीमेंटेशन गैप्स अगले 7 सालों में ऑन ग्राउंड पर दिखे थे वो हमने आज ही प्रेडिक्ट किए थे। जैसे कि वाटर सप्लाई को इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज से कैसे लिमिट हो सकता है, आज JJM 2.0 2026 में इसको एड्रेस कर रहा है।
0: यानी अगर 2019 में जननीति होता तो हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके डायग्नोज एंड फिक्स भी कर सकते थे।
1: बिल्कुल, हमने रियल वर्ल्ड आउटकम्स के अगेंस्ट इस केस स्टडी पे 87.5% डायरेक्शनल एक्यूरेसी दिखाई थी।
0: हमारा मानना है कि आने वाले समय में दुनिया भर के सरकारें और बिजनेसेस लॉन्च करने से पहले अपने डिसीजंस को टेस्ट करेंगे, जिससे पैसे, वक्त और पॉलिटिकल कैपिटल तीनों बचा सकें।
1: हम मानते हैं भारत शुड बिल्ड फ्रंटियर एआई फॉर द वर्ल्ड।
0: जय हिंद।
2: What is it ask?
0: We need for the next 10 to 12 months to function a capital of 4 crore.
1: And we are also asking for a strategic pilot opportunity and mentorship, of course, from all the our experienced jury.
3: मेरे को ये बताइए, ये क्या चैट जीपीटी से फ्री में मेरे को मालूम नहीं पढ़ सकता जो आप सॉल्यूशन देना चाह रहे हैं, जरा इस पे कुछ प्रकाश डालें।
1: चैट जीपीटी से आज की डेट में कई डिसीजंस लिए जा रहे हैं, बट सर वो बहुत ही सरफेस लेवल डिसीजंस होते हैं। दे आर जनरली नॉट ग्राउंडेड इन डेटा एंड वो हेल्यूसिनेट भी कर सकता है। जो सर हम बना रहे हैं, इट इज बिल्ट एक्सप्लेनेबिलिटी फर्स्ट एंड इट इज बिल्ट ग्राउंडेडनेस फर्स्ट। वी ऑल्सो शो कॉजल चेन रिएक्शंस कि इस मैकेनिज्म से ये हुआ, इससे ये हुआ, बिकॉज वी आर सिमुलेटिंग अ वर्ल्ड जहां पे ये एक्चुअली हो रहा है।
4: यू हैव योर ओन एलएलएम फॉर?
0: सो सर व्हाट वी डू इज वी सेल्फ होस्ट अदर एलएलएम्स, वी वर्क विद मॉडल्स लाइक सर्वम, चैट जीपीटी, क्लॉड 2, बट वी फाइन ट्यून द मॉडल्स। दैट इज अगर कोई मॉडल ऑलरेडी है, वी पुट मोर डेटा इनटू इट सो दैट इट गेट्स द करेक्ट रेफरेंस।
4: हु विल बी योर कस्टमर्स, फर्स्ट सेट ऑफ कस्टमर्स?
0: बिजनेसेस विल पे अस। For example, we know that Adani Group is undertaking a really big Dharavi redevelopment project. So there are a lot of things that have to be considered. Dignified reallocation of people to houses. There are also some economies functioning in these parts like Kumarwala and etc. So how will these economies be impacted? Which one should you reallocate first? So these are the kind of decisions that we can help businesses with.
3: Very happy to work with you guys at the Dharavi this thing. So we'll take up maybe one sector there.
0: Correct.
3: And exactly. See how, you know, like Rishika said, the Kumbharwadas or something, what do they feel? What are the development for them? So something like that, let us start with. And then I want to see that, you know, how true it is, because we are also doing a base study.
0: Yeah.
3: So we are happy to work with you guys at least in Dharavi. And then if that works, we'll take you to other parts of the...
2: That is such a massive project.
5: आपकी सब बातें सुनते हुए आई जस्ट रियलाइज, आपने गवर्नमेंट्स में बताया, आपने धारावी प्रोजेक्ट बताया, बट एक्चुअली वाई कैंट बी सिम्युलेट अ गांव का बिहेवियर ऑल्सो, जस्ट लाइक हम लोग बहुत गांव में काम करते हैं।
0: करेक्ट।
5: वेस्ट यूपी बिहेव्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईस्ट यूपी, सेंट्रल बिहेव्स, अवध बिहेव्स वेरी डिफरेंट। उन सब में लॉन्च करने से पहले वी ऑल्सो गो थ्रू दिस प्रोसेस।
0: करेक्ट।
5: सो सम ऑफ दीज सिमुलेशंस
0: Yeah.
5: May not be like government projects, but before going ahead, आप तो फरीदाबाद में रहते हैं, बहुत पास है हमारे ऑफिस के, please would like to welcome you to Rozana and please help us maybe launch some of our next districts or next states that we are working on. And there is lot of data, there are insane amount of consumers that come every day.
0: We'd be happy to do it.
5: आपको जो 12 महीने के लिए चलने के लिए you need capital, I hope हम साथ में integrate करेंगे, तो hope you can earn some of that with revenue and would love to figure out how I personally or as a group, how we can participate in your round.
0: Sure.
3: I think as you see, all our judges are very excited and I'd like to present to you the Wings, which is mentorship that you will get from all of us over here.
5: And if this means that I should write something on this one, I would love to, definitely would look forward to.
2: So basically, you'll probably get some investment and you're also getting the Wings.
0: Yeah.
2: You can fly now.
5: Your equity ask, just be format mein aega, would love to figure out and participate. Yeah. So
0: sure.
5: Would love to.
0: Sure. Thank you so much, ma'am.

0: maintenance free, and the filtered particles, it's not just a waste. It can be used in ink and dyes as well.
1: Bengaluru se carbon khet.
2: Jab farmer kheti karta hai, wo kheti ke saath us khet ka mitti ka sehat bhi sudharta hai. Wo polluted atmosphere se carbon ko kheench kar apne zameen ke andar store karta hai. Is zameen ke daba hua carbon ko measure karna bahut hi mushkil aur bahut hi mehanga hai. Isliye hum bana rahe hain carbon khet, ek AI jo satellite se space se hi mitti ka carbon naapta hai.
1: Aur Nagpur se Amlan River Corp.
3: Ne sabse valuable resource nadiyon ko trash can bana diya hai. जिससे हमारी बायोडायवर्सिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है।
4: हमने नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग पढ़ा। इस पढ़ाई के माध्यम से हमें लगा कि क्यों ना एक छोटी बोट बनाई जाए जिससे हमारे वाटर बॉडीज की साफ सफाई हो पाए और हम उन्हें फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रोटेक्ट कर पाए।
5: आज वंदे भारतम के इस कारवा में आप भी जुड़ गए। अगर किसी इनोवेटर के आइडिया ने आपको इम्प्रेस किया है तो आप उनके लिए वोट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट at vandebharatam.org or by scanning the QR on your screens. आप ये सारे एपिसोड देख सकते हैं NDTV 24/7, NDTV Profit और NDTV के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। वंदे भारतम के इस मंच पर हमारे इनोवेटर्स का सफर जारी रहेगा। फिर मिलेंगे भारत के नए कल में।
6: हम प्रिसिशन इंजीनियर्ड बीहाइव्स बनाते हैं। अगर हमारे हर एक फल सब्जी सही समय पर बीज को इंट्रोड्यूस किया जाए तो न केवल क्रॉप यील्ड बढ़ेंगे, किसान की इनकम बढ़ेगी।
7: We'll be very happy to humble bee to tie up with the farm.
5: Homya Innovations के इनोवेटर दीपक रेड्डी एंड अमरेश जना।
8: मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बेस्ट ग्रास रूट इनोवेटर अवार्ड।
9: आप अगर आज बहुमिया पे इन्वेस्ट करेंगे तो आप सिर्फ एक कंपनी पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, भारत का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रहे।
5: वंदे भारतम का प्लेटफॉर्म है, ये बिगेस्ट ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट है।
10: लेट्स डू 2 crore एंड फॉर 20%।
11: सर, कैन वी डू इट लाइक 10% इक्विटी फॉर 2 crore?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।
7: सबका राजा प्योर मसाला।
8: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।

0: Rahul Gandhi had to go to the Parliament Estate Police Station to lodge an FIR, which is a normal thing.
1: And
0: it's
1: maybe
0: a routine
1: that's
0: thing.
1: The reason why the police has quickly agreed to all of the conditions and said we will add this SCST Act and POXO, because you won't want another situation where Rahul Gandhi lands up outside and he sat on dharna and eventually they had to comply. What do you see this turning into for the government, Rajiv?
2: I think bad days are ahead. I hope not, because the international kind of summit is taking place. But the
1: bad
2: government.
1: Days for who? Bad days for who?
2: Bad days for the government of the day, because the government of the day is showing signs of weakness. They may not admit it, but the kind of thing that they are, will bring this kind of person in, this kind of thing. There have been so many days, almost how many days has been, almost 12, 15 days have passed. The government had all the kind of, you know, technology, and this is happening in heart of Delhi, Padmaja. So they could have acted upon the fact that that person has a bravado to say these kind of things and having committed atrocities against Dalit. And you see, the government knows that in 2024, whatever the political narrative was, Samvidhan khatre mein hai, BJP paid a price, but they have not learned anything from mistakes.
1: So you think basically this is Dalit politics which is going to be ignited again?
2: I think we are using a wrong term. Dalit, the Dalits are, you know, forced, because there is some, this kind of bravado. This is unthinkable in modern India, that a person has a cheek to make such, you know, derogatory and such kind of insensitive remarks.
1: So, you know, the Delhi police came out with a fact check, and here is what they put out. In their tweet yesterday, they have said that on the 23rd of June 2026 at Jantar Mantar during the CJP protest, Sanjay Kumar, which is Nishu Azad's father, sustained a head injury by kada worn by one of the alleged during a scuffle. He was medically examined by doctors of RML and the injuries were opined to be simple in nature. The injuries were made by kada and not by any weapon. The misinformation regarding crack in skull is not supported by facts and MLC and is completely baseless. On his statement, a case under relevant provisions was registered. They were detained, including this man. Swatantra Bharadwaj and another person called Suraj Kumar were detained. They were served notices and were interrogated. Due legal action has been taken and charge sheet will be filed. Now, of course, there is a fresh allegation because of what this man has gone and said on a podcast. And he's made matters worse by saying, Kapil Mishra ne mere ko bachaya, Chirag Paswan mere bhai hai. How do you see this turning out politically now? Because the Delhi police is saying, pehli baar mein toh humne action le liya tha. Ab ye bhai saab ne aakar ke aage bola hai ki mere ko protect kiya gaya, aur he's making even bigger claims.
3: देखिए, प्रॉब्लम ये है कि उसने पिटाई की, मारा, वो तो खुद कन्फेस कर रहा है अपने उसमें, लेकिन जिस तरह वो नाम ले रहा है, वो कपिल मिश्रा का नाम ले रहा है, चिराग पासवान का नाम ले रहा है, प्राइम मिनिस्टर का नाम ले रहा है, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बड़बुलापन है उसके अंदर. और इस नाम लेने से ये घटना ज़्यादा जो है, इसने ज़्यादा इसमें ये विवाद बढ़ा. अगर वो सिंपल कहता मैंने मारा और मैंने ये किया, तो शायद बात वहीं तक सीमित रहती. लेकिन जब उसने नाम ले दिया, प्राइम मिनिस्टर तक का नाम ले दिया, तो जाहिर है फिर उसमें राहुल गांधी को
2: आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा है पद्मजा?
1: आत्मविश्वास मतलब बड़बोला है, कौन है, नॉन एंटिटी के
0: समान भोकाली, एक शब्द होता है भोकाली, भोकाल कर रहा है कि भोकाल कर रहा है, मुझे इससे, मैं उसको जानता हूं, उसको जानता हूं,
3: सैया भाई को तो वाला
2: तो डर का है का यहां, सैया तो मैं नहीं, शब्द
1: मतलब आप कह रहे हैं ये एक्टिव पैटर्नेज है
2: जी, बिल्कुल इसी तरीके. मैं यही कह रहा हूं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये मॉडर्न इंडिया में इस तरह की बात कहना, और उसको ये पूरा आत्मविश्वास है कि वो इससे बच निकलेगा.
1: अखिलेश जी, एक्टिव पैटर्न है चाहिए?
0: मुझे नहीं लगता. देखिए, मुझे लगता है कि जो मैंने शब्द किया कि वो भोकाल कर रहा है, तो अपने दिखाना चाहता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया. और जाहिर सी बात है, जो आपने दिल्ली पुलिस का क्लेरिफिकेशन पढ़ के बताया है, उसमें तो दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि ही वॉज डिटेन्ड अनदर अलॉन्ग विद अनदर पर्सन. सो दिल्ली पुलिस इज टेकिंग एक्शन, बट नाउ ऑफकोर्स दे विल बी फोर्स टू टेक फर्दर एक्शन, बिकॉज दे द कांग्रेस जनता पार्टी, नाउ द कांग्रेस पार्टी एंड अदर भीम आर्मी, दे ऑल आर डिमांडिंग दैट ही शुड बी अरेस्टेड. So I'm sure that
1: and within 72 hours, the police have said within 72 hours. अब तो मतलब अगर भोकाली है भी तो उनका भोकाल कम ही होगा.
3: नहीं, भोकाल नहीं, अब तो बचाव में आ गए ना. अब आपने देखा नहीं जो उनका दोबारा जो दूसरा वीडियो आया है, उसमें वो कह रहे हैं कि मैंने तो अपने बचाव में किया, कि भीड़ ने मुझे घेर लिया था, मॉब लिंचिंग हो रही थी, तो नाउ ही इज ऑन द डिफेंस साइड. या तो किसी वकील से बात की होगी, वकील ने कहा होगा ये बयान दो, या किसी उनके सरपरस्त ने कहा होगा. अब जिनके उसने नाम लिए हैं उससे कितना उनका रिश्ता है, ये तो हम लोग नहीं कह सकते. नाम तो कोई भी किसी का ले सकता है, लेकिन नाम लेने के लिए भी हिम्मत चाहिए. नाम लेने के लिए भी एक
1: सर, हमारे देश में क्या हिम्मत चाहिए? वो तो है ना, चाचा विधायक है हमारे, तो
0: जानता नहीं मैं कौन हूँ, ये हमेशा तो अपने
3: देखिए, आप वीडियो पे कन्फेस कर रहे हैं कि मैंने सर फोड़ दिया और वो लड़की तो जो है रोने लगी कि मैं जहर खा लूंगी, ये सब आप तब कन्फेस करते हैं जब आपको भरोसा होता मेरा कुछ नहीं होगा।
2: बिल्कुल सही बात है,
0: इसीलिए एक्शन लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस मामले में एक्शन बहुत जरूरी है कि एक्शन लिया जाए।
1: एक्शन लेना जरूरी है एंड देयर नीड्स टू बी अ कंप्लीट क्लेरिफिकेशन फ्रॉम द दिल्ली पुलिस ऑफ द नेचर ऑफ एक्शन दैट हैज बीन टेकन। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द पॉलिटिक्स एंड ऑल्सो लिटिल बिट अबाउट द बैकग्राउंड, बिकॉज दिस लेडी ऑल्सो हैज हैड अ बैकड्रॉप of making some problematic tweets, statements about Hindu religion. She has spoken about Saraswati. And during the time when the Jantar Mantar protest was happening also, she had been controversial because there was a video of her saying, Modi ke tervi ka prasad kha lijiye and all of that. But that being said, obviously nobody can condone any kind of violence. That action needs to be taken. Amitabh Tiwari, I want to now focus on what it is that Mr. Gandhi, yesterday when he was responding to Nishu Azad, very interesting use of language. When he tweeted back to her, he said, Nishu, there is no need to panic. I'm with you. It's clear you're being targeted because you raise your voice for the rights of your community and students. Remember, this was about NEET paper leak. But he says you're raising your voice for your community. Amit Shah's Delhi police on one hand commits inhuman brutality. On the other hand, the criminal who smashed the head of a Dalit girl's father is roaming freely in the open. Your fight, you are not alone. We won't stop until justice is served. Jai Bhim, Jai Constitution. Where do you see this?
4: No, but see, essentially what happened in 2024? In 2024, yes, the Congress party regained some of its lost support amongst the Dalits. And largely in states like UP, where there were several, and Maharashtra, where there were several severe losses, the Dalits supported in large numbers the India Bloc candidates or the Congress party candidates. Now, at that point of time, the narrative was Samvidhan khatre mein hai. Now, over the 2 years, this narrative is not in discussion. This has actually lost in translation, correct? So, you have again the important election of UP coming, Uttarakhand also, there is a lot of
1: Punjab.
4: Significant Punjab. In all these three states, there is a significant Dalit population there.
3: Punjab is 33%.
0: Punjab is largest.
4: So, you need largest. A new narrative to first hold on to the gains which you made in 2024 and even expand those gains. Because historically, traditionally, Congress support has been what? The general category plus Dalit plus Muslim. So, it's an attempt to revive this vote block. So, obviously, he's not talking about the NET paper leak or the protest. He's tagging it to the community, and unfortunately, politically for the BJP, the accused is from the general category. So that's unfortunate. It's just a coincidence of sorts. And the Delhi police action has also been very reactionary, I would say. Correct. Agar aapne usko bulaya tha, usko interrogate kiya tha, to jo ab ye charges aap abhi laga rahe hain, wo pehle hi laga dete. Pehle hi laga dete aap. Theek hai. Or kyunki he is boasting, taking names. I mean, young people do tend to do these sort of things. And this YouTube influencer ek alag category hai, bhai. Ek alag hi khatarnak category hai ye. Theek hai. To wo boast kar raha hai.
1: The more outrageous you are, the more viral you are.
4: Yeah. So, ab, of course, the government will have to ensure that very strict action is taken at the earliest, because again, you have a BRICS summit and you do not want this issue to just impact
1: what happened at the level of the Delhi police? Let me get a quick word in from Mukesh Sengar as well, because he's been tracking this case right from the time when the Jantar Mantar protest took place. Mukesh, hame bataiye, hua kya? Ye jo sare abhi dharaye lagai gayi hain, why wasn't this done at the time on the 23rd? What does the MLC of this man actually say? Just clarify this for us.
5: देखिए, सुशांत भारद्वाज जो है वो बिहार का रहने वाला है और ख़ुद को एक कट्टरवादी हिंदू नेता कहता है। उसका यह भी दावा है कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और दिल्ली पुलिस के मुताबिक बहुत जल्दी ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। दरअसल जो 23 जुलाई को घटना हुई थी, उस घटना में जो विक्टिम संजय हैं, उन्होंने थाने में आकर शिकायत दी थी और ये कहा था कि 2-3 लड़कों ने उनको मारा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसके बाद संजय की मेडिकल जांच कराई गई, उनकी मेडिकल रिपोर्ट तैयार हुई और मेडिकल रिपोर्ट में जो नेचर ऑफ इंजरी था वो सिंपल था। इसीलिए पुलिस ने जो वेलेबल ऑफेंस हैं उसके सेक्शन के तहत ये केस दर्ज किया था और थाने में पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया था। लेकिन अब जो नए एलिगेशन है उसमें जो नई कंप्लेंट दी गई है संजय की ओर से, उसमें कहा गया है कि झगड़े के दौरान उन्होंने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने SC ST एक्ट के तहत जो सेक्शन होता है BNS का, उसको भी FIR में ऐड कर लिया है। और उनकी दूसरी मांग ये थी कि जो इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला दर्ज हो, क्योंकि आरोपी खुद कह रहा है कि उसने हाफ मर्डर किया था, अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला भी दर्ज हो। तो दिल्ली पुलिस के मुताबिक जो विक्टिम संजय हैं उनकी दोबारा से उनकी मेडिकल जांच होगी और मेडिकल लीगल रिपोर्ट में अगर ये आता है कि जो चोटें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं तो उसके बाद फिर ये तय होगा कि इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, तो उनकी दोबारा से मेडिकल जांच कराई जाएगी। हमने कुछ देर पहले
1: ये तो बड़ी अजीब सी बात है, 23 जुलाई को इन पे हमला हुआ था, अब सितंबर में उनकी मेडिकल जांच से कैसे पता चलेगा कि अटेम्प्ट टू मर्डर लग

0: होना चाहिए कि नहीं, अब तो उनके सारे टाके वाके भी खुल गए ऐसा दिख रहा है, अब मेडिकल जांच करके क्या होगा?
1: देखिए बिल्कुल, मैं आपसे यही बोलने वाला था कि अब जो मेडिकल जांच होगी उसमें शायद कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये घटना है 23 जुलाई की और कई महीने इसमें बीत चुके हैं, तो ऐसे में इसमें क्या कुछ मेडिकल जांच में आता है ये देखने वाली बात है। लेकिन पुलिस का कहना ये है कि जो अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज होता है उसके लिए जो चोट होती है उसके कुछ मापदंड होते हैं और उसी बेसिस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगता है। तो ऐसा लगता है कि शायद दोनों पक्षों के बीच में जो बातचीत हुई है उसके बाद उनको लगा कि शायद इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज नहीं बनता है, तो ये बात रखने के लिए शायद पुलिस ने बोला होगा कि इसमें दोबारा से मेडिकल जांच होगी, मेडिकल लीगल रिपोर्ट आएगी और उसके बेसिस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज होगा। तो ये तो अभी आगे का प्रोसेस है, लेकिन ये कैसे होगा ये देखना होगा।
0: All right, so we'll keep a very close eye on that. Just for clarifying all of this for us, thank you very much, Mukesh, for joining us. Within 72 hours, that's the deadline that has been given. I want to quickly play out a few of the political bites to this, what Chandrasekhar Azad, people like Ashutosh Ranka have said. Let's listen into them.
2: हमारी पूरी टीम मीशु उनके पिताजी संजय जी के साथ पहले दिन से खड़ी रही है। हम यहां पर दिल्ली पुलिस से मांग करेंगे कि तुरंत इन गुंडों को जिन्होंने खुद को सेल्फ आइडेंटिफाई किया है उन्हें अरेस्ट किया जाए, उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया जाए और जितनी भी संगीन धाराएं इन पर लगती हैं वो धाराएं लगाई जाए।
3: मेरे ऊपर अचानक हमला किया और ये भी नहीं है कि कोई जो तेजधार जो कड़ा था हथियार जो उसके बाद हाथ में उससे हमला किया और उसे कहने के मैं दो जगह सिर फटा और उसी दौरान मैंने पार्लियामेंट थाने में इसके ऊपर FIR भी करवाई। लेकिन जो पार्लियामेंट थाना और वहाँ का प्रशासन जिस हिसाब से इसे बचाया, तो मैं कहता हूँ पुलिस का यही काम रह गया गुंडों को बचाना और अपराधियों को इतना कमजोर कर, पीड़ित को इतना कमजोर कर दो वो थाने के पास ही आप मदद के लिए आए ना कभी न्याय मांगने के लिए, तो पार्लियामेंट थाना यही करता है वहाँ पर।
4: संजय और उनकी बेटी जिनको लगातार बलात्कार करने की जो है धमकियां दी जा रही है, जिनको लगातार तेजाब डाल के जलाने की उनकी हत्या करने की धमकी दी जा रही है वो डरे हुए। अगर देश की राजधानी में ये हाल है तो ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह के हाल होंगे आप देखो। तो हम लोग गए थे अधिकारियों से मिले, अधिकारियों ने हमें वादा किया कि वो 72 घंटे के अंदर गिरफ्तारी करेंगे और जो ऑफेंस है क्योंकि बेटिया बेटी जो है माइनर है तो पोस्को अनुसूचित जाति से बच्ची आती है तो SC ST एक्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराएं वो इसमें लगाएंगे।
0: So it's interesting, that is Nishu Azad's father, Sanjay Azad, and see, he's holding a portrait of Baba Saheb Ambedkar in his hand as well. And I want to link this to something else that is happening, Vinodji, because you had Mallikarjun Kharge writing a flesh letter to JP Nadda saying that it's been 24 or 25 days since that Shuddhikaran was done and yet no FIR has been filed. Do you think now that the next few elections, the 5 big elections we are seeing in the next year, are going to see a revival of this caste politics?
5: Of course. Jo bhi Rashid bhai keh rahe the, Congress is trying to get their Dalit vote again. Ab wo kaise milega? Jab tak aap issue ko zinda nahi rakhenge. Aur BJP ne thoda kaam aasan kar diya Rahul Gandhi par FIR karke. Haldwani mein jo Rahul Gandhi pe FIR kar diye, to usse unka kaam aur aasan ho gaya. Kyunki Rahul Gandhi kya kar rahe the? Wo to खड़गे का मामला उठा रहे थे ना, तो अब तो ये हो गया कि अगर आप किसी दलित का मामला उठाएं तो आप पे FIR हो जाएगी, एक नई नज़ीर बन गई। तो मुझे समझ में नहीं आता कि हल्द्वानी पुलिस ने ऐसा क्यों किया या उत्तराखंड सरकार ने क्यों किया, एक कांग्रेस के हाथ में एक उन्होंने हथियार और दे दिया। तो जिसका कांग्रेस कोशिश करेगी पंजाब में, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में दलित इश्यूज को रेज करने के लिए, और ये संजय आजाद वाला मामला भी आ गया, तो सारी चीज़ें क्लब राहुल गांधी का ट्वीट, मल्लिकार्जुन खड़गे का लेटर, हल्द्वानी की FIR, ये सब मिला करके कांग्रेस के हाथ में दलितों के बीच में जाने के लिए एक अच्छा खासा मुद्दा।
0: बट लेट मी आस्क यू दिस अमिताभ तिवारी, हु इज इवेंचुअली गोइंग टू बी द पर्सन हु बेनिफिट्स द मोस्ट फ्रॉम दिस? बिकॉज इवन इफ वी जस्ट टेक अ लुक एट व्हाट हैपेंड इन जंतर मंतर, देयर इज भीम आर्मी विच इज चंद्रशेखर आजाद, आई थिंक निशु आजाद ट्रैवल्ड in the car of Chandrasekhar Ravan when she went to Parliament Street Police Station. Then you have the Congress Party. Even Akhilesh Yadav retweeted what Nishu Azad said yesterday. So who really is the messiah of Dalits in the upcoming elections?
6: No, essentially, if you see...
0: And in this regard, also remember that we are seeing a lot of chaos within the BSP. Just yesterday, I think for the 100th time, Akash Anand was removed because every 5 months, Mayawati

0: decides ki he's mature, then he's immature. He's mature, then he's immature. So he's been removed again from the post of party convener.
1: Thrice.
0: Of party.
1: Thrice
0: he's done it. So the Dalit vote is floating. BSP is weak. Who then emerges as the principal party for Dalits?
2: Correct. So in all the three states which we are discussing, Uttarakhand, Punjab, UP, the dynamics are different. So in UP, what has happened is that over the past years, from 2014 Lok Sabha election to 2022 Vidhan Sabha election, the non-Jata vote was captured by the BJP. The BJP was able to play this Jata versus non-Jata, just like OBC versus non-Yadav OBC. And in 2022 Vidhan Sabha election, BJP got 45% of non-Jata Dalit votes. This turned in 2024. In 2024, the Samajwadi Party Congress Alliance got 54% of the non-Jata vote. Largely riding on the Samvidhan Khatre Mein Hai narrative. Now, it is expected, and in our surveys also, in vote under Vote Vibe surveys, that the Jatav support of BSP is also under threat in this election. Because in the Lok Sabha itself, the BSP vote share is down to single digits.
0: Mm.
2: Now, the fight is for the Jatav vote. One is for the non-Jatav holding of that vote, and the fight for the Jatav vote, which the Bheem Army, parties like the Ajad Samaj Party are looking at. What happens is that in case of Dalits, when you don't have a very significant influential leader in the state, for example in UP, Mayawati or Channi and Kashiram, earlier in Punjab, etc., the voters tend to be impacted by beneficiary politics.
0: Mm.
2: So BJP got not these votes not because, just because of Jatav versus non-Jatav, but also because a lot of these communities were enrolled as beneficiaries in their schemes. Correct. So this is what is going to play. Whether these voters are largely going to act as beneficiaries of schemes, or they are going to act on Dalit emotional issues or pride, which is this Azad issue or the Samvidhan Khatre Mein issue.
0: Because and that is the question, if Dalit Khatre Mein Hai could provide that kind of mobilization to Dalits as a whole, SC as a whole, irrespective of which subcaste they belong to. But what is the entry of cockroach tell us in all of this? You know, there was a meeting that Ashutosh Ranka, today he was there at Parliament Street Police Station next to Nishu Azad. Yesterday, apparently, he held a 1.5 hour long meeting. Ashutosh, what have you heard about it? Kya ho raha hai ye?
3: Well, I told you, this is a political orchestra that is going on.
0: Hmm.
3: It is getting assembled. There are performers, there are instruments, and this will come into play. See, for the BJP, Mayawati and BSP had been an insurance policy kind of thing, because she was holding on to 10% and more votes. But people, voters have a thing. They wake up late.
0: Mm-hmm.
3: And now they realize that perhaps Mayawati is not in a position to be an influencer.
0: Mm-hmm.
3: So in that sense, if her stocks go down, then who gains? So it is the Congress which, hopes to gain. At the same time, though Cockroach Janata Party and Samajwadi Party and Congress, they are all very different entities.
0: Hmm.
3: In the Congress also, there is a talk that, whether they should go with SP or not.
0: And they were
3: not
0: uncomfortable. Congress was uncomfortable with the CJP and Jantar Mantar.
3: Precisely.
0: Stayed away. But you've got Akhilesh Yadav entertaining them. I want to quickly tell our viewers also how Om Prakash Rajbhar responded to this. Then maybe Vinodji and Rashid sir will again want to weigh in. Ka ho Akhilesh Yadav ji, suna hai. आज अभिजीत नक्षत्र में दीपक जलाने की कोशिश कर रहे हैं. इस बीच आपके घर में तिलचट्टे आने लगे. दैट्स व्हाट कॉकरोचेस आर कॉल्ड इन हिंदी. इसी बीच आपके घर में तिलचट्टे आने लगे, वो भी मुंह बांध के. टीवी में तो दिखाता है कि लाल वाला स्प्रे तिलचट्टों को खत्म करने के लिए होता है, यहाँ तो लाल वाले खुद ही तिलचट्टों से मदद मांग रहे हैं. ऑब्वियसली मिस्टर राजभर इज सीइंग कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे. विनोद जी,
1: नहीं, राजभर साहब को ये एक्सपीरियंस है कि लाल वालों के साथ उनकी जो डीलिंग रही है 2022 में, उसके बाद जब लाल वालों के साथ वो अलग हुए तो
0: लाल हिट कैसा
1: लाल हिट कैसा होता है. तो इसलिए वो अपना एक्सपीरियंस अभिजीत दीपके को और आशुतोष रंका को बता रहे हैं.
0: बट
3: देखिए तिलचट्टे जो हैं उनको खत्म करना हम अपने घरों में भी देखते हैं, बड़ा मुश्किल होता है. आप कोई सा भी हिट ले आए, कोई भी लाल ले आए, कुछ भी, वो दे मल्टीप्लाई वेरी फास्ट. सो इन पोलिटिकल टर्फ, अगेन आई वुड से द अपोनेंट्स ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी शुड बी वेरी केयरफुल, बिकॉज दिस इज स्पेंडिंग. देर इज लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी अबाउट कॉकरोच पार्टी. तो तिलचट्टों को आप अंडरएस्टिमेट ना करें.
0: अखिलेश जी, व्हाट इज द गवर्नमेंट,
1: झाड़ू को किया था लोगों,
0: व्हाट इज द गवर्नमेंट्स, इंटरेस्टिंग. हाँ, पहले झाड़ू और फिर अब, और एक्चुअली झाड़ू जो है खतरनाक होती है तिलचट्टों के लिए, बट एनीवे, व्हाट इज द थिंकिंग विद इन द गवर्नमेंट, डू दे सेंस दैट देयर इज अ मोबिलाइजेशन अलोंग कास्ट लाइन्स दैट इज टेकिंग प्लेस स्पेशली अमंग द दलित कम्युनिटी, एंड हाउ आर दे गोइंग टू काउंटर इट, हु आर द बिग फेसेस फ्रॉम द दलित कम्युनिटी फॉर एग्जाम्पल हु स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट.
4: सी, बीजेपी की खास बात यह है पद्मजा कि कोई भी खतरा जब आता है तो भाप करके या खतरे को सामने देख करके बहुत जल्दी अपने आप को उसके लिए तैयार कर लेती है, बदल लेती है. तो आपने देखा कि जब ये 20 तारीख का हुआ कांग्रेस जनता पार्टी का जंतर मंतर पर आक्रोश, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, एक ज़बरदस्त कोर्स करेक्शन बीजेपी कर रही है जो कि नितिन नवीन की टीम के फॉर्मेशन में भी दिखाई दिया, और अब बीजेपी की जो आने वाले समय की स्ट्रेटेजी उसमें भी दिख रहा है कि जब मंत्रियों को कहा गया है कि आप यूनिवर्सिटीज़ में जाइए, बच्चों से बात कीजिए, पीएम खुद 5 तारीख को SRCC में जा रहे हैं, इसके साथ ही उन्हें कहा कि स्कूलों में बातचीत आप कीजिए, पार्टी को ये कहा गया कि आपको सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव होना है, मंत्रियों को कहा गया कि आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव हों, और जहाँ तक दलित लीडरशिप की बात है, बीजेपी के पास एक नहीं ऐसे कई सारे चेहरे हैं जिनको आगे कर सकती है. जैसे कि आपने बात की है उत्तर प्रदेश की, तो भोला सिंह को भी फिर से रिपीट किया गया सेक्रेटरी के तौर पर. जहाँ तक हल्द्वानी का इशू है, इसमें बीजेपी ने सोचा कि काउंटर ऑफेंसिव इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम राहुल गांधी के खिलाफ FIR कर रहे हैं, उन्होंने उनको एक्सपोज करने की कोशिश की, दो अनुसूचित जाति वर्ग से लोगों को ला करके खड़ा किया, कहा कि ये तो हमारे खिलाफ ही बोल रहे हैं जबकि हम उसमें शुद्धिकरण में शामिल थे, कथित शुद्धिकरण में हम शामिल थे, क्योंकि हमें ये लगा कि वहाँ पर जो नारेबाजी की गई थी उसके कारण उसको उसकी सेंक्टिटी खराब हुई. और अब जो है बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन वो खुद हल्द्वानी जा रहे हैं 8 और 9 तारीख को, हालांकि मैं उसको उससे जोड़ के देख नहीं रहा हूँ कि वो प्योरिफिकेशन को लेकर जो इशू बना रही है कांग्रेस उससे कर रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं वहाँ पर. तो एक संदेश है कि वो हल्द्वानी से ही अपने उत्तराखंड यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं. और जो बात अभी चल रही थी, राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है इस मामले पर, उसमें उन्होंने जय भीम लिखा है, इसको बहुत बारीकी से देखने की ज़रूरत है. मुझे नहीं पता कि इससे पहले कब उन्होंने ये जय भीम बोला, हो सकता बोला हो, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में जय भीम बोलना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देखिए बीजेपी अभी तक क्या कहती आई है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी जिसने बाबा साहब का अपमान किया, बाबा साहब जब चुनाव लड़ रहे थे तब उनको हरवाने के लिए कोशिश की, सब कुछ किया, और अभी तक जो लेगेसी जो है बाबा साहब की उसको कांग्रेस अपने पाले में डालने की चाहे कोशिश करती रही हो लेकिन उसमें कामयाबी उनको नहीं मिली. समाजवादी पार्टी की आप बात कर लें, कांशीराम जिनसे कि लंबा ठीक अलायंस भी हुआ मुलायम सिंह जी का, लेकिन कांशीराम की प्रतिमा का उद्घाटन करने के लिए अखिलेश यादव जाते हैं, तो ये भी एक बहुत पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट चीज़ है कि वो जाटव वोट जो उनको अपने पाले में लाना चाह रही है समाजवादी पार्टी भी, कांग्रेस पार्टी भी, सबको लग रहा है कि BSP कमज़ोर हो गई. BSP की आज ये हालत है कि ठीक है 10-12% वोट तो आपने माना कि उनको मिल रहे हैं, लेकिन ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में, ना विधानसभा में, ना विधान परिषद में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है. तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता की बात उनके सपोर्टर्स के लिए नहीं होगी क्या? तो हम कहाँ जाएं?
0: सो इन दैट सेंस इज द कांग्रेस रिवर्टिंग टू इट्स ट्रेडिशनल equation of Muslim, Dalit and Brahmin. Is that what we are likely to see in the upcoming UP elections? In that context, I want to actually also bring in what is happening in Western UP. By the way, Janmashtami greetings to all of our viewers and to our guests over here. Because on Janmashtami, Yogi Adityanath is in Western Uttar Pradesh. And it seems that this really is going to be the battleground for UP. You've got Akhilesh Yadav, who was in Saharanpur yesterday. He is touring that entire area. He's held multiple meetings, smaller meetings, rallies in this particular area. Amitabh Tiwari, first of all, why this focus on Western Uttar Pradesh? You've got Yogi Adityanath. Let's play out for our viewers what he said. And it's a very familiar theme. Remember when this entire Chanda Chori matter came up in Ram Mandir, what did Yogi Adityanath say? He said, if people in Samajwadi Party are so concerned about mandirs, about people's aastha, why don't they support a grand mandir at Mathura as well? Obviously hinting at Akhilesh Yadav and SP. Let's listen in to what he said in Mathura today.
5: हमारा प्रयास है कि मथुरा वृंदावन में भी वही भव्य परिसर तैयार हो जैसे अयोध्या में और जैसे काशी में हुआ. किसी श्रद्धालु को समस्त कोई दिक्कत ना हो, उसकी आस्था के साथ कोई संकट ना हो, उसके सामने अपने आराध्य का दर्शन करने में किसी प्रकार की कोई चुनौती न हो.
0: Does अखिलेश यादव see real opportunity अमिताभ तिवारी in Western उत्तर प्रदेश?
2: तो see Western UP is a big chunk. It's less, almost 136 seats if you add Doab, Rohilkhand, Braj, the entire Western UP.
1: Up to Bareilly.
2: तो बड़ा क्षेत्र 136 सीटें हैं. बट अगर हार्डकोर Western UP भी देखें तो ऑलमोस्ट 44 सीटें हैं. अब पिछली बार, लास्ट टाइम व्हाट हैपेंड इज दैट RLD वॉज पार्ट ऑफ द समाजवादी पार्टी लेड अलायंस बट डिस्पाइट दैट द बीजेपी वॉज अहेड इन वेस्टर्न यूपी ऑफ जस्ट द 44 सीट्स ऑफ द कोर वेस्टर्न यूपी द बीजेपी गॉट 26 एंड समाजवादी पार्टी लेड अलायंस 16. अब यहाँ पे जाट दलित मुस्लिम इन तीनों की आबादी सिग्निफिकेंट है

0: बात होती है वही कॉम्बिनेशंस बनाने की। आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ तो इस स्ट्रेटजी के साथ हुआ कि द जाट एंड द मुस्लिम वोटर विल कम टुगेदर बिकॉज हिस्टोरिकली दैट द चौधरी चरण सिंह वॉज एबल टू अचीव। बट आफ्टर द राइट्स इन यूपी इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन देर इज अ लॉट ऑफ मिसट्रस्ट बिटवीन द जाट एंड द मुस्लिम कम्युनिटी। दैट फ्रैक्चर इज देयर, इट्स नॉट ईजी टू रिजॉल्व। सो वी सॉ एंड इवन द बीजेपी एंड अखिलेश सर विल अग्री टू दिस और मे हैव सम अदर sources to confirm this, that the BJP was expecting significant losses in Western UP actually. And they were expecting gains in Eastern UP और सीधा उल्टा हुआ उसका, ठीक है। तो इतना आसान क्षेत्र नहीं है। और अब जाट समाज यानी RLD जो है वो BJP के साथ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी ये लग रहा है कि भाई अब वो जो एक अलायंस पार्टनर था वो भी नहीं है अब हमारे साथ, है ना, जिसकी वजह से हमको 16 सीटें मिले भी थी। तो हो सकता है कि इस रीजन में कमजोर हो जाए समाजवादी पार्टी, लेकिन उसको अब ये दलित वोट से कंपनसेट करने की कोशिश की जा रही है ना।
1: Who do you think right now is ahead?
0: No, I mean overall, if you see, except for Bundelkhand and perhaps Eastern UP, which is Purvanchal, where there is a tight contest, even last time it was 28-26 only in favor of the BJP. I think across most regions, the BJP is ahead by 3-5 percentage points.
1: Interesting. Because Rashid Kidbhai, what I found a little strange is Akhilesh Yadav's attack on Jayant Chaudhary at a time when you would want Jats to come towards you. You know that famous comment of his where he said ki wo chavanni the, humne unko rupya banaya. We'll just play out that video also. Responding to that, clearly the RLD also got a new social media manager. Unhone kaha hai, one of the spokespersons of Samajwadi Party said ki इनको तो राजनीति की ABCD नहीं आती। सो द आरएलडी पुट आउट अ वीडियो से ABCD के बाद आता है जी फॉर गन्ना।
2: ABCD के बाद भी कुछ आता है, EFG, जी फॉर गन्ना, और ए चाहे जे फॉर कहने की जरूरत नहीं, सभी मालूम है। तो हम तो यार जी और जे में ही फंसा देंगे, एस और पी तो आने वाला ही नहीं है।
1: What was behind that attack on?
3: So I think it's very personal. I think both the leaders had invested in each other. Both were young, youthful, and they had a lot of promise. Jayant Chaudhary and Akhilesh. And I remember till the very last moment, and I think you would also know, they tried efforts too, because there was a meeting of Jayant Chaudhary with the Home Minister Amit Shah, and at that time he was part of that alliance was there. So Mr. Akhilesh Yadav put his sort of prestige at stake and approached Jayant Chaudhary that please don't go, and we have a lot of promise and we'll do all this thing, and that didn't happen. So Jayant was like he was a little smart, little clever, and he went ahead. So I think there is a sense of hurt that is there. Also on a political turf, Padmaja, Akhilesh Yadav is very wary of Jayant's reach to a limited extent, but to Muslims. Because in Western UP, if you go there and you talk to the old timer, they have a lot of respect and faith and that kind of sense of reverence towards Chaudhary Charan Singh. So even law of diminishing returns, RLD, part of NDA, BJP, it still has a potential to get some percentage of Muslim votes because of that historical and the personal ties. Now Akhilesh Yadav would not want even 1% of it. So therefore, and I have reasons to understand that Mr. Jayant Chaudhary has been given a kind of free hand because to do whatever the politics of for that particular region, 136 seats we are talking about. So in that he feels as a threat. So ye sada ka sada jhagda usi ka hai.
1: Akhilesh, is Jayant Chaudhary likely to get a promotion also?
4: हो सकता है। देखिए अभी दो बड़ी मीटिंग उनकी हुई है। फर्स्ट ही हैड ए मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर, इमीडिएटली आफ्टर दैट ही हैड गोन टू लखनऊ एंड ही हैड अ वेरी लॉन्ग मीटिंग विद द चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, एंड आफ्टर दैट ही रिप्लाई टू दिस चवन्नी वाला रिमार्क विच वॉज मेड बाय अखिलेश यादव। सो ही इज वेरी क्लियर अबाउट हिज फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, इज वेरी क्लियर दैट ही विल रिमेन विद द बीजेपी, ही इज लाइकली टू गेट अ प्रमोशन। आई डू नॉट नो वेदर ही विल गेट इट और नॉट, बट एज फार एज द नंबर ऑफ सीट्स आर कंसर्न, बिकॉज लास्ट टाइम इन द अलायंस दे हैड 33 सीट्स were given to them.
1: They'll get a greater. Sorry, what did you say?
3: मुझे लगा 6 महीने का प्रमोशन होगा, रिजल्ट आए फरवरी में फिर वापस। देखिए वो एक जगह MOS इंडिपेंडेंट चार्जिंग और एक जगह मतलब वो है MOS है।
5: प्रमोशन को उसी समय मिल सकता था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था, वो HRD के MOS हैं, तो अगर प्रमोशन देने का होता बेस्ट टाइम था कि उसी वक्त उनको चार्ज दे दिया
4: जाता, उनको
5: दे दिया जाता। नहीं मैं
1: सर आई डोंट नो इफ एनीवन विल काउंट दैट एज अ प्रमोशन राइट नाउ, दैट इज अ क्राउन ऑफ थॉर्न्स। वो सोच वो खुशी मना रहे होंगे कि मैं MOS ही ठीक हूं इस वक्त।
4: देखिए जब से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ उसके बाद से जाटों को लेकर के बीजेपी को भी एक मैसेज देने की जरूरत है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो सतीश पुनिया जो कि अपना खुद का चुनाव हार गए थे उन्हें राज्यसभा में लेकर के आए, उन्हें अब बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, पंजाब का उनको इंचार्ज बनाया गया है। तो बीजेपी को भी एक बड़ा संदेश जाट समाज को देना है जिसने पिछले चार चुनाव में यूपी में उनका साथ दिया है वेस्टर्न यूपी में। तो बीजेपी इतनी आसानी से उनको जाने नहीं दे सकती है।
5: देखिए जाटों का जो हिस्ट्री है अलग अलग राज्य में अलग अलग उनका बिहेवियर है। राजस्थान के जाट कांग्रेस के साथ हैं, वो सतीश पूनिया को लाए या धनखड़ को लाए, राजस्थान में जाट जो है कांग्रेस के साथ, क्योंकि वहाँ राजपूत और ब्राह्मण जो बीजेपी के साथ हैं। हरियाणा का जाट जो है वो बिकॉज ऑफ हुड्डा वो कांग्रेस के साथ है, कुछ हिस्सा ये चौटाला की लोग। यूपी का जो जाट है वेस्टर्न यूपी का वो एंटी कांग्रेस रहा शुरू से, राइट फ्रॉम द चौधरी चरण सिंह टाइम, और वो आज बीजेपी के साथ नहीं है। जब मंडल के बाद जब पहला चुनाव हुआ 91 में, जब बीजेपी को पहली बार मेजोरिटी मिली यूपी में, तो जाटों ने वोट दिया बीजेपी को। और कैसे दिया? महेंद्र सिंह टिकैत वाज इन जेल इन वाराणसी, कल्याण सिंह उसे मिलने गए, कल्याण सिंह ने कहा कि हम आपसे समर्थन चाहते हैं, महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा ठीक है, और महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा कि भाई इस बार जब छूट के आए वो जेल से तो पंचायत की, और पंचायत उन्होंने कहा किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगा, कहा भाई इस बार राम का नाम लेके वोट डाल देना। तो जाटों ने बीजेपी का जो जाट शिफ्ट हुआ वहीं शुरू हुआ। इवन अजीत सिंह उस वक्त जिंदा थे, अजीत सिंह एक्टिव थे, अजीत सिंह पर चुनाव हार गए 98 में।
4: संजीव बालियान ने चुनाव हारा,
5: नहीं संजीव बालियान वो तो बाद में आ रहे हैं, सोमपाल से आ रहे हैं,
4: सोमपाल से आ रहे हैं,
5: पहला चुनाव 98 में सोमपाल से बागपत से आ रहे हैं अजीत सिंह। तो चरण सिंह की फैमिली को जाटों ने छोड़ना तभी शुरू कर दिया था मिड 90s में आफ्टर मंडल, क्योंकि तब जाट ओबीसी कैटेगरी में नहीं थे और अजीत सिंह को फाइट नहीं कर पाए, तो वो छोड़ दिया और वो बीजेपी की तरफ चले गए। इवन मुलायम सिंह और अजीत सिंह का अलायंस हुआ तब भी जाटों ने जो है उसको वोट नहीं दिया, उस अलायंस को, वो बीजेपी को वोट दिया। क्यों? वो लड़ाई क्या थी? जब मुलायम सिंह अजीत सिंह के बीच में चीफ मिनिस्ट्री का झगड़ा हुआ था 89 में और अजीत सिंह हार गए थे विधायकों का चुनाव, वहाँ से जाटों में और यादवों में दरार पड़ी जो चरण सिंह का पूरा वोट था। तो अखिलेश यादव उसको पाटना चाहते हैं, कोशिश भी की उन्होंने, उन्होंने जयंत चौधरी को राज्यसभा में भेजा और जयंत चौधरी उधर चले गए, तो अखिलेश जी की पीड़ा वो है।
1: एंड यू कैन इमेजिन हाउ इम्पोर्टेंट दिस पर्टिकुलर एरिया एंड दिस पर्टिकुलर वोट इज, गिवन दैट वन मर्डर दैट टुक प्लेस ऑफ अंकित बालियान हु इज अ यूट्यूबर दैट गॉट ऑल द टॉप लीडर्स गोइंग एंड विजिटिंग हिम, टू ऑफ द पीपल हु वर बिहाइंड दैट मर्डर दे वर शॉट डेड इन एन एनकाउंटर बाय द यूपी पुलिस, इट वॉज कॉट ऑन CCTV कैमरा, बट the way it was mobilized when Akhilesh Yadav reached out to the Balyan Samaj and Samajwadi Party leaders went and met his family, so that gives you an idea of just how important this vote is. And since we spoke of Ram ke naam pe vote de dijiye, I think that takes us straight into our next story, which is the Ram Mandir CEO, and he seems to be quite a, what was the thinking behind choosing a former Indian Air Force official and somebody who's an Operation Sindoor hero?
4: डिसिप्लिन का मैसेज देना है कि सी हम अब जो कुछ हुआ है गड़बड़ी हुई है ये अब बर्दाश्त नहीं होगी, अब कोई एक ऐसा आदमी चाहिए जो कि ठीक से संभाल सके, क्योंकि व्हाट हैपन इन द राम टेम्पल डोनेशन इशू वाज कि आपने बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रस्ट कर लिया। चंपत राय के बारे में ये कहा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों पर विश्वास कर लिया, उनको ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दे दी जो शायद विश्वास के लायक नहीं थे, उन्होंने उस विश्वास से गलत फ़ायदा उठाया, उन्हें अंधेरे में रख करके ये पूरा काम अंजाम दिया। तो इसलिए अब ऐसा सिस्टम बनाना है, आपको याद होगा कि नृपेंद्र मिश्रा जी ने सबसे पहले इंटरव्यू में ये कहा भी था कि वी हैव टू हैव दिस काइंड ऑफ ए सिस्टम नाउ वेर यू हैव अ CEO एंड प्रॉपर फंक्शनिंग हैज़ टू बी देयर, द प्रॉपर मैनेजमेंट हैज़ टू बी देयर। सो वो थिंकिंग है। ऑपरेशन सिंदूर के एक वॉर हीरो को आप लेकर के आ रहे हैं तो कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, कोई ये नहीं कह सकता, हालांकि उठाया है राशिद अल्वी ने कुछ प्रश्न किया था उसको लेकर के बीजेपी ने जवाब दिया।
1: ऐसा क्यों होता
3: नहीं उनको तो बहुत, मुझे लगता है कई बार इस तरह के लोग होते हैं ना कि वो बयान दे करके मतलब अपने जो राजनीतिक विरोधियों की मदद करते हैं।
1: तो ये क्यों करते हैं हमेशा ऐसे लोग स्ट्रेटेजिकली क्यों प्लेस होते हैं कांग्रेस के अंदर? कभी वो मणिशंकर रहे
3: कांग्रेस के अंदर, देखिए सत्ता का डायनेमिक, सत्ता में क्या होता है कि जो विपक्ष में सेन लगाते हैं, मैं कोई उनकी व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत आपको लोग मिलेंगे कि जो ऐसी बात कह देते हैं कि जिससे मतलब आपके दुश्मनों को फायदा हो।
1: जैसे यू हैड अनदर लीडर सेइंग कि सिर्फ मिश्रा जी ही क्यों बन रहे हैं, ऑल्दो आई मीन
5: भाई दिग्विजय सिंह के बयानों से कितना फायदा होता था बीजेपी को, ट्रस्ट
4: में जिन तीनों को लेकर आए, अगर आप उनको भी देखेंगे उनका बैकग्राउंड भी, तो आपको लगेगा कि बिल्कुल सोच समझ करके फैसला किया।
1: और पहली बार एक महिला को
4: लेकर गया जो कि यादव हैं, और वो भी ऐसे एरिया की यादव है जहाँ पर कि अखिलेश यादव का, मुलायम सिंह का काफी प्रभाव रहा है, शुकाबाद की वो है, और उनका पुराना संघ का जनसंघ के जमाने से उनका परिवार।
3: लेकिन पद्मजा देखिए, मुझे लगता है कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते ये आस्था का मामला है, और इसमें एक भारी चूक हुई थी, गलती हुई थी, और एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। अब आप जैसे किसी के घर में चोरी हो जाए और आप किवाड़ लगाएं और अच्छे से अच्छा ताला लगाएं और सीसीटीवी लगाएं, तो सबका कोई मतलब नहीं, दोबारा थोड़ी ना चोरी होगी।
1: आप कह रहे हैं कि इसको डैमेज हुआ है बीजेपी,
3: बिल्कुल अमिताभ तिवारी बताएंगे।
5: देखिए इसमें मैसेज जो गया है

0: वो ये किया कि बड़े लोगों को बचा लिया गया और छोटे लोगों को फंसा दिया गया। पब्लिक में मैसेज है SIT, क्योंकि पहले SIT जो सरकार ने बनाई उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, उन्होंने दूसरी SIT बनाई और एक भी इसमें जो आदमी रिस्पॉन्सिबल थे उनको उन पर कोई केस नहीं हुआ। जो और पकड़े हुए टीनू यादव और वो अनुपम अलंकार मिश्रा क्या नाम थे, ये सब पकड़े गए। तो ये एक मैसेज लोगों में है कि साहब कहीं कहीं आईवास हुआ है।
1: नहीं देखिए, इसमें ये था कि बीजेपी को लगा शुरुआत में कि शायद नुकसान हो सकता है, लेकिन उसकी भरपाई करने की भी उन्होंने कोशिश की। जो एक्शन लिया गया, जिस तरह से अरेस्ट किए गए, उसके कारण उनको लगता है कि हमने काफ़ी हद तक उसकी भरपाई की। अब जो CEO का अपॉइंटमेंट हुआ, जिस तरह के व्यक्ति को CEO बनाया गया है, उससे भी एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया है। जिस तरह के 3 नए मेंबर बनाए गए ट्रस्ट में, उससे भी बीजेपी को लगता है काफ़ी हद तक एक बड़ा संदेश हम दे सकते हैं। उनका यह कहना है कि प्रश्न वो लोग पूछ रहे हैं जिन्होंने हमेशा इस राम टेम्पल का, राम टेम्पल मूवमेंट का कभी ना सपोर्ट किया ना अपने आप को उससे कभी एसोसिएट किया। तो जिन लोगों को उसमें कभी इंटरेस्ट ही नहीं रहा, वो किस मुझे इसका पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश कर।
2: एंड योगी आदित्यनाथ कंटिन्यूज टू बी ऑन द ऑफेंसिव व्हेन इट कम्स टू दिस राम टेम्पल इशू। एट नो पॉइंट ही हैज सीम डिफेंसिव एट ऑल। इनफैक्ट इवन इन मथुरा टुडे ही सेड दैट द ओनली पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट राम मंदिर आर दोज हु हैव नेवर केयर्ड फॉर इट।
0: सवाल ये है, जो अमिताभ भाई बताएंगे, लोग कितना बाय कर रहे हैं इस आर्गुमेंट,
2: कितना बाय कर रहे हैं बताइए, बहुत प्रेशर है आपका अमिताभ
3: जी। देखिए टॉप 5 इश्यूज में तो है ही।
2: In fact, let's play out those graphics. How much does it, what is the issue that really has found resonance with people? That is what vote vibe went and polled. And about 11% of the people said, what is the most important UP poll issue? 23.1% found unemployment as the main issue. And about 11.4% people have found it to be an issue. But still, unemployment is much bigger than Ram Temple.
3: Because unemployment... आज किसी भी स्टेट में, इफ आई मीन इट्स एन एवरग्रीन इशू एंड इन एनी स्टेट यू डू, एक्सेप्ट फॉर मे बी 2-3 सदर्न स्टेट्स, यू विल नॉट गेट अनएम्प्लॉयमेंट एज नंबर 1 इशू। बट स्टिल आई मीन स्टिल रिमेन्स एट 11.4% विच इज सिग्निफिकेंट। सी वॉट हैपन्स इज, सी एनी इशू प्लेज बोथ वेज, ओके, एंड द डिग्री ऑफ यू कैन से द डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस डिपेंड्स अपॉन विच एवर नैरेटिव इज स्ट्रॉन्गर। सो एक बात है कि भाई ये एक इमोशनल मुद्दा है, आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब वेट एंड वॉच मोड में पब्लिक है कि भाई यू हैव मेड एन SIT, यू हैव अपॉइंटेड अ न्यू CEO, यू हैव मेड सम अरेस्ट एंड सम FIR हैज बीन डन, आर यू एबल टू इम्प्लीमेंट SOPs एंड गिव कॉन्फिडेंस टू द पब्लिक दैट दिस इज नॉट लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर। अगर ये हो जाता है तो थोड़ा बहुत जो इसका डिसकंटेंट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि एक तरह से राम मंदिर के निर्माण के बाद इस मैटर का क्लोजर हो चुका था यूपी में, ठीक है, तो इसका बीजेपी को फायदा भी नहीं मिला लोकसभा चुनाव में। अब क्या हुआ है इस मुद्दे के बाद से कि फिर से ये मुद्दा फोरफ्रंट पर आ गया है और बीजेपी, यानी जो व्हाट यू आर मेंशनिंग अबाउट, योगी आदित्यनाथ मेंशनिंग अबाउट हाउ पीपल हु हैव नेवर वर्क्ड फॉर और सपोर्टेड द आइडिया ऑफ राम मंदिर और their ancestors had allegedly fired on Ram Sevaks, how will they or how can they talk about
2: exactly.
3: this issue?
2: Exactly. So if anything, the familiar pitch for the BJP, correct, which is about, you know, we are for Aastha, we are for Sanatan, that comes into the conversation again.
3: Correct. So it risks diverting or deviating from PDA to Hindutva. That's also a risk. Because agar aap bahut zyada karenge to
2: and that is
3: hoga?
2: Where that is where you've got these other issues which come in. For example, what happened in Kerala, Rahul Gandhi went and gave the call for smashing patriarchy, and then you had this Mr. Grand Mufti who came and said that women are like necklaces and they should be kept inside a box. Then his son went and said that you please have 3 children and you go straight to heaven and you are only required to come here and breed. Do you think that actually front footing the Ram temple issue has given that polarization to the political narrative which may end up suiting BJP in the long run, especially when these binaries are highlighted?
4: Yeah, so Padmaja, we must understand there is, you know, the political parties in India are very religiously conservative. They don't take a reformist thing, whether it is the BJP or the Congress. And there are, you know, mixing of religion in politics that is happening in a very glaring manner in Uttar Pradesh. And I think, you see, when I was looking at that Amitabh survey, see, the matter of faith, the BJP was very sure-footed. If 11% or more are apprehensive or they are just looking at it with this, that is actually, in a way, bad news for the BJP, because this is where there should have been zero. And that's where the 11% people are sort of, you know, against them. Now, coming back to that, you know, that Kerala controversy, I think that was an atrocious remark. And at a time when Rahul Gandhi is trying to make some kind of, you know, patriarchy and those kind of misogynic behavior as a political issue, which is very difficult to make. I mean, you can say it, but to execute it is very difficult because I think, like other political parties, Congress is not ready for it. So Rahul Gandhi is talking at one, you know, kind of pitch of one wavelength and another.
2: But it's just not just about wavelength, it is actual political calculation, right? Which is why you had the IUML go and support it. It's all very well to say that, okay, V.D. Satishan has condemned it, but then, you know, you have an alliance partner
4: who is
2: politically significant enough, because there were many local Malayali reports who said that IUML was also instrumental in V.D. Satishan eventually becoming
4: absolutely.
2: The chief minister.
4: You're absolutely right. So that is, here is my argument. You see, I've written a book that Muslim women MPs in Lok Sabha, directly elected. Padmaji, you'll be surprised that there are 5 states in South India which are very progressive in terms of economic indicator. There is not so much of communal polarization. Not a single Muslim woman has been elected from entire South India. They've been elected from Gujarat. They've been elected from Assam. Uttar Pradesh, or you know, all those places, but not from South. So you see, that is what I'm saying, that political parties are very conservative. They don't go deep. They just have an alliance on this political party like IUML, MIM and those kind of things. And therefore, you have a situation like this.
2: Is the government worried about Ram Temple blowback, or they think it's a sorted issue?
1: They are worried about it. There's no doubt about it. That's why now some corrective actions are being taken. The appointment of the new CEO, appointment of 3 new members in the trust. And they will also take it forward. For example, today Yogi Adityanath is in Mathura. If I recall correctly, since he has become chief minister, this is 38th time 40. He has gone to Mathura. 48th time that he has gone to Mathura. So it itself shows that how seriously he takes all, be it Mathura or Kashi or Ayodhya. So for him, all these religious symbols are very
2: important. And he always mentions them in one breath. It's always Kashi, Mathura, Jhaki tha. So Ayodhya, Kashi, Jhaki tha. Mathura abhi baki hai.
0: Kashi, Mathura baki hai.
2: Kashi, Mathura baki hai.
0: Ayodhya abhi Jhaki hai. Kashi, Mathura
2: baki hai. Ab to Kashi bhi baki nahi hai. Ab to Kashi mein to bani gaya hai corridor.
0: Corridor ban gaya, but wo jo masjid Gyanvapi hai na, asli to वो है ना, कॉरिडोर तो कहीं बना लीजिए, वो मथुरा भी तो मंदिर विशाल बना हुआ है,
2: एंड नोबडी सेज इट एज स्ट्राइडेंटली एज योगी आदित्यनाथ, वो तो बार बार कहते हैं.
0: राम मंदिर वाले जो चढ़ावा चोरी का मुद्दा है, उसे एक वोट भले बीजेपी का कम हो ना हो, हिंदुत्व की धार कमजोर हो गई है. जो एग्रेसिवनेस थी राम मंदिर के आंदोलन के बाद, चढ़ावा चोरी ने उसको कमजोर किया है.
2: योगी आदित्यनाथ को देख के आपको लग रहा है धार कमजोर?
0: योगी आदित्यनाथ बोलते रहेंगे, पब्लिक में नहीं है ना. पब्लिक में लगता है यार सब एक ही जैसे हैं. ये जो इंटरनेट बनता है ना, वो इसलिए जब राम मंदिर बनने के बाद भी अयोध्या की सीट हार जाती है बीजेपी, तो चढ़ावा चोरी की बात कैसे?
2: पर जैसे अमिताभ कह रहे थे कि अगर 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कुछ फायदा नहीं हुआ, देन व्हाई आर वी अज्यूमिंग कि चोरी से उनको नुकसान हो जाएगा? दैट इज काउंटर इंटुइटिव, राइट?
0: नुकसान ये हो जाएगा कि जिन्होंने तब वोट दिया 24 में, वो
2: बट जब फैजाबाद में ही लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, तो अब वोट कटेंगे क्यों?
0: नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वोट नहीं मिला. हाँ, चुनाव आ रहे हैं, वोट तो मिला ही है. ये थोड़ी एक जीरो वोट मिला है, वोट तो मिला ही उनको, तो उनमें भी कुछ फर्क पड़ सकता है.
2: ओके, फाइनली आई वांट टू आस्क, व्हाट इज हैपनिंग विद विजय? व्हेन इज विजय बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर? राजन जी, टेल अस दैट.
4: यू नो, आई विश हिम वेल. यू सी,
2: इन हिंदी आई हैव टू से दिस फॉर दोस फ्रॉम उत्तर प्रदेश हु आर वाचिंग, देयर इज अ सेइंग आई यूज्ड टू लव, सूत ना कपास जुलाई से लट्टम लट्टा.
4: हां, नाउ वी शब्द का इस्तेमाल ना करें.
2: नो, ओके ओके, दिस इज प्योरली यू नो व्हाट वी यूज्ड टू से. बट no MP, why are Congress and TVK fighting with each other in Tamil Nadu over who will TVK support? How does it matter who they support?
0: Or the election?
2: I think election bhi nahi hai.
4: No, but Padmaja, on a more serious note, you see, every elected representative, he's a MLA and he has a political party that governs his state, is a potential contender. Age is on his side, he has a mass appeal. See, we must not forget that, you know, film stars find a better traction. If there is a good governance in 5 years from now, maybe he will become a contender. And we have very few, leaders from South, in the sense, the P.V. Narasimha Rao and H.D. Devegowda, they've been 2 prime ministers. So, I mean, theoretically speaking, it's right. But yes, of course, there is a lot to cover. But good governance would be a good answer. Remember, like Aam Aadmi Party, like some other political parties, the TVK is a whiff of fresh air because the 2 Dravidian parties have collapsed. The two parties had this alliance with two national parties. Hmm. So it was a collapse of an entire political system, and he has emerged against the system. Whether he is able to take it forward in an election or two is yet to see.
2: Is there discomfort within the TVK about the Congress, or vice versa? Is there discomfort within the Congress about the TVK?
4: Because it's very simple. I think you asked a very sort of pertinent issue. Padmaja, this was built between the alliance between two individuals, Vijay and Rahul Gandhi.
2: Hmm.
4: So the Congress party was not part of it. They were not privy to it that, you know, Rahul Gandhi will flip, and they were with the DMK.
2: Hmm.
4: And there was, of course, a lot of history to it.
2: Hmm.
4: So therefore, whenever there is an individual alliance based, it always has a problem if it doesn't trickle down. Like Amitabh ji will say that, you know, we had this kind of thing with this about, you know, alliance with SP-BSP.
2: Hmm.
4: On the paper, it looked very formidable.
2: Hmm.
4: But worker level, pe kuch bhi traction nahi tha.
2: Is there...
4: चाचा भतीजा वो मिल गए थे वो सॉरी बुआ भतीजा बट इट डिडंट यू नो वर्क ऑन द ग्राउंड सिचुएशन
2: देयर इज ऑलवेज कंस्पिरेसी थ्योरी
0: अबाउट वर्कर लेवल पे ट्रैक्शन था 93 में जब मुलायम सिंह काशीराम मिले थे
4: जी जी
0: तब ट्रैक्शन था
2: मिले मुलायम काशीराम
0: अच्छा
4: इसी तब आप दूसरा सेंटेंस
2: नहीं बोला मैंने
1: जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है दोनों अलायंस पार्टनर्स का ये इस घटना से पता लगता है क्योंकि एक इमेजिनरी इशू है अभी ना कोई चुनाव हो रहा है कोई सवाल आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनने वाला है नहीं बनने वाला है उसको लेकर के अगर आप झगड़ रहे हैं तो ये दिखा रहा है कि आपके जो अलायंस चल रहा है वो ठीक नहीं है सब कुछ ठीक नहीं है इस अलायंस के भीतर और हो सकता है कि आने वाले महीने में कुछ बड़ी खबर भी देखने को मिले
4: नहीं नहीं लेकिन अखिलेश
2: जी बड़ी खबर है वो
1: टूट जाए
4: अखिलेश अवॉइडेड अ पर्टिनेंट क्वेश्चन दैट यू आस्क इफ रोनाल्ड रीगन कैन बी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका व्हाई नॉट विजय इन इंडिया
3: आप था अरविंद केजरीवाल उठे अब विजय उठ रहा है कांग्रेस में कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ये ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि इस भाई का 108 सीट खुद से है 7 एडीएम के एमएलए रिजाइन कर चुके हैं 115 हो जाएगा ये मेजॉरिटी होगा इनके बाद इसको जरूरत ही नहीं है ठीक है तो इससे अच्छा था कि हम तो डीएमके के साथ थे जो हमारा ट्राइड एंड टस्टेड अलाई था
1: और आपको उसके कारण आपने नेशनल लेवल पे देखिए कितनी बड़ी इनसिक्योरिटी
3: 22 एमपी कम हो गया
1: इंडिया अलायंस से आपके 22 एमपी अलग हो गए अब बीजेपी के साथ अगर आ जाते हैं तो बीजेपी डिलिमिटेशन बिल को पारित करा लेगी तो फिर आपका सबसे बड़ा इशू तो आपके हाथ से निकल जाएगा और दूसरा जहाँ तक विजय की बात है मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो नॉर्थ इंडिया के कुछ यंग पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं कि तमिलनाडु में ये क्या हुआ विजय कैसे जीत गए विजय ने क्या स्ट्रेटेजी की थी वो चाहते हैं कि अपने अपने स्टेट में उसी को फॉलो करें
2: ओके सो इट इज नॉट जस्ट द यंग पॉलिटिशियंस इन द नॉर्थ बट आई थिंक एवरीवन वॉचिंग राइट नाउ ऑल्सो इज लुकिंग with great interest at what is happening across the country. Never a dull day when you are talking politics. So as always, thank you very much, gentlemen, for having joined us with your wisdom. And remember, when it really matters, when it is about politics, you can hear about it right here on NDTV. Thanks for watching.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा प्योर मसाला।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
8: R Pure Shahi Paneer Masala.

0: स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है ये।
2: कुछ इससे भी अनोखा
1: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।
3: Across the country,
4: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global.
5: From here in the NDTV newsroom, external controversies, internal controversies, who's winning the social media war and taking steps into the UP election, where we have a surprise candidate also being mentioned today on Chai Stop, 9 p.m. Do not miss it.
6: Launch control, 0 to 100.
7: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
8: This car makes no sense, yet it makes every sense.
9: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
7: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
10: Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
11: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
12: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
11: अरे मेरे राजा,
13: सबका राजा आर्थर मसाला।
14: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।

0: न्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आर्थर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
6: 3 decades ऑफ वॉचिंग द वर्ल्ड चेंज, ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस दैट कुडंट वेट। ऑफ टेलिंग द स्टोरीज दैट कुडंट बी इग्नोर्ड। Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV

0: City Authority. Mud covered, exhausted, but alive.
1: अनि सबैलाई बचाउने क्रममा म सबैलाई भने एक्सिडेन्ट भयो ठुलो ड्याममा अनि सबैलाई भाग्न लगाउँ बाहिर अनि त्यसो गर्दाखेरि मेरो टाइम गयो लास्टमा म निस्किने पाएँ अनि म हुनसक्छ होला हुनसक्छ सबै भाग्न नसकेको होला टनेल लामो छ टनेलमा भए पनि त्यहाँ पानी फोर्सले भित्र लगिसकेको होला महामन्त्र यसो जप गर्दै थिएँ भित्र हरे कृष्ण.
0: Rescuers carry him out of the tunnel on their shoulders as those waiting outside erupt in cheers. Then comes a second breakthrough, 45-year-old Kabir Maharajan, a supervisor at the project. Both men are believed to have suffered injuries to their arms and legs. Shah was airlifted for treatment while Maharajan was taken to a military hospital in Kathmandu.
2: ऋषि जी आपकी बात हुई है संजय जी से?
3: हाँ थोड़ा हुआ बाबा तो हुए अभी यही.
2: उन्होंने क्या बोला आपको?
3: क्या अभी तो बात उतना नहीं हुआ थोड़ा बहुत बात हुआ हाँ ठीक है अभी सब कुछ पहचानता है सब लोग का उतना में खुशी होगी हम लोग और क्या पूछेंगे और कैसा रहे. अब वो बोल रहा है उस भीतर में आकाश बाढ़ आ गया हम लोग क्या कर सकते थे उसमें भी इधर से भी बाढ़ आ गया हम लोग तो हवा में उड़ने लगे वहाँ पर भीतर में. अब तो हवा में उड़ने अब जाके उस शुरू भीतर में 5-6 तला घर था बोल रहा है उसी ऊपर में जाके हम एक ठो बाड़ी से बगा के वो ढेंग लाया था उसी ढेंग के माध्यम से एक ठो वेंटिलेशन था उसी वेंटिलेशन में थोड़ा दिन हम बैठे 3 दिन ऊपर थे थोड़ा नीचे पानी थे तो ऊपर वो चला गया ना ऊपर
2: हाँ।
3: चला गया उसी में हम बैठे थे थोड़ा दिन. उसके बाद नीचे हुए के बाद अब पानी थोड़ा कम हुआ था हम नीचे आए तो एक ढेंग पे बैठ कर गुजारा हम कर रहे थे.
2: डॉक्टर क्या बोल रहे हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में?
3: अभी तो डॉक्टर सब उतना गप नहीं हुआ है ठीक है. अब डॉक्टर का अभी अब आएगा दूसरा टीम आएगा तो वो बोलेगा हमको हमको अभी हम जो गप हुआ उसके बाद में 10 दिन कैसे काटे वही अब टी शर्ट खोल के वो पानी है ना फिल्टर करके खा रहा था वैसा ही करके जिंदगी बिता रहा था क्या कर.
2: तो सिर्फ पानी पे 9 दिन
3: आज हम लोग को तो खो दिए थे अब होगा कि नहीं होगा लेकिन आज भगवान का देन है.
2: आपको कैसे पता चला कि उनको निकाल दिया?
3: ऐसा पता चला वो एक तो साथी हमको न्यूज शेयर किया था हम देखे तो हम उससे पूछे भी क्या है कैसा है ए जिंदा है बोल के हम तो खुशी ऐसा ही हो गया है.
2: उम्मीद खो दी थी आपने 9 दिन में 9 दिन बाद?
3: उम्मीद तो 2% हमको मात्र पता था वो शुरू में जब खुनेगा तब कुछ ना कुछ तो होगा इतना पता था. अब शुरू में खोल लिया तो भगवान आज उसका सुन लिया.
0: Experts say parts of the underground tunnel may have contained a stable air pocket with breathable oxygen and trapped water, conditions that could have helped the workers survive. For rescuers, it was nothing short of a miracle. For the families waiting outside, a moment they had almost stopped believing would come. But the operation is far from over. Search teams aided by experts from India, China and South Korea are still combing through the Trishuli 3A tunnel and other affected hydropower projects. At least 12 hydropower projects have been hit by the floods. And with thousands still missing across Nepal, every sound from beneath the rubble could mean another chance at survival. Bureau Report, NDTV.
2: Tunnel rescue expert Arnold Dix is a man who has been guiding these rescue operations far out from Sydney. He's been a part of the team that has been guiding them for the last 9 days. I spoke to him earlier today while he was in Australia. He's on his way to Kathmandu now. He said that this rescue is not only miraculous, it's something that the world has never seen before. Mr. Dix, congratulations. You've been a part of the team. You've been in Australia. You've been providing advice and also counseling to the experts here on the ground. I believe you're at the airport. You're joining us live from there. You're on your way to Kathmandu. I want to understand from you, Mr. Dix, for a moment here, the Goldilocks area that you were talking about, how does one determine that? How were you so sure that there could be survival in those areas, sir?
4: Yeah, that's a great question. So right from the beginning, we knew that we had to chase, well, what I call the Goldilocks zones, and they would be areas where a human being could survive over this period of time. To do that, what we needed, and it was a team, it's not just me, I'm on the team, but we used the latest satellite information, the video footage coming in off the helicopters, old footage, old images,

मेरे पापा ने कहा, बोले बेटा तेरे को मैं कहानी सुनाता हूँ कि एक बहुत अच्छी बच्ची थी, परी थी, छह बहन भाई के बाद हुई थी वो, तीन भाई थे उसके, तीन बहनें थी उसके, 5 साल बाद वो हुई थी। उसके पापा शहर में चले गए, उसकी माँ पूरे दिन बकरियों का भेड़ों का जन्म करवाते करवाते वो थक गई थी, उसको होश रहा नहीं और वो बच्ची हुई। उसको ले जाके औरतों ने जमीन में गाड़ दी। फिर उसकी माँ को जैसे होश आया तो पूछा कि क्या हुआ था, मेरे बच्चा हुआ, रोया मैंने सुना था पर गया कहाँ। तो वो अपनी मौसी से, बहन से पूछा, उसकी बहन ने कहा कि तेरी लड़की हुई थी, उसको गाड़ दिया। वो उस बच्ची की माँ रो के उसकी बहन से पूछा कि मुझे वो एड्रेस बता, कहाँ वो जगह बता, कहाँ गाड़ा। तो रोने लगी। फिर उसकी बहन ने उसकी मदद करी। रात की 12-1 बजे रात को वो गई और जब उसकी बहन ने कहा कि वो तो मर गई होगी, अब कहाँ जिंदा मिलेगी तेरे को, पर उसकी माँ बड़ी जिद्दीली थी बेटा। तो उसकी माँ ने कहा कि देख, 9 महीने मैंने पेट में रखा है, वो मर भी गई होगी तो एक बार उसको छू के तो देखूं, फील तो कर लूं। और मेरा दिल कहता है वो मुझे जिंदा मिलेगी, वो पुकार रही है मुझे।

पापा मुझे गले लगा के कहा कि बेटा वो बच्चा और कोई नहीं था, वो बच्चा आप थे, आपको ही गाड़ा था। तब मुझे पता चला कि मुझे गाड़ दिया था और मेरी माँ ने मुझे निकाला। अगर मेरी माँ कोशिश नहीं करती तो मैं जिंदा नहीं मिलती और आज मैं आपके सामने नहीं होती। दुआ मांगी थी ऊपर वाले से कि भगवान मेरे को ऐसी शक्ति देना कभी कि मैं जैसे जिंदा निकली हर बच्ची जिंदा रहे और आज के बाद किसी बच्चे की मौत नहीं हो इस तरीके से, बुरी तरीके से। और मैंने 14 साल की उम्र में आते आते ये लड़ाई मैंने बंद करी और ये बच्चियों को मारना और ये गाड़ना मैंने बंद कर दिया।

0: गर्मी हो रही है ना। अरे बाप रे। शायद बरसात आएगी आज तो।
1: नमस्कार, मारो नाम गुलाबो सपेरा और मैं बताऊं था ना, मैं पद्मश्री हूँ। मैं बताऊं आज की मारी दिनचर्या, मैं काय काय करूं और मारो दिन कैसे स्टार्ट होवे वो बताऊं मैं थाने आज।
0: माता के स्थान पे जो भी पूरे देवी देवता की तस्वीर है उनकी पूजा पाठ करके और दिन स्टार्ट हो जाता है। उन्हीं के साथ में खेलती कूदती रहती हूँ बच्चों के साथ। और ये खेल जो जल का लोटा रात भर जो मंदिर पे रखते हैं अपन, वो अपने पितृदेव और देवी देवताओं के नाम से हम लोग बाहर इसको डालते हैं ताकि उनको मिल जाए, उसके बाद हमारा दिन स्टार्ट हो जाता है। ये देवी देवताओं के नाम से हैं और ये हमारे पितृदेव के नाम से हैं। और ये सामने जो लक्ष्मी माता आती है उनके लिए हम लोग यहाँ ये उनका स्थान क्लीन करते हैं कि माता आए हैं आप अंदर। मेरा नाम तो धनवंती है, असली नाम तो जो धनतेरस को जन्मी में, पर जो ये नाम है इसकी बड़ी स्टोरी है साथ में। मैं बहुत ज़्यादा एक बार बीमार हो गई थी। जब बीमार हो गई थी तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि तुम्हारी बेटी तो अब नहीं रही, ख़त्म हो चुकी। मेरे पापा ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले नहीं नहीं बाबा, तुम विश्वास नहीं कर रहे लेकिन मर चुकी। डॉक्टर से यहाँ से सीधे मेरे पापा मुझे वहाँ लेके गए पीर बाबा के, बाबा की जो दरगाह है उसमें मुझे लिटा दिया। एक घंटे बाद गुलाब का फूल आया अंदर से दरगाह से और मेरे सीने पे गिरा और मेरे हाथ पाँव चलने लगे, सांसें चलने लगी। बोले बाबा आपकी बेटी या बेटा जो भी है बच्चा, वो शायद से ही वो रो रहा है। बाबा बोले मैं मौलाना साहब, मैं इस मुर्दा लड़की को लेकर आया था यहाँ पे और पीर बादशाह ने इसको ज़िंदा किया है, तो आज से ये पीर बाबा की बेटी है और मैं इसका नाम गुलाबी रखूँगा। पापा ने कहा कि धनवंती यहाँ ख़त्म हो गई है, वो तो मर गई। मैं आज से गुलाब को लेकर जा रहा हूँ बाबा आपके यहाँ से। और मेरे पापा मुझे गुलाब का नाम दे के और वहाँ से लेकर रवाना हो गए और को आज के बाद गुलाबी बोलेंगे। अजमेर, अजमेर की हूँ वैसे मैं रहने वाली, और अजमेर के आसपास वाले गाँव में वहाँ ही रहते थे हम लोग। 6 महीने की हुई तो समाज के लोग यही कहते थे कि नहीं इसको मरना है, इसको जिंदा कैसे रखेंगे, जिंदा रखेंगे तो ये हमारे समाज पे कलंक है, समाज के खिलाफ है ये रूल, तो ज़िंदा नहीं रहना चाहिए इसको। तो मेरे पापा डरते थे कि कहीं मेरी बच्ची को मार नहीं दे, तो मेरे पापा मुझे साथ लेके जाते थे गांव ढाणी में, सांपों को नचाने जाते थे, दिखाने जाते थे, तो साथ लेके जाते थे कि कोई मुझे मार नहीं दे। जब मेरी माँ पूछती शाम को कि 6 महीने की बच्ची आप इसको क्या खिलाते हैं, बोला औरतें जो सांपों को दूध पिलाता हो ना वो बचा हुआ दूध इसके पिला देता हूँ। तो बोले सांपों का झूठा दूध, बोला हाँ रोज ही पिलाता हूँ मैं, सांपों का झूठा दूध पिला के इसका पेट भर जाता है बस।

बहुत अच्छा लगता है। ये पांचों पहाड़ियाँ ऐसा लगता है कि पहाड़ियों की गोद में बैठे हैं हम, पांचों पांडू बैठे हैं यहाँ पे। और बारिश के दिनों में तो इतना अच्छा लगता है ना, हरियाली।

1981 की बात है, छुपके 20 औरतों के साथ में नाच रही थी बेन के ऊपर, उधर से टूरिज्म डिपार्टमेंट का कोई लोग हिम्मत सिंह जी और तृप्ति पांडे वो आए घूमते घूमते, उन्होंने देखा कि ये लड़की बीन के ऊपर

डांस कर रही है। सपेरों की तो बीन के ऊपर डांस करती नहीं है लड़कियाँ, और वो तो सिर्फ सांपों करना चाहते हैं। पहला लड़की है जो मेरा डांस देखा, मेरा हाथ लगा के देखा तो बोले तेरे बदन में हड्डियाँ भी यही है नहीं, रबड़ की गुड़िया की जैसे उछल रही है, तू तो एकदम यूं यूं यूं। मैंने देखा, मैंने कहा रही मैडम क्या कह रही है। फिर मेरे चाचा से बात करी कि बोले तुम लोग जो यहाँ डांस कर रहे हो, ये शाम को करना वहाँ पे अंग्रेजों के सामने, वहाँ पे एक मंच है उसके ऊपर। फिर ये 1981 में ये मेरे को पहले बार मंच मिला। दो दिन मैंने डांस किया, तीसरे दिन मेला ख़त्म हो गया और समाज को पता चल गया कि ये लड़की इतने तख्तों पर डांस करके आई है। समाज वालों ने कहा अरे तख्तों पर डांस किया इसने, जहाँ अच्छी लड़कियाँ डांस नहीं करती डांस किया इसने। ऐसे करके मेरे पापा को समाज से बाहर परमानेंट ही बाहर कर दिया। फिर बोला अब तो हम तेरे को नहीं रख सकते समाज में, अब तो तेरे को निकालना ही पड़ेगा। मेरे पापा को समाज से बाहर कर दिया, और पर मेरे पापा ने मुझे कुछ नहीं कहा। मेरे पापा ने इतना कहा कि ये तो बच्ची है, 7 साल की है अभी, बड़ी औरतें 20 औरतें साथ में थी, आप उन पर नहीं करोगे डंड मुंड। आदमी भी तो था साथ में, बीन बजा रहा था, डपली बजा रहा था। तो पंचों ने पता क्या कहा कि तेरी बेटी नृत्य नहीं करती तो हमारे ये लोग साथ नहीं जाते, हमारी औरतों को लालच नहीं उठता। ये काजल बिंदी के पैसों के चक्कर में ये इस लड़की को नृत्य करा रही थी, तो गलती सारी लड़की की है कि इसने नृत्य स्टार्ट किया। हमारे समाज में कोई बेटियां डांस नहीं करती तो इसने क्यों डांस स्टार्ट किया, ये नहीं कर सकते आज के बाद में। बोले ये तो तेरी बेटी की मौत या समाज से बाहर। मेरे पापा ने कहा कि मैं समाज से बाहर निकल जाऊँगा, लेकिन मैं बेटी की मौत नहीं कर सकता, मार नहीं सकता इसको।

पापा गुजर गए थे फिर 85 में, अमेरिका जाने से एक रोज पहले ही गुजर गए थे। तो मेरे को उसी रात जाना था, मैं दिल्ली में थी, मेरे को वापस बुलाया, फिर मैं बेहोश पड़ी रही 2-3 घंटे। फिर मेरे को लगा कि मेरे मेरे पापा जैसे आके मुझे जगा रहे कि पापा के बोले बेटा उठ, तेरे को तो अमेरिका देश में जाना, चील गाड़ी में नहीं बैठना है क्या? मैंने कहा हाँ। तो उठ, आँख खुली तो मेरे पापा नहीं थे, पर मेरी माँ को मैंने कहा, मतलब माँ पापा आए थे अभी। बोले बेटा पापा कहाँ से आएंगे? मैंने कहाँ से आएंगे, अभी आके मुझे जगाया है पापा ने, मेरे पापा गए नहीं है कहीं पे भी, मेरे पापा मेरे पास ही है, मेरे पापा मुझे अमेरिका भेज रहे हैं। माँ ने कहा बोले नहीं बेटा 12 दिन होगा उसके बाद आपको जाना होगा। फिर मैं रोने लगी, तो माँ क्या आप मेरे पापा मदद करते थे, आप मदद नहीं करोगे क्या, आपको मदद करनी है ना। तो मेरी माँ ने रोई, फिर माँ चुप हुई, फिर कहा बोले चलो ठीक है बेटा मैं मदद करती हूँ, गए तो तेरे पापा ही है, मैं तो नहीं गई ना, मैं जब तेरे को धरती माता के पेट से ला सकती हूँ तो क्या समाज से नहीं लड़ सकती क्या, पहले भी तो लड़ाई लड़ी मैंने, अब बाकी लड़ाई मैं लड़ूँगी, तेरे पापा ने लड़ाई लड़ी तेरे जन्म से लेकर 81 से लेकर 85 तक, अब मैं लड़ूँगी आगे, तू जा। फिर मेरी माँ ने आंसू पहुँच लिए, कहा कि तू जा मैं लड़ूँगी कोई बात नहीं। फिर जब मैं वापस आई थी तब 2 महीने बाद तब फिर मेरी माँ को मैंने गले लगाया और माँ बहुत खुश भी हुई। मैंने कहा माँ देख आज मैं गई तो मेरे पापा का नाम अमर हो गया, मेरे पापा का नाम छप रहा है, आज समाज का नाम हुआ, देश का नाम हुआ, मैं नहीं जाती तो गुमराही रह जाती, मेरे जो पापा का सपना था वो आधा अधूरा रह जाता। तो बस ये अमेरिका से आने के बाद की फोटो है।

किसी कोई सरदार जी थे उनका, कि गुलाबू बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ सर मैं बोल रही हूँ। बोले आपको पद्मश्री मिल रही है, आपका नाम नॉमिनेट हुआ है और आपको पद्मश्री मिल रही है। मैंने कहा क्या? 25 जनवरी को फ़ोन आया था मेरे पास में सुबह सुबह। जिंदगी का जो मेरी मेहनत थी उस पे उन्होंने एक मोहर लगा दी और वो एक मान्यता मिल गई है मुझे। उसको आप चाहे उसको कुछ भी मान ले, पर मेरे को वो जो मिला है ना पद्मश्री, मैं यहाँ एंड नहीं किया उसको। मैंने कहा कि पद्मश्री मिली है मेरे को, एक कदम बढ़ने का मौका मिला है आगे, तो मेरे को और आगे बढ़ना है, और आगे जाना है। मेरा नाम हो गया था 85 में। उसके बाद मैं तम्बू डेरे में रही, मैंने मेरी बेटी मेरी शादी हो गई थी 86 में। तो उसके बाद फिर मैंने 91 में वो ज़मीन खरीदी। कभी 10,000 आए तो बनाया, कभी 5,000 आए तो बनाया, कभी 20,000 आए तो बनाया, ऐसे कर करके वो बना हुआ है। तो इस तरीके से वो घर बना हुआ है मेरा टुकड़ों में, उसमें सब कुछ फोटो हैं, सब यादें हैं, सब कुछ। क्या कही तो मैं अभी मेरी बेटियों की शादी करी ना, तो फिर मैं यहाँ आके रही हूँ। मार्च से हैं हम यहाँ, अभी तो कम्प्लीट नहीं है ये घर, ये मेरा ड्रीम हाउस है। बच्चों को मैंने अपने गिफ्ट बना के दिया है, लेकिन मेरा तो झूपड़ा वही है, मैं तो वहीं रहूँगी, ये मेरे बच्चों के लिए है। तो वहाँ चलेंगे आप?

रोड पे नाचती थी हमेशा, और जैसे यहाँ पे ये इस रोड पे बहुत डांस किया है मैंने। एक तो धूप में, मिट्टी में, कंकरों पे, धूल में नाचती थी, और एक पहले बार मंच मिला और ऐसे लग रहा था कि जैसे पब्लिक जो बैठी है वो एक भगवान का रूप लेके बैठी है, और स्टेज है जो एक जैसे मंदिर है। जो रोड पे जो फुटपाथ पे मैं नाच करती हूँ और नृत्य करती हूँ, तो पैसे फेंकते हैं, कोई पैसे देते हैं, और ये लोग मेरे को ताली बजा के भगा रहे हैं, या फिर मेरे समझ में नहीं आ रही ताली बजती क्यों। तो पहले बार तालियों की गिड़गिड़ाहट सुनी तो वो लग रहा था कि शायद मुझे स्टेज से नीचे उतर रहे हैं, लेकिन मुझे तो अच्छा लग रहा था। तो मुझे पैसों का लालच नहीं था जितना मेरे को ऑडियंस का लालच था, जितना मुझे पब्लिक का लालच थी, जितने मुझे लोग मान सम्मान तालियाँ बजा के इतना प्यार दे रहे थे उसकी भूखी थी।

खजाना दिखाती हूँ आपको, जो मेरी जिंदगी भर की मेहनत है, वो खजाना आप देखिए। आइए मेरे साहब हैं ये, मैं हूँ। बहुत शादी से पहले की फोटो है ये, जब सगाई हुई थी हमारी, 83 की फोटो है ये। और ये मेरी परिवार है मेरा पूरा। ये डेनमार्क वहाँ प्रोग्राम कर रहे थे हम लोग, वहाँ पे वहाँ की फोटो है ये। वो ऊपर वाली जो वो 92 की फोटो है, ये बहुत पुरानी फोटो है। मैं छोटी थी, मेरे ये भाई बहन है, ये मेरी मामी है मेरे माँ की भाभी, और ये उनके बच्चे हैं परिवार में। उनसे मिलने के लिए गई थी, तो ये जब की फ़ोटो है। हम लोग ऐसे ही टेंट में रहते हैं, ये वाले टेंट है हमारे। और ये मेरी बड़ी बहन है, हमारे लिए खाना बना रही है, और हम लोग यहाँ मिलने के लिए गए थे। तो ये हमारा यही ट्रेडिशनल है, इसी तरीके से हम लोग रहते हैं। ये फ्रांस की है, 96 की फ़ोटो है। ये हमारी पूरी टीम है, फ्रेंच टीम। फेस्टिवल था वहाँ पे अमेरिका, उसमें फ्रांस में, और वहाँ पे इन्हीं का प्रोग्राम था, मेरा भी प्रोग्राम था, और वहाँ पे हम लोगों ने ये साथ मिलकर डांस किया था। ये है फोटो, हाँ 83 की है, 83 की। जैसलमेर, यहाँ से फेमस हुई थी। तो ये ड्रेस पहन के मैंने पहली बार वहाँ पे डांस किया था 83 में। हम लोग यहाँ रहते हैं, ये शास्त्री नगर पहले रहते थे यहाँ पे, जहाँ से मैं इस जगह से अमेरिका गई, यहाँ से इस देरों में से ये सफ़र मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ।

झांका तो हो गया, मैंने पुराना सफ़र आपको दिखाया और पुरानी यादें ताज़ा करी। तो अब चलते हैं वापस स्वर्ण फार्म हाउस और वहाँ पे थोड़ा डांस करेंगे।

रोटी सब्जी और रोटी रोटी रोटी रोटी रोटी रोटी। आज हमारे खाने में बना है ये तो दही और चीनी है, ये तो दही और चीनी, और ये मेरे साकार की सब्जी है जो तोरू की सब्जी है। इसमें सिर्फ हरी मिर्ची डाली है और हल्दी डाली है और टमाटर है, और ये मेरे सिंगोड़े की रोटी है, और ये खीरा है। ये

कांकन हो गई, इसको कांकन कहते हैं, इसको पुंछिया कहते हैं, जो ये बड़ा वाला जो फुंदी होती है इसको बाजूबंद कहते हैं। तो पता नहीं ऊपर वाले का कोई ऑर्डर ही है कि मैं पहले ही एडवांस बना के रखूँ, क्योंकि मैंने 81 में तो स्टार्ट ही कर दिया था, ये 79 में मैंने बनाई थी ये ड्रेस। बाबा रामदेव जा रहे थे तब मैंने पापा से पैसे मांगे और हम लोग सारे जाके ये काली ड्रेस बना के इसको अलग अलग कलर डाल के सतरंगी ड्रेस बनाई और ये मेरे प्रोग्राम में काम आई। बाबा की गई थी मैं पहन के रामदेव राम। मैं बहुत छोटी थी, पापा की बहुत लाडली थी, तो मैंने एक बार पापा से पूछा था, मैंने कहा पापा मैं ही आपकी लाडली क्यों हूँ, मुझे आप इतना प्यार से क्यों रखते हैं। तो मेरे पापा ने कहा कि तू मेरी स्पेशल बेटी है, और पता है तो 3 भाइयों के बाद तू हुई और 5 साल बाद हुई, और माता रानी से दुआ मांगते मांगते तेरी माँ ने बहुत मांगा माता रानी से, फिर तू हुई। तो मेरे को पापा ऐसे टाल देते थे हर बार।

पाँच छः साल की होगी, तो एक बार मेरे सामने एक बच्ची हुई थी, मैं खुद एक खड़े खड़े देख रही थी वहाँ पे, लड़की हुई थी, तंबू में डेरों में तो होते थे हमारे, तो औरतें पर्दे करके जन्माया और मैं वहीं खड़ी थी। मैंने जब देखा तो बच्ची रो रही, रोती हुई बच्ची को खड्डा खोद के और उसमें गाड़ दिया जिंदे ही, रोते रोते। तो मैं उन औरतों के पत्थर मार रही थी, तो एक औरत आई, मेरा हाथ पकड़ा, मेरी माँ के हाथ में थमाया कि तेरी छोरी को संभाल, ये वहाँ पत्थर मार रही है, पुकार रही है, वहाँ पे बच्चा मार दिया, बच्चा मार दिया। तो मेरे पापा ने मुझे धमकाया, बोले नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, मेरी माँ ने भी कहा नहीं करते। मैंने कहा ऐसा क्यों है? तो मैं जब दो रोज रोटी नहीं खाई, मेरे पापा ने कहा, बोले बेटा तेरे को मैं कहानी सुनाता हूँ। फिर मेरे को पापा मेरी स्टोरी मेरी कहानी के जरिए सुनाई मुझे, पाँच छः के बीच में थी, तब मुझे पता चला कि मुझे गाड़ दिया था और मेरी माँ ने मुझे निकाला।

0: start in this edition with the top political story that we're tracking. Barely hours after the joint CGP-Congress protest in Delhi, the Delhi police have taken Hindutva influencer Swatantra Bhardwaj into custody. Now, the case dates back to July of 23rd when Bhardwaj allegedly attacked the father of one of the protesters in Delhi. The police has invoked the SC-ST Act along with charges of voluntarily causing hurt and wrongful restraint as well. An attempt to murder charge is still under consideration. Pending medical reports reacting to development, the protester who filed the case called this the first step towards justice. Meanwhile, Union Minister Chirag Paswan has distanced himself from the controversy, saying that his name was misused and has asked Delhi police to investigate.
1: हम अभी काफ़ी देर अंदर थे, पुलिस ऑफिसर्स के साथ थे, उन्होंने हमारे साथ कॉपरेट किया और वो कह रहे हैं कि 72 आवर्स के अंदर स्वतंत्र की गिरफ्तारी होगी, उसे अरेस्ट किया जाएगा और जल्द ही उन्होंने कहा है कि वो उनको अरेस्ट करेंगे
2: और
1: हाँ 72 घंटे के अंदर, और साथ ही वो कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे और इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और हमें भरोसा है कि ये वाकई में इस पर काम करेंगे। जिस तरीके से अब तक ये डिले करते आ रहे थे, अब ये और नहीं करेंगे।
3: ये खुद कह रहे, डंकी की चोट पे कह रहे, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम ट्रंप, नेतन्याहू, जितना को भी, अभी तो राहुल गांधी उतरा है ना, हम तो कह रहे हैं भारत के अंदर जितना विपक्ष नेता है, तुम जितना विपक्ष की सपोर्टर है, उन सारे लोग को लेके ग्राउंड पे उतर जाओ, तो भी अगर मेरा बाल विभाग कर दो तो मान जाए। नहीं हो सकता सर, जलवा है हमारा।
4: देखिए, जो जंतर मंतर में हिंसा हुआ था, जो ये स्वतंत्र नाम के गुंडे और उनके जो गैंग के मेंबर्स थे, वो घुस के उन्होंने एक दलित फैमिली, निशु नाबालिग लड़की, उनके पिताजी के साथ जो बर्बरता की संजय जी के साथ, उस मामले को लेके पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही थी, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही थी। सो मच सो कि अब ये गुंडा ऑनलाइन जाके अपना वीडियोज़ बना रहा है, रील्स काट रहा है और इंटरव्यूज़ दे रहा है, ये बोलते हुए कि मैंने अटेम्प्ट टू मर्डर किया था, लेकिन मुझे जेल में एक रात भी रुकना नहीं पड़ा। एंड इसलिए आज हम लोग गए एंड एडिशनल DCP, SHO, ACP और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उनको हमने बताया, हमारी सारी मांगे पूरी की गई।
5: इस विषय की गंभीरता को समझते हुए और क्योंकि उस व्यक्ति ने कई राजनेताओं के साथ साथ मेरे भी नाम का मिसयूज करने का काम किया है, ऐसे में मैंने अधिकृत शिकायत भी उस व्यक्ति के खिलाफ की है और साथ ही में दिल्ली पुलिस से भी आग्रह किया है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
0: All right, so that was a big development that came in today, where NDTV also earlier had spoken to Swatantra. Now, let's tell you the timeline of the case. The timeline dates back to the 23rd of July, when Swatantra had gone to a podcast to make an explosive claim. Now, Swatantra is a Hindu activist, wherein he made explosive claims of breaking a protester's father's skull, soon after which Congress and CJP had gone ahead to register a complaint, after which the Hindutva influencer was detained. Remains to be seen on how the story develops tomorrow, but for now we move on to the other stories that we are tracking, and this is about Congress facing a fresh internal storm in

0: start in this edition of the top political story that we're tracking. Barely hours after the joint CJP-Congress protest in Delhi, the Delhi police have taken Hindutva influencer Swatantra Bhardwaj into custody. Now, the case dates back to July of 23rd when Bhardwaj allegedly attacked the father of one of the protesters in Delhi. The police has invoked the SC-ST Act along with charges of voluntarily causing hurt and wrongful restraint as well. An attempt to murder charge is still under consideration. Pending medical reports reacting to development, the protester who filed the case called this the first step towards justice. Meanwhile, Union Minister Chirag Paswan has distanced himself from the controversy, saying that his name was misused and has asked Delhi police to investigate.
1: हम अभी काफी देर अंदर थे, पुलिस ऑफिसर्स के साथ थे, उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया और वो कह रहे हैं कि 72 आवर्स के अंदर स्वतंत्र की गिरफ्तारी होगी, उसे अरेस्ट किया जाएगा और जल्द ही उन्होंने कहा है कि वो उनको अरेस्ट करेंगे
2: और
1: हाँ 72 घंटे के अंदर, और साथ ही वो कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे और इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और हमें भरोसा है कि ये वाकई में इस पे काम करेंगे। जिस तरीके से अब तक ये डिले करते आ रहे थे, अब ये और नहीं करेंगे।
3: ये खुद कह रहे डंकी की चोट पे कह रहे, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।

0: gone way low.
1: I think after Jantar Mantar, we have agreed that abuse is par for the course.
0: It's okay, right? It's okay right now.
1: Everyone and anyone can be abused. That's what we've been told now. It's not a crime to abuse, so everyone will be abused.
2: In Hindi,
1: get ready.
2: एक बनी हुई खिचड़ी जो होती है ना उसको बार बार आप उसको आंच पे नहीं चढ़ा सकते. प्रॉब्लम इज द 2012-2013 ऑनवर्ड्स व्हाट वी ऑल डिस्क्राइब वाज अ वेरी हार्ड मैस्कुलिन अप्रोच टुवर्ड्स पॉलिटिक्स व्हिच वाज शोन बाय द बीजेपी एंड द कांग्रेस क्लियरली वाज स्कॉट यू नो इन नो मैन्स लैंड. दे डिड नॉट हैव द रिस्पॉन्स टू इट. नाउ द थिंग इज दैट वी ऑल गॉटन वेरी यूज्ड टू इट. आई मीन पद्मजा एंड ऑल ऑफ यू गाइस, यू नो ऑल ऑफ अस हैव बीन इन द फील्ड फॉर लॉन्ग. द वर्ड बेशरम, which we all hear so often now. I have traveled to every state in this country during election time. I have spoken to all chief ministers. I mean, I don't know how many rallies I would have covered. The word Besharam, I never heard for the first 10, 15 years of my journalistic.
0: Now it's like normal.
2: I mean, you know, in parliament, outside parliament. So what you say, the bar is coming down. It is only going to get worse. Why?

0: start in this edition with the top political story that we're tracking. Barely hours after the joint CGP-Congress protest in Delhi, the Delhi police have taken Hindutva influencer Swatantra Bhardwaj into custody. Now, the case dates back to July of 23rd when Bhardwaj allegedly attacked the father of one of the protesters in Delhi. The police has invoked the SCST Act along with charges of voluntarily causing hurt and wrongful restraint as well. An attempt to murder charge is still under consideration, pending medical reports reacting to development. The protester who filed the case called this the first step towards justice. Meanwhile, Union Minister Chirag Paswan has distanced himself from the controversy, saying that his name was misused and has asked Delhi police to investigate.
1: हम अभी काफ़ी देर अंदर थे, पुलिस ऑफिसर्स के साथ थे, उन्होंने हमारे साथ कॉपरेट किया और वो कह रहे हैं कि 72 आवर्स के अंदर स्वतंत्र की गिरफ्तारी होगी, उसे अरेस्ट किया जाएगा और जल्द ही उन्होंने कहा है कि वो उनको अरेस्ट करेंगे
2: और
1: हाँ 72 घंटे के अंदर, और साथ ही वो कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे और इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और हमें भरोसा है कि ये वाकई में इस पर काम करेंगे। जिस तरीके से अब तक ये डिले करते आ रहे थे, अब ये और नहीं करेंगे।
3: ये खुद कह रहे, डंकी की चोट पे कह रहे, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम ट्रंप, नेतन्याहू, जितना को भी, अभी तो राहुल गांधी उतरा है ना, हम तो कह रहे हैं भारत के अंदर जितना विपक्ष नेता है, तुम जितना विपक्ष की सपोर्टर है, उन सारे लोग को लेके ग्राउंड पे उतर जाओ, तो भी अगर मेरा बाल विभाग कर दो तो मान जाए। नहीं हो सकता सर, जलवा है हमारा।
4: देखिए, जो जंतर मंतर में हिंसा हुआ था, जो ये स्वतंत्र नाम के गुंडे और उनके जो गैंग के मेंबर्स थे, वो घुस के उन्होंने एक दलित फैमिली, निशु, नाबालिग लड़की, उनके पिताजी के साथ जो बर्बरता की, संजय जी के साथ, उस मामले को लेके पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही थी, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही थी। सो मच सो कि अब ये गुंडा ऑनलाइन जाके अपना वीडियोज़ बना रहा है, रील्स काट रहा है और इंटरव्यूज़ दे रहा है, ये बोलते हुए कि मैंने अटेम्प्ट टू मर्डर किया था, लेकिन मुझे जेल में एक रात भी रुकना नहीं पड़ा। एंड इसलिए आज हम लोग गए एंड एडिशनल DCP, SHO, ACP और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उनको हमने बताया, हमारी सारी मांगे पूरी की गई।
5: इस विषय की गंभीरता को समझते हुए और क्योंकि उस व्यक्ति ने कई राजनेताओं के साथ साथ मेरे भी नाम का मिसयूज करने का काम किया है, ऐसे में मैंने अधिकृत शिकायत भी उस व्यक्ति के खिलाफ की है और साथ ही में दिल्ली पुलिस से भी आग्रह किया है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
0: All right, so that was a big development that came in today, where NDTV also earlier had spoken to Swatantra. Now, let's tell you the timeline of the case. The timeline dates back to the 23rd of July,

0: Hello and welcome. Thanks very much for joining us here on NDTV. I'm Padmaja Joshi. It's said that when you put three people in a room, you've got the cockroaches who are back. And this time it is because of a social media influencer called Swatantra Bharadwaj. Now, the government would have thought that they had the Jantar Mantar protest behind them. But what basically happened was that one young lady called Nishu Azad, whose father got into an altercation on the 23rd of July. Now, the man who is accused of beating up her father, Sanjay Azad, appeared on a podcast and boasted about how not only he had beaten up Sanjay Azad, who's a member of the Bheem Army, but
1: इस तरीके से मॉब लिंचिंग करने का साजिश 25 से 30 आदमी मेरे पास बकायदा हर एक चीज का प्रूफ भी है सारे लोग आके पूरे अटैक करते मेरे ऊपर जबकि सिर्फ हम कैमरा डाउन किए थे और अटैक करने के बाद वहां पे एक डस्टबिन रहता है जिसकी वजह से मेरा पैर स्लिप करता है अपने सेल्फ डिफेंस में क्योंकि मेरा भी कुछ छवि है अगर हम गिरते और वहां पे मेरे ऊपर अटैक हो जाता कुछ लोग वहां मुस्लिम भी शामिल थे और कई सारे मुस्लिम का मेरे पास कंटिन्यूअसली डेथ ट्रेस आते रहता है कि मतलब जान से मार देंगे गुस्ताखे नबी ऐसे वैसे
2: स्वतंत्र भारद्वाज की एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है पूरे देश भर में जिसमें वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने मेरे पापा

0: ये है कि उसने पिटाई की, मारा, वो तो खुद कन्फेस कर रहा है अपने उसमें, लेकिन जिस तरह वो नाम ले रहा है, वो कपिल मिश्रा का नाम ले रहा है, चिराग पासवान का नाम ले रहा है, और प्राइम मिनिस्टर का नाम ले रहा है, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बड़बोलापन है उसके अंदर, और इस नाम लेने से ये घटना ज़्यादा जो है इसने ज़्यादा इसमें ये विवाद बढ़ा। अगर वो सिंपल कहता मैंने मारा और मैंने ये किया तो शायद बात वहीं तक सीमित रहती, लेकिन जब उसने नाम ले दिया, प्राइम मिनिस्टर तक का नाम ले दिया, तो जाहिर है फिर उसमें राहुल गांधी को
1: आने का आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा है पद्मजा?
2: आत्मविश्वास मतलब बड़ बोला है, कौन है? नॉन एंटिटी के
3: संग यू भोकाली, एक शब्द होता है भोकाली, भोकाल कर रहा है कि भोकाल कर रहा है मुझे, इससे मैं उसको जानता हूं, उसको जानता हूं।
0: सैया भाई को तो आलतू
1: तो डर का है का, यहां सैया तो मैं नहीं, वो शब्द
2: इस्तेमाल कर रहा हूं, मतलब कह रहे हैं ये एक्टिव पैटर्नेज है
1: जी, बिल्कुल इसी तरीके मैं ही कह रहा हूं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये मॉडर्न इंडिया में इस तरह की बात कहना, और उसको ये पूरा आत्मविश्वास है कि वो इससे बच निकलेगा।
2: अखिलेश जी एक्टिव पैटर्नेज
3: है, मुझे नहीं लगता। देखिए वजह तक कि जो मैंने शब्द किया कि वो भोकाल कर रहा है, तो अपने दिखाना चाहता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और जाहिर सी बात है जो आपने दिल्ली पुलिस का क्लेरिफिकेशन पढ़ के बताया है उसमें तो दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि ही वॉज डिटेंड अनदर अलॉन्ग विद अनदर पर्सन, सो दिल्ली पुलिस इज टेकिंग एक्शन, बट नाउ ऑफकोर्स दे विल बी फोर्स टू टेक फर्दर एक्शन बिकॉज दे द कांग्रेस जनता पार्टी, नाउ द कांग्रेस पार्टी एंड अदर भीम आर्मी, दे ऑल आर डिमांडिंग दैट ही शुड बी अरेस्टेड। So I'm sure that
2: and within 72 hours the police have said within 72 hours, अब तो मतलब अगर भोकाली है भी तो उनका भोकाल कम ही होगा।
0: नहीं भोकाल नहीं, अब तो बचाव में आ गए ना। अब आपने देखा नहीं जो उनका दोबारा जो दूसरा वीडियो आया है उसमें वो कह रहे हैं कि मैंने तो अपने बचाव में किया कि भीड़ ने मुझे घेर लिया था, मॉब लिंचिंग हो रही थी, तो नाउ ही इज ऑन द डिफेंस साइड। या तो किसी वकील से बात की होगी, वकील ने कहा होगा ये बयान दो, या किसी उनके सरपरस्त ने कहा होगा। अब जिनके उसने नाम लिए हैं उससे कितना उनका रिश्ता है ये तो हम लोग नहीं कह सकते, नाम तो कोई भी किसी का ले सकता है, लेकिन नाम लेने के लिए भी हिम्मत चाहिए, नाम लेने के लिए भी एक
2: सर हमारे देश में क्या हिम्मत चाहिए, वो तो है ना चाचा विधायक है हमारे, तो
3: जानता नहीं मैं कौन हूँ, ये हमेशा तो अपने सर पे बोलते हैं ये बात।
0: देखिए आप वीडियो पे कन्फेस कर रहे हैं मैंने सर फोड़ दिया और वो लड़की जो है रोने लगी कि मैं जहर खा लूंगी, ये सब आप तब कन्फेस करते हैं जब आपको ये भरोसा होता मेरा कुछ नहीं होगा।
1: बिल्कुल सही बात है,
3: इसीलिए एक्शन लेना बहुत जरूरी है, इसीलिए इस मामले में एक्शन बहुत जरूरी है कि एक्शन लिया जाए,
2: एक्शन लेना जरूरी है, एंड देयर नीड्स टू बी अ कंप्लीट क्लेरिफिकेशन फ्रॉम द दिल्ली पुलिस ऑफ द नेचर ऑफ एक्शन दैट हैज बीन टेकन। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द पॉलिटिक्स एंड ऑल्सो लिटिल बिट अबाउट द बैकग्राउंड, बिकॉज दिस लेडी ऑल्सो हैज हैड अ बैकड्रॉप of making some problematic tweets, statements about Hindu religion. She has spoken about Saraswati. And during the time when the Jantar Mantar protest was happening also, she had been controversial because there was a video of her saying, Modi ke tervi ka prasad kha lijiye and all of that. But that being said, obviously nobody can condone any kind of violence. That action needs to be taken. But Amitabh Tiwari, I want to now focus on what it is that Mr. Gandhi, yesterday when he was responding to Nishu Azad, very interesting use of language. When he tweeted back to her, he said, Nishu, there is no need to panic. I am with you. It's clear you are being targeted because you raise your voice for the rights of your community and students. Remember, this was about NEET paper leak. But he says you are raising your voice for your community. Amit Shah's Delhi police on one hand commits inhuman brutality. On the other hand, the criminal who smashed the head of a Dalit girl's father is roaming freely in the open. Your fight, you are not alone. We won't stop until justice is served. Jai Bhim, Jai Constitution. Where do you see this?
4: No, but see, essentially what happened in 2024? In 2024, yes, the Congress party regained some of its lost support amongst the Dalits. And largely in states like UP, where there were several, and Maharashtra, where there were several severe losses, the Dalits supported in large numbers the India Bloc candidates or the Congress party candidates. Now, at that point of time, the narrative was Samvidhan khatre mein hai. Now, over the 2 years, this narrative is not in discussion. This has actually lost in translation, correct? So, you have again the important election of UP coming, Uttarakhand also, there is a lot of
2: Punjab.
4: In all these three states, there is a significant Dalit population there.
0: Punjab is 33%.
3: Punjab is largest.
4: So, you need a new narrative to first hold on to the gains which you made in 2024 and even expand those gains. Because historically, traditionally, Congress support has been what? The general category plus Dalit plus Muslim. So it's an attempt to revive this vote block. So obviously, he's not talking about the NET paper leak or the protest. He's tagging it to the community. And unfortunately, politically, for the BJP, the accused is from the general category. So that's unfortunate. It's just a coincidence of sorts. And the Delhi police action has also been very reactionary, I would say. Correct. अगर आपने उसको बुलाया था, उसको इंटरोगेट किया था, तो जो अब ये चार्जेज आप अभी लगा रहे हैं वो पहले ही लगा देते आप। ठीक है, और क्योंकि ही इज ऑफकोर्स ही इज बोस्टिंग टेकिंग नेम्स, आई मीन यंग पीपल डू टेंड टू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड दिस यूट्यूब इन्फ्लुएंसर एक अलग कैटेगरी है भाई, एक अलग ही खतरनाक कैटेगरी है ये, ठीक है, तो वो बोस्ट कर रहा है, तो
2: द मोर आउटरीचेस यू आर द मोर वायरल यू
4: या सो अब ऑफकोर्स दी गवर्नमेंट विल हैव टू एंश्योर दैट वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन इज टेकन एट द अर्लीस्ट बिकॉज अगेन यू हैव अ ब्रिक्स समिट एंड यू डू नॉट वॉन्ट दिस इशू टू जस्ट इम्पैक्ट
2: So what happened at the level of the Delhi police? Let me get a quick word in from Mukesh Sengar as well, because he's been tracking this case right from the time when the Jantar Mantar protest took place. Mukesh, hame bataiye, hua kya? Ye jo sare abhi dharaye lagayi gayi hain, why wasn't this done at the time, on the 23rd? What does the MLC of this man actually say? Just clarify this for us.
5: देखिए, सुशांत भारद्वाज जो है वो बिहार का रहने वाला है और ख़ुद को एक कट्टरवादी हिंदू नेता कहता है, उसका यह भी दावा है कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और दिल्ली पुलिस के मुताबिक बहुत जल्दी ही उसे गिरफ़्तार किया जाएगा। दरअसल जो 23 जुलाई को घटना हुई थी, उस घटना में जो विक्टिम संजय हैं उन्होंने थाने में आकर शिकायत दी थी और ये कहा था कि 2-3 लड़कों ने उनको मारा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसके बाद संजय की मेडिकल जांच कराई गई, उनकी मेडिकल रिपोर्ट तैयार हुई और मेडिकल रिपोर्ट में जो नेचर ऑफ इंजरी था वो सिंपल था, इसीलिए पुलिस ने जो बेलेबल ऑफेंस हैं उसके सेक्शन के तहत ये केस दर्ज किया था और थाने में पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया था। लेकिन अब जो नए एलिगेशन है उसमें जो नई कंप्लेन दी गई है संजय की ओर से, उसमें कहा गया है कि झगड़े के दौरान उन्होंने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने SC ST एक्ट के तहत जो सेक्शन होता है BNS का, उसको भी FIR में ऐड कर लिया है और उनकी दूसरी मांग ये थी कि जो इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला दर्ज हो, क्योंकि आरोपी खुद कह रहा है कि उसने हाफ मर्डर किया था, अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला भी दर्ज हो। तो दिल्ली पुलिस के मुताबिक जो विक्टिम संजय हैं उनकी दोबारा से उनकी मेडिकल जांच होगी और मेडिकल लीगल रिपोर्ट में अगर ये आता है कि जो चोटें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं तो उसके बाद फिर ये तय होगा कि इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, तो उनकी दोबारा से मेडिकल जांच कराई जाएगी। हमने कुछ देर पहले
2: ये तो बड़ी अजीब सी बात है, 23 जुलाई को इन पे हमला हुआ था, अब सितंबर में उनकी मेडिकल जांच से कैसे पता चलेगा कि अटेम्प्ट टू मर्डर लगना चाहिए कि नहीं? अब तो उनके सारे टाके वाके भी खुल गए ऐसा दिख रहा है, अब मेडिकल जांच करके क्या होगा?
5: देखिए बिल्कुल, मैं आपसे यही बोलने वाला था कि अब जो मेडिकल जांच होगी उसमें शायद कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये घटना है 23 जुलाई की और कई महीने इसमें बीत चुके हैं, तो ऐसे में इसमें क्या कुछ मेडिकल जांच में आता है ये देखने वाली बात है। लेकिन पुलिस का कहना ये है कि जो अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज होता है उसके लिए जो चोट होती है उसके कुछ मापदंड होते हैं और उसी बेसिस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगता है, तो ऐसा लगता है कि शायद दोनों पक्षों के बीच में जो बातचीत हुई है उसके बाद उनको भी लगा कि शायद इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज नहीं बनता है, तो ये बात रखने के लिए शायद पुलिस ने बोला होगा कि इसमें दोबारा से मेडिकल जांच होगी, मेडिकल लीगल रिपोर्ट आएगी और उसके बेसिस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज होगा, तो ये तो अभी आगे का प्रोसेस है, लेकिन ये कैसे होगा ये देखना होगा।
2: All right, so we'll keep a very close eye on that. Just for clarifying all of this for us, thank you very much, Mukesh, for joining us. Within 72 hours, that's the deadline that has been given. I want to quickly play out a few of the political bites to this, what Chandrasekhar Azad, people like Ashutosh Ranka have said. Let's listen into them.
6: हमारी पूरी टीम मीशु उनके पिताजी संजय जी के साथ पहले दिन से खड़ी रही है। हम यहाँ पर दिल्ली पुलिस से मांग करेंगे कि तुरंत इन गुंडों को जिन्होंने खुद को सेल्फ आइडेंटिफाई किया है उन्हें अरेस्ट किया जाए, उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया जाए और जितनी भी संगीन धाराएं इन पर लगती है वो धाराएं लगाई जाए।
7: मेरे ऊपर अचानक हमला किया और ये भी नहीं है कि कोई जो तेजधार जो कड़ा था हथियार जो उसके पास हाथ में उससे हमला किया और उसे कहने के मैं दो जगह सिर फटा और उसी दौरान मैंने पार्लियामेंट थाने में इसके ऊपर FIR भी करवाई। लेकिन जो पार्लियामेंट थाना और वहाँ का प्रशासन जिस हिसाब से इसे बचाया तो मैं कहता हूँ पुलिस का यही काम रह गया गुंडों को बचाना और अपराधियों को इतना कमजोर कर पीड़ित को इतना कमजोर कर दो वो थाने के पास ही आप मदद के लिए आए ना कभी न्याय मांगने के लिए, तो पार्लियामेंट थाना यही करता है वहाँ पर।
8: संजय और उनकी बेटी जिनको लगातार बलात्कार करने की जो है धमकियां दी जा रही है, जिनको लगातार तेजाब डाल के जलाने की उनकी हत्या करने की धमकी दी जा रही है वो डरे हुए। अगर देश की राजधानी में ये हाल है तो ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह के हाल होंगे आप देखो। तो हम लोग गए थे अधिकारियों से मिले, अधिकारियों ने हमें वादा किया कि वो 72 घंटे के अंदर गिरफ्तारी करेंगे और जो ऑफेंस है, क्योंकि बेटिया बेटी जो है माइनर है तो पोस्को अनुसूचित जाति से बच्ची आती है तो SC ST एक्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराएं वो इसमें लगाएंगे।
2: So it's interesting, that is Nishu Azad's father, Sanjay Azad, and see, he's holding a portrait of Baba Saheb Ambedkar in his hand as well. And I want to link this to something else that is happening, Vinodji, because you had Mallikarjun Kharge writing a flesh letter to JP Nadda saying that it's been 24 or 25 days since that Shuddhikaran was done, and yet no FIR has been filed. Do you think now that the next few elections, the five big elections we are seeing in the next year, are going to see a revival of this caste politics?
0: Of course. Jo abhi Rashid bhai keh rahe the, Congress is trying to get their Dalit vote again. Ab wo kaise milega? Jab tak aap issue ko zinda nahi rakhenge. Aur BJP ne thoda kaam aasan kar diya Rahul Gandhi par FIR karke. Haldwani mein jo Rahul Gandhi pe FIR kar diye, to usse unka kaam aur aasan ho gaya. Kyunki Rahul Gandhi kya kar rahe the? Wo to खड़गे का मामला उठा रहे थे ना, तो अब तो ये हो गया कि अगर आप किसी दलित का मामला उठाएं तो आप पे FIR हो जाएगी, एक नई नज़ीर बन गई। तो मुझे समझ में नहीं आता कि हल्द्वानी पुलिस ने ऐसा क्यों किया या उत्तराखंड सरकार ने क्यों किया, एक कांग्रेस के हाथ में एक उन्होंने हथियार और दे दिया। तो जिसका कांग्रेस कोशिश करेगी पंजाब में, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में दलित इशूज को रेज करने के लिए, और ये संजय आजाद वाला मामला भी आ गया, तो सारी चीज़ें क्लब, राहुल गांधी का ट्वीट, मल्लिकार्जुन खड़गे का लेटर, हल्द्वानी की FIR, ये सब मिला करके कांग्रेस के हाथ में दलितों के बीच में जाने के लिए एक अच्छा खासा मुद्दा।
2: बट लेट मी आस्क यू दिस अमिताभ तिवारी, हु इज इवेंचुअली गोइंग टू बी द पर्सन हु बेनिफिट्स द मोस्ट फ्रॉम दिस? बिकॉज इवन इफ वी जस्ट टेक अ लुक एट व्हाट हैपेंड इन जंतर मंतर, देयर इज भीम आर्मी विच इज चंद्रशेखर आजाद, आई थिंक निशु आजाद ट्रैवल्ड in the car of Chandrasekhar Ravan when she went to Parliament Street Police Station. Then you have the Congress Party. Even Akhilesh Yadav retweeted what Nishu Azad said yesterday. So who really is the messiah of Dalits in the upcoming elections?
4: No, essentially, if you see...
2: And in this regard, also remember that we are seeing a lot of chaos within the BSP. Just yesterday, I think for the 100th time... Akash Anand was removed because... Every 5 months, Mayawati decides ki he's mature, then he's immature. He's mature, then he's immature. So he's been removed again from the post of party convener.
0: Thrice.
2: Thrice she's done it. So the Dalit vote is floating. BSP is weak. Who then emerges as the principal party for Dalits?
4: Correct. So in all the three states which we are discussing, Uttarakhand, Punjab, UP, the dynamics are different. So in UP, what has happened is that over the past years, from 2014 Lok Sabha election to 2022 Vidhan Sabha election, the non-Jata vote was captured by the BJP. The BJP was able to play this Jata versus non-Jata, just like OBC versus non-Yadav OBC. And in 2022 Vidhan Sabha election, BJP got 45% of non-Jata Dalit votes. This turned in 2024. In 2024, the Samajwadi Party Congress Alliance got 54% of the non-Jata vote. Largely riding on the Samvidhan Khatre Mein Hai narrative. Now, it is expected, and in our surveys also in vote, under vote vibe surveys, that the Jatav support of BSP is also under threat in this election. Because in the Lok Sabha itself, the BSP vote share is down to single digits. Now, the fight is for the Jatav vote. One is for the non-Jatav holding of that vote, and the fight for the Jatav vote, which the Bheem Army, I mean, parties like the Ajad Samaj Party are looking at. What happens is that in case of Dalits, when you don't have a very significant influential leader in the state, for example in UP, Mayawati or Channi and Kashiram, earlier in Punjab, etc., the voters tend to be impacted by beneficiary politics. So BJP got not these votes not because, just because of Jatav versus non-Jatav, but also because a lot of these communities were enrolled as beneficiaries in their schemes. Correct. So this is what is going to play. Whether these voters are largely going to act as beneficiaries of schemes, or they are going to act on Dalit emotional issues or pride, which is this Azad issue or the Samvidhan Khatre Mein issue.
2: Because and that is the question, if Dalit Khatre Mein hai, could provide that kind of mobilization to Dalits as a whole, SC as a whole, irrespective of which subcaste they belong to. But what does the entry of cockroach tell us in all of this? You know, there was a meeting that Ashutosh Ranka, today he was there at Parliament Street Police Station next to Nishu Azad. Yesterday, apparently, he held a 1.5 hour long meeting. Ashtab, what have you heard about it? Kya ho raha hai ye?
1: Well, I told you, this is a political orchestra that is going on. Hmm. It is getting assembled. There are performers, there are instruments, and this will come into play. See, that for the BJP, Mayawati and BSP had been an insurance policy kind of thing, because she was holding on to 10% and more votes. But people, voters have a thing. They wake up late. Mm. And now they realize that perhaps Mayawati is not in a position to be an influencer. Mm. So in that sense, if her stocks go down, then who gains? So it is the Congress which hopes to gain. At the same time, though Kokroch Janata Party and Samajwadi Party and Congress, they are all very different entities. Mm. In the Congress also, there is a talk that whether they should go with SP.
2: And they were
1: not
2: uncomfortable. Congress was uncomfortable with the CJP and Jantar Mantar. Precisely. Stayed away. But you've got Akhilesh Yadav entertaining them. I want to quickly tell our viewers also how Om Prakash Rajbhar responded to this. Then maybe Vinodji and Rashid sir will again want to weigh in. Ka ho Akhilesh Yadav ji, suna hai. आज अभिजीत नक्षत्र में दीपक जलाने की कोशिश कर रहे हैं. इस बीच आपके घर में तिलचट्टे आने लगे. दैट्स व्हाट कॉकरोचेस आर कॉल्ड इन हिंदी. इसी बीच आपके घर में तिलचट्टे आने लगे, वो भी मुंह बांध के. टीवी में तो दिखाता है कि लाल वाला स्प्रे तिलचट्टों को खत्म करने के लिए होता है, यहाँ तो लाल वाले खुद ही तिलचट्टों से मदद मांग रहे हैं. ऑब्वियसली मिस्टर राजभर इज सीइंग कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे. विनोद जी,
9: नहीं, राजभर साहब को ये एक्सपीरियंस है कि लाल वालों के साथ उनकी जो डीलिंग रही है 2022 में, उसके बाद जब लाल वालों के साथ वो अलग हुए तो
2: लाल हिट कैसे
9: लाल
2: होता
9: हिट
2: है?
9: कैसा होता है. तो इसलिए वो अपना एक्सपीरियंस अभिजीत दीपके को और आशुतोष रंका को बता रहे हैं.
2: बट
1: देखिए तिलचट्टे जो है उनको खत्म करना हम अपने घरों में भी देखते हैं, बड़ा मुश्किल होता है. आप कोई सा भी हिट ले आए, कोई भी लाल ले आए, कुछ भी, वो दे मल्टीप्लाई वेरी फास्ट. सो इन पोलिटिकल टर्फ, अगेन आई वुड से द अपोनेंट्स ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी शुड बी वेरी केयरफुल, बिकॉज दिस इज स्पेंडिंग. देर इज लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी अबाउट कॉकरोच पार्टी. तो तिलचट्टों को आप अंडर एस्टिमेट ना करें.
2: अखिलेश जी, व्हाट इज द गवर्नमेंट,
9: झाड़ू को किया था लोगों,
2: व्हाट इज द गवर्नमेंट इंटरेस्टिंग. हाँ, पहले झाड़ू और फिर अब, और एक्चुअली झाड़ू जो है खतरनाक होती है तिलचट्टों के लिए. बट एनीवे, व्हाट इज द थिंकिंग विद इन द गवर्नमेंट? डू दे सेंस दैट देयर इज अ मोबिलाइजेशन अलोंग कास्ट लाइंस दैट इज टेकिंग प्लेस, स्पेशली अमंग द दलित कम्युनिटी, एंड हाउ आर दे गोइंग टू काउंटर इट? हु आर द बिग faces from the Dalit community, for example, who speak on behalf of the government?
3: See, BJP की खास बात यह है पद्मजा कि कोई भी खतरा जब आता है तो भांप करके या खतरे को सामने देख करके बहुत जल्दी अपने आप को उसके लिए तैयार कर लेती है, बदल लेती है. तो आपने देखा कि जब ये 20 तारीख का हुआ कांग्रेस जनता पार्टी का जंतर मंतर पर आक्रोश, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, एक ज़बरदस्त कोर्स करेक्शन बीजेपी कर रही है, जो कि नितिन नवीन की टीम के फॉर्मेशन में भी दिखाई दिया. और अब बीजेपी की जो आने वाले समय की स्ट्रेटेजी उसमें भी दिख रहा है कि जब मंत्रियों को कहा गया है कि आप यूनिवर्सिटीज़ में जाइए, बच्चों से बात कीजिए, पीएम खुद 5 तारीख को SRCC में जा रहे हैं, इसके साथ ही उन्हें कहा कि स्कूलों में बातचीत आप कीजिए, पार्टी को ये कहा गया कि आपको सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव होना है, मंत्रियों को कहा गया कि आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव हों, और जहाँ तक दलित लीडरशिप की बात है, बीजेपी के पास एक नहीं ऐसे कई सारे चेहरे हैं जिनको आगे कर सकती है. जैसे कि आपने बात की है उत्तर प्रदेश की, तो भोला सिंह को भी फिर से रिपीट किया गया सेक्रेटरी के तौर पर. जहाँ तक हल्द्वानी

0: हल्द्वानी जा रहे हैं 8 और 9 तारीख को। हालांकि मैं उसको उससे जोड़ के देख नहीं रहा हूँ कि वो प्योरिफिकेशन को लेकर जो इशू बना रही है कांग्रेस उससे कर रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं वहाँ पर। तो एक संदेश है कि वो हल्द्वानी से ही अपने उत्तराखंड यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं। और जो बात अभी चल रही थी, राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है इस मामले पर, उसमें उन्होंने जय भीम लिखा है, इसको बहुत बारीकी से देखने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता कि इससे पहले कब उन्होंने ये जय भीम बोला, हो सकता बोला हो, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में जय भीम बोलना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बीजेपी अभी तक क्या कहती आई है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने बाबा साहब का अपमान किया। बाबा साहब जब चुनाव लड़ रहे थे तब उनको हरवाने के लिए कोशिश की, सब कुछ किया, और अभी तक जो लेगेसी जो है बाबा साहब की उसको कांग्रेस अपने पाले में डालने की चाहे कोशिश करती रही हो लेकिन उसमें कामयाबी उनको नहीं मिली। समाजवादी पार्टी की आप बात कर लें, कांशीराम जिनसे कि लंबा ठीक अलायंस भी हुआ मुलायम सिंह जी का, लेकिन कांशीराम की प्रतिमा का उद्घाटन करने के लिए अखिलेश यादव जाते हैं, तो ये भी एक बहुत पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट चीज़ है कि वो जाट ऑफ वोट जो उनको अपने पाले में लाना चाह रही है। समाजवादी पार्टी भी, कांग्रेस पार्टी भी, सबको लग रहा है कि बीएसपी कमज़ोर हो गई। बीएसपी की आज ये हालत है कि ठीक है 10-12% वोट तो आपने माना कि उनको मिल रहे हैं, लेकिन ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में, ना विधानसभा में, ना विधान परिषद में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता की बात उनके सपोर्टर्स के लिए नहीं होगी क्या? तो हम कहाँ जाएं?
1: सो इन दैट सेंस इज द कांग्रेस रिवर्टिंग टू इट्स ट्रेडिशनल equation of Muslim, Dalit and Brahmin. Is that what we are likely to see in the upcoming UP elections? In that context, I want to actually also bring in what is happening in Western UP. By the way, Janmashtami greetings to all of our viewers and to our guests over here, because on Janmashtami, Yogi Adityanath is in Western Uttar Pradesh. And it seems that this really is going to be the battleground for UP. You've got Akhilesh Yadav, who was in Saharanpur yesterday. He is touring that entire area. He's held multiple meetings, smaller meetings, rallies in this particular area. Amitabh Tiwari, first of all, why this focus on Western Uttar Pradesh? You've got Yogi Adityanath. Let's play out for our viewers what he said. And it's a very familiar theme. I remember when this entire Chanda Chori matter came up in Ram Mandir, what did Yogi Adityanath say? He said, if people in Samajwadi Party are so concerned about mandirs, about people's aastha, why don't they support a grand mandir at Mathura as well? Obviously hinting at Akhilesh Yadav and SP. Let's listen in to what he said in Mathura today.
2: हमारा प्रयास है कि मथुरा वृंदावन में भी वही भव्य परिसर तैयार हो जैसे अयोध्या में और जैसे काशी में हुआ। किसी श्रद्धालु को समस्त कोई दिक्कत ना हो, उसकी आस्था के साथ कोई संकट ना हो, उसके सामने अपने आराध्य का दर्शन करने में किसी प्रकार की कोई चुनौती न हो।
1: Does Akhilesh Yadav see real opportunity, Amitabh Tiwari, in Western Uttar Pradesh?
3: So see, Western UP is a big chunk. It's like almost 136 seats if you add Doab, Rohilkhand, Braj, the entire Western UP.
4: Up to Bareilly.
3: तो बड़ा क्षेत्र 136 सीटें हैं, बट अगर हार्डकोर वेस्टर्न यूपी भी देखें तो ऑलमोस्ट 44 सीटें हैं। अब पिछली बार last time what happened is that RLD was part of the Samajwadi Party led alliance. But despite that, the BJP was ahead in Western UP. Of just the 44 seats of the core Western UP, the BJP got 26 and Samajwadi Party led alliance 16. अब यहाँ पे जाट, दलित, मुस्लिम इन तीनों की आबादी significant है। बात होती है वही combinations बनाने की। RLD और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ तो इस स्ट्रैटेजी के साथ हुआ कि द जाट एंड द मुस्लिम वोटर विल कम टुगेदर, बिकॉज हिस्टोरिकली दैट द चौधरी चरण सिंह वॉज एबल टू अचीव। बट आफ्टर द रायट्स इन यूपी इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन देर इज अ लॉट ऑफ मिसट्रस्ट बिटवीन द जाट एंड द मुस्लिम, दैट फ्रैक्चर इज देयर, इट्स नॉट ईजी टू रिजॉल्व। सो वी सॉ एंड इवन द बीजेपी एंड अखिलेश सर विल अग्री टू दिस और मे हैव सम अदर sources to confirm this, that the BJP was expecting significant losses in Western UP actually. And they were expecting gains in Eastern UP और सीधा उल्टा हुआ उसका, ठीक है? तो इतना आसान क्षेत्र नहीं है। और अब जाट समाज यानी RLD जो है वो BJP के साथ है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी ये लग रहा है कि भाई अब वो जो एक अलायंस पार्टनर था वो भी नहीं है अब हमारे साथ, है ना, जिसकी वजह से हमको 16 सीटें मिले भी थी। तो हो सकता है कि इस रीजन में कमजोर हो जाए समाजवादी पार्टी, लेकिन उसको अब ये दलित वोट से कंपनसेट करने की कोशिश की जा रही है ना।
1: Who do you think right now is ahead?
3: No, I mean overall if you see except for Bundelkhand and perhaps

0: eastern UP, which is Purvanchal, where there is a tight contest. Even last time it was 28-26 only in favor of the BJP. I think across most regions the BJP is ahead by 3 to 5 percentage points.
1: Interesting. Because Rashid Bhai, what I found a little strange is Akhilesh Yadav's attack on Jayant Chaudhary at a time when you would want Jats to come towards you. You know that famous comment of his where he said ki wo chavanni the humne unko rupya banaya. We'll just play out that video also. Responding to that, clearly the RLD also got a new social media manager. Unhone kaha hai, one of the spokespersons of Samajwadi Party said ki inko to rajniti ki ABCD nahi aati. So the RLD put out a video saying ABCD ke baad aata hai G for Ganna.
2: ABCD ke baad bhi kuch aata hai. EFG. G for Ganna. Aur A chahe J for kehne ki zarurat nahi, sabhe maloom hai. To hum to yaar G aur J mein hi phasa denge, S aur P to aane wala hi nahi hai.
1: What was behind that attack on
3: Jayant? I think it's very personal. I think both the leaders had invested in each other. Both of a young youthful and they had a lot of promise, Jayant Chaudhary and Akhilesh. And I remember till the very last moment, and I think you would also know, they tried efforts too, because there was a meeting of Jayant Chaudhary with the Home Minister Amit Shah, and at that time he was part of that alliance was there. So Mr. Akhilesh Yadav put his sort of, you know, prestige at stake and approached Jayant Chaudhary that please don't go, and you know, we have a lot of promise and we'll do all this thing, and that didn't happen. So Jayant was like, you know, a little smart, little clever, and he went ahead. So I think there is a sense of hurt that is there. Also on a political turf, Padmaja, Akhilesh Yadav is very wary of, you know, Jayant's reach to a limited extent, but to Muslims. Because in Western UP, if you go there and you talk to the old timer, they have a lot of, you know, respect and faith and that kind of sense of reverence to Chaudhary Charan Singh. So even law of diminishing returns, RLD, part of NDA, BJP, it still has a potential to get some percentage of Muslim votes because of that, you know, historical and the personal ties. Now Akhilesh Yadav would not want even 1% of it. So therefore, and I have reasons to understand that Mr. Jayant Chaudhary has been given a kind of, you know, free hand because, you know, to do whatever the politics of for that particular region, 136 seats we are talking about. So in that, he feels as a threat. So ye sada ka sada jhagda usi ka hai.
1: Akhilesh ji, is Jayant Chaudhary likely to get a promotion also?
4: हो सकता है. देखिए, अभी दो बड़ी मीटिंग उनकी हुई है. फर्स्ट ही हैड ए मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर, इमीडिएटली आफ्टर दैट ही हैड गोन टू लखनऊ एंड ही हैड अ वेरी लॉन्ग मीटिंग विद द चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, एंड आफ्टर दैट ही रिप्लाई टू दिस चवन्नी वाला रिमार्क विच वॉज मेड बाय अखिलेश यादव. सो ही इज वेरी क्लियर अबाउट हिज फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. इट्स वेरी क्लियर दैट ही विल रिमेन विद द बीजेपी. ही इज लाइकली टू गेट अ प्रमोशन. आई डू नॉट नो वेदर ही विल गेट इट और नॉट, बट एज फार एज द नंबर ऑफ सीट्स आर कंसर्न, बिकॉज लास्ट टाइम इन द अलायंस दे हैड 33 सीट्स were given to them.
1: They'll get a greater. Sorry, what did you say?
3: मुझे लगा 6 महीने का promotion होगा. Result by फरवरी में फिर वापस. देखिए, वो एक जगह MOS independent charge है और एक जगह मतलब वो है MOS है.
5: Promotion को उसी समय मिल सकता था जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था. वो HRD के MOS हैं. तो अगर प्रमोशन देने का होता बेस्ट टाइम था कि उसी वक्त उनको चार्ज दे दिया जाता.
4: बट सी प्रहलाद जोशी की जगह चार्ट इशू
5: उनको दे दिया जाता. नहीं, मैं
1: सर, आई डोंट नो इफ एनीवन विल काउंट दैट एज अ प्रमोशन राइट नाउ. दैट इज अ क्राउन ऑफ थॉर्न्स. वो सोच, वो खुशी मना रहे होंगे कि मैं एमओएस ही ठीक हूं इस वक्त.
4: देखिए, जब से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ उसके बाद से जाटों को लेकर के बीजेपी को भी एक मैसेज देने की जरूरत है. इसीलिए अगर आप देखेंगे तो सतीश पुनिया, जो कि अपना खुद का चुनाव हार गए थे, उन्हें राज्यसभा में लेकर के आए, उन्हें अब बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, पंजाब का उनको इंचार्ज बनाया गया है. तो बीजेपी को भी एक बड़ा संदेश जाट समाज को देना है, जिसने पिछले 4 चुनाव में यूपी में उनका साथ दिया है वेस्टर्न यूपी में. तो बीजेपी इतनी आसानी से उनको जाने नहीं दे सकती है.
5: देखिए, जाटों का जो हिस्ट्री है, अलग अलग राज्य में अलग अलग उनका बिहेवियर है. राजस्थान के जाट कांग्रेस के साथ हैं. वो सतीश पूनिया को लाए या धनखड़ को लाए, राजस्थान में जाट जो है कांग्रेस के साथ, क्योंकि वहाँ राजपूत और ब्राह्मण जो बीजेपी के साथ हैं. हरियाणा का जाट जो है वो बिकॉज ऑफ हुड्डा वो कांग्रेस के साथ है, कुछ हिस्सा ये चौटाला की लोग. यूपी का जो जाट है, वेस्टर्न यूपी का, वो एंटी कांग्रेस रहा शुरू से, राइट फ्रॉम द चौधरी चरण सिंह टाइम. और वो आज बीजेपी के साथ नहीं है. जब मंडल के बाद जब पहला चुनाव हुआ 91 में, जब बीजेपी को पहली बार मेजोरिटी मिली यूपी में, तो जाटों ने वोट दिया बीजेपी को. और कैसे दिया? महेंद्र सिंह टिकैत वॉज इन जेल इन वाराणसी. कल्याण सिंह उसे मिलने गए. कल्याण सिंह ने कहा कि हम आपसे समर्थन चाहते हैं. महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा ठीक है. और महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा कि भाई इस बार जब छूट के आए वो जेल से तो पंचायत की, और पंचायत उन्होंने कहा किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगा, कहा भाई इस बार राम का नाम लेके वोट डाल देना। तो जाटों ने बीजेपी का जो जाट शिफ्ट हुआ वहीं शुरू हुआ। इवन अजीत सिंह उस वक्त जिंदा थे, अजीत सिंह एक्टिव थे, अजीत सिंह पर चुनाव हार गए 98 में।
4: संजीव बालियान ने चुनाव
5: नहीं, संजीव बालियान ने वो तो बाद में आ रहे हैं, सोमपाल से आ रहे हैं,
4: सोमपाल से आ रहे हैं।
5: पहला चुनाव 98 में सोमपाल से बागपत से आ रहे हैं अजीत सिंह। तो चरण सिंह की फैमिली को जाटों ने छोड़ना तभी शुरू कर दिया था मिड 90s में आफ्टर मंडल, क्योंकि तब जाट ओबीसी कैटेगरी में नहीं थे और अजीत सिंह को फाइट नहीं कर पाए, तो वो छोड़ दिया और वो बीजेपी की तरफ चले गए। इवन मुलायम सिंह और अजीत सिंह का अलायंस हुआ तब भी जाटों ने जो है उसको वोट नहीं दिया, उस अलायंस को, वो बीजेपी को वोट दिया। क्यों? वो लड़ाई क्या थी, जब मुलायम सिंह अजीत सिंह के बीच में चीफ मिनिस्ट्री का झगड़ा हुआ था 89 में और अजीत सिंह हार गए थे विधायकों को चुनाव, वहाँ से जाटों में और यादवों में दरार पड़ी जो चरण सिंह का पूरा वोट था। तो अखिलेश यादव उसको पाटना चाहते हैं, कोशिश भी की उन्होंने, उन्होंने जयंत चौधरी को राज्यसभा में भेजा और जयंत चौधरी उधर चले गए। तो अखिलेश सिंह की पीड़ा वो है।
1: एंड यू कैन इमेजिन हाउ इम्पोर्टेंट दिस पर्टिकुलर एरिया एंड दिस पर्टिकुलर वोट इज, गिवन दैट वन मर्डर दैट टुक प्लेस ऑफ अंकित बालियान हु इज अ यूट्यूबर दैट गॉट ऑल द टॉप लीडर्स गोइंग एंड विजिटिंग हिम, टू ऑफ द पीपल हु वर बिहाइंड दैट मर्डर दे वर शॉट डेड इन एन एनकाउंटर बाय द यूपी पुलिस, इट वॉज कॉट ऑन सीसीटीवी कैमरा, बट the way it was mobilized when Akhilesh Yadav reached out to the Balyan Samaj and Samajwadi Party leaders went and met his family, so that gives you an idea of just how important this vote is. And since we spoke of Ram ke naam par vote de dijiye, I think that takes us straight into our next story, which is the Ram Mandir CEO, and he seems to be quite a, what was the thinking behind choosing a former Indian Air Force official and somebody who is an Operation Sindoor hero?
4: Discipline. डिसिप्लिन का मैसेज देना है कि सी हम अब जो कुछ हुआ है गड़बड़ी हुई है ये अब बर्दाश्त नहीं होगी, अब कोई एक ऐसा आदमी चाहिए जो कि ठीक से संभाल सके, क्योंकि व्हाट हैपन इन द राम टेम्पल डोनेशन इशू वाज कि आपने बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रस्ट कर लिया। चंपत राय के बारे में ये कहा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों पर विश्वास कर लिया, उनको ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दे दी जो शायद विश्वास के लायक नहीं थे, उन्होंने उस विश्वास से गलत फ़ायदा उठाया, उन्हें अंधेरे में रख करके ये पूरा काम अंजाम दिया। तो इसलिए अब ऐसा सिस्टम बनाना है, आपको याद होगा कि नृपेंद्र मिश्रा जी ने सबसे पहले इंटरव्यू में ये कहा भी था कि वी हैव टू हैव दिस काइंड ऑफ ए सिस्टम नाउ वेर यू हैव अ सीईओ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग हैज़ टू बी देयर, द प्रॉपर मैनेजमेंट हैज़ टू बी देयर। सो वो थिंकिंग है। ऑपरेशन सिंदूर के एक वॉर हीरो को आप लेकर के आ रहे हैं तो कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, कोई ये नहीं कर सकता, हालांकि उठाया है राशिद अलवी ने कुछ प्रश्न किया था उसको लेकर के बीजेपी ने जवाब दिया।
1: ऐसा क्यों होता
3: नहीं उनको तो बहुत, मुझे लगता है कई बार इस तरह के लोग होते हैं ना कि वो बयान दे करके मतलब अपने जो राजनीतिक विरोधियों की मदद करते हैं।
1: तो ये क्यों करते हैं हमेशा ऐसे लोग, स्ट्रेटेजिकली क्यों प्लेस होते हैं कांग्रेस के अंदर, कभी वो मनीष शंकर रहे होते हैं, कभी राशिद अलवी होते हैं।
3: सत्ता का डायनेमिक, सत्ता में क्या होता है कि जो विपक्ष में सेन लगाते हैं, मैं कोई उनकी व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत आपको लोग मिलेंगे कि जो ऐसी बात कह देते हैं कि जिससे मतलब आपके दुश्मनों को फायदा हो।
1: जैसे यू आर अनदर लीडर सेइंग कि सिर्फ मिश्रा जी ही क्यों बन रहे हैं, ऑल्दो आई मीन
5: भाई दिग्विजय सिंह के बयानों से कितना फायदा होता था बीजेपी को,
4: और वो भी ऐसे एरिया के यादव है जहाँ पर की अखिलेश यादव का मुलायम सिंह का काफी प्रभाव रहा है, शुकाबाद की वो है और उनका पुराना संघ का जनसंघ के जमाने से उनका परिवार।
3: लेकिन पद्मजा देखिए मुझे लगता है कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते ये आस्था का मामला है और इसमें एक भारी चूक हुई थी, गलती हुई थी और एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। अब आप जैसे किसी के घर में चोरी हो जाए और आप किवाड़ लगाएं और अच्छे से अच्छा ताला लगाएं और सीसीटीवी लगाएं तो सबका कोई मतलब नहीं, दोबारा थोड़ी ना चोरी होगी।
1: आप कह रहे हैं कि इसको डैमेज हुआ है बीजेपी,
3: बिल्कुल अमिताभ तिवारी बताएंगे
5: मुझसे बेहतर। इसमें इसमें एक अमिताभ भाई आपसे देखिए, इसमें मैसेज जो गया है वो ये गया है कि बड़े लोगों को बचा लिया गया और छोटे लोगों को फंसा दिया गया, पब्लिक में मैसेज है। एसआईटी, क्योंकि पहले एसआईटी जो सरकार ने बनाई उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, उन्होंने दूसरी एसआईटी बनाई और एक भी इसमें जो आदमी रिस्पॉन्सिबल थे उनको, उन पर कोई केस नहीं हुआ, जो और पकड़े हुए टीनू यादव और वो अनुपम अलंकार मिश्रा क्या नाम थे, ये सब पकड़े गए। तो ये एक मैसेज लोगों में है कि साहब कहीं कहीं आईवाश हुआ है।
4: नहीं देखिए, इसमें ये था कि बीजेपी को लगा शुरुआत में कि शायद नुकसान हो सकता है, लेकिन उसकी भरपाई करने की भी उन्होंने कोशिश की, जो एक्शन लिया गया, जिस तरह से अरेस्ट किए गए उसके कारण उनको लगता है कि हमने काफ़ी हद तक उसकी भरपाई की। अब जो सीईओ का अपॉइंटमेंट हुआ, जिस तरह के व्यक्ति को सीईओ बनाया गया है उससे भी एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया है, जिस तरह के 3 नए मेंबर बनाए गए ट्रस्ट में उससे भी बीजेपी को लगता है काफ़ी हद तक एक बड़ा संदेश हम दे सकते हैं। उनका यह कहना है कि प्रश्न वो लोग पूछ रहे हैं जिन्होंने हमेशा इस राम टेम्पल का, राम टेम्पल मूवमेंट का कभी ना सपोर्ट किया ना अपने आप को उससे कभी एसोसिएट किया, तो जिन लोगों को उसमें कभी इंटरेस्ट ही नहीं रहा वो किस मुंह से इसका पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश कर।
1: एंड योगी आदित्यनाथ कंटिन्यूज टू बी ऑन द ऑफेंसिव व्हेन इट कम्स टू दिस राम टेंपल इशू। एट नो पॉइंट ही हैज सीम्ड डिफेंसिव एट ऑल। इनफैक्ट इवन इन मथुरा टुडे ही सेड दैट द ओनली पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट राम मंदिर आर दोज हु हैव नेवर केयर्ड फॉर इट।
5: सवाल ये है जो अमिताभ भाई बताएंगे लोग कितना बाय कर रहे हैं इस आर्गुमेंट।
1: कितना बाय कर रहे हैं बताइए, बहुत प्रेशर है आपके अमिताभ के
0: ऊपर। देखिए टॉप 5 इश्यूज में तो है ही।
1: In fact, let's play out those graphics. How much does it, what is the issue that really has found resonance with people? That is what vote vibe went and polled. And about 11% of the people said, what is the most important UP poll issue? 23.1% found unemployment as the main issue. And about 11.4% people have found it to be an issue. But still, unemployment is much bigger than Ram Temple.
0: Because unemployment... I mean, आज किसी भी स्टेट में इफ आई मीन इट्स एन एवरग्रीन इशू एंड इन एनी स्टेट यू डू एक्सेप्ट फॉर मे बी 2-3 सदर्न स्टेट्स यू विल नॉट गेट अनएम्प्लॉयमेंट एज नंबर वन इशू बट स्टिल आई मीन स्टिल रिमेन्स एट 11.4% विच इज सिग्निफिकेंट सी वॉट हैपन्स इज सी एनी इशू प्लेज बोथ वेज ओके एंड द डिग्री ऑफ यू कैन से द डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस डिपेंड्स अपॉन विच एवर नैरेटिव इज स्ट्रॉन्गर। सो एक बात है कि भाई ये एक इमोशनल मुद्दा है, आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब वेट एंड वॉच मोड में पब्लिक है कि भाई यू हैव मेड एन SIT, यू हैव अपॉइंटेड अ न्यू CEO, यू हैव मेड सम अरेस्ट एंड सम FIR हैज बीन डन, आर यू एबल टू इम्प्लीमेंट SOPs एंड गिव कॉन्फिडेंस टू द पब्लिक दैट दिस इज नॉट लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर। अगर ये हो जाता है तो थोड़ा बहुत जो इसका डिसकंटेंट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि एक तरह से राम मंदिर के निर्माण के बाद इस मैटर का क्लोजर हो चुका था यूपी में, ठीक है, तो इसका बीजेपी को फायदा भी नहीं मिला लोकसभा चुनाव में। अब क्या हुआ है इस मुद्दे के बाद से कि फिर से ये मुद्दा फोरफ्रंट पर आ गया है और बीजेपी यानी जो व्हाट यू आर मेंशनिंग अबाउट योगी आदित्यनाथ मेंशनिंग अबाउट हाउ पीपल हु हैव नेवर वर्क्ड फॉर और सपोर्टेड द आइडिया ऑफ राम मंदिर और their ancestors had allegedly fired on Ram Sevaks, how will they or how can they talk about
1: exactly.
0: this issue?
1: Exactly. So if anything, the familiar pitch for the BJP, correct. Which is about, you know, we are for Aastha, we are for Sanatan, that comes into the conversation again.
0: Correct. So it risks diverting or deviating from PDA to Hindutva. That's also a risk. Because agar aap bahut zyada karenge to
1: and that is
0: hoga?
1: Where that is where you've got these other issues which come in. For example, what happened in Kerala, Rahul Gandhi went and gave the call for smashing patriarchy, and then you had this Mr. Grand Mufti who came and said that women are like necklaces and they should be kept inside a box. Then his son went and said that you please have 3 children and you go straight to heaven and you are only required to come here and breed. Do you think that actually front footing the Ram temple issue has given that polarization to the political narrative which may end up suiting BJP in the long run, especially when these binaries are highlighted?
3: Yeah, so Padmaja, we must understand there is, you know, the political parties in India are very religiously conservative. They don't take a reformist thing, whether it is the BJP or the Congress. And there are, you know, mixing of religion in politics that is happening in a very glaring manner in Uttar Pradesh. And I think, you see, when I was looking at that Amitabh survey, see, the matter of faith, the BJP was very sure-footed. If 11% or more are apprehensive or they are just looking at it with this, that is actually, in a way, bad news for the BJP because this is where they should have been zero. And that's where the 11% people are sort of, you know, against them. Now, coming back to that, you know, that Kerala controversy, I think that was an atrocious remark. And at a time when Rahul Gandhi is trying to make some kind of, you know, patriarchy and those kind of misogynic behavior as a political issue, which is very difficult to make. I mean, you can say it, but to execute it is very difficult because I think, like other political parties, Congress is not ready for it. So Rahul Gandhi is talking at one, you know, kind of pitch of one wavelength and another.
1: But it's just not just about wavelength, it is actual political calculation, right? Which is why you had the IUML go and support it. It's all very well to say that, okay, V.D. Satishan has condemned it, but then, you know, you have an alliance partner who is politically significant enough, because there were many local Malayali reports who said that IUML was also instrumental in V.D. Satishan eventually becoming
3: absolutely.
1: The chief minister.
3: You're absolutely right. So that is, here is my argument. You see, I've written a book that Muslim women MPs in Lok Sabha, directly elected. Padmaji, you'll be surprised that there are 5 states in South India which are very progressive in terms of economic indicator. There is not so much of communal polarization. Not a single Muslim woman has been elected from entire South India. They've been elected from Gujarat. They've been elected from Assam. Uttar Pradesh, or you know, all those places, but not from South. So you see, that is what I'm saying, that political parties are very conservative. They don't go deep. They just have an alliance on this political party like IUML, MIM, and those kind of things. And therefore, you have a situation like this.
1: Is the government worried about Ram Temple blowback, or they think it's a sorted issue?
4: They are worried about it. There's no doubt about it.

0: That's why now some corrective actions are being taken. The appointment of the new CEO, appointment of three new members in the trust, and they will also take it forward. For example, today Yogi Adityanath is in Mathura. If I recall correctly, since he has become Chief Minister, this is 38th time 40. He has gone to Mathura. 48th time that he has gone to Mathura. So it itself shows that how seriously he takes all, be it Mathura or Kashi or Ayodhya. So for him, all these religious symbols are very important.
1: And he always mentions them in one breath. It's always Kashi, Mathura, Jhaki tha. So Ayodhya, Kashi, Jhaki tha. Mathura abhi baki hai.
2: Kashi, Mathura baki hai.
1: Kashi, Mathura baki hai.
2: Ayodhya abhi Jhaki hai, Kashi, Mathura baki
1: hai. Ab to Kashi bhi baki nahi hai. Ab to Kashi mein to bani gaya hai corridor.
2: Corridor ban gaya, but wo jo masjid Gyanvapi hai na, asli to वो है ना, कॉरिडोर तो वही बना लीजिए, वो मथुरा भी तो मंदिर विशाल बना हुआ है,
1: नोबडी सेज इट एज स्ट्राइडेंटली एज योगी आदित्यनाथ, वो तो बार बार कहते हैं।
2: राम मंदिर वाले जो चढ़ावा चोरी का मुद्दा है, उसे एक वोट भले बीजेपी का कम हो ना हो, हिंदुत्व की धार कमजोर हो गई है। जो एग्रेसिवनेस थी राम मंदिर के आंदोलन के बाद, चढ़ावा चोरी ने उसको कमजोर किया है।
1: योगी आदित्यनाथ को देख के आपको लग रहा है धार कमजोर?
2: योगी आदित्यनाथ बोलता ना कि पब्लिक में नहीं है ना, पब्लिक में लगता है यार सब एक ही जैसे हैं। ये जो इंटरनेट बनता है ना, वो इसलिए वो जब राम मंदिर बनने के बाद भी अयोध्या की सीट हार जाती है बीजेपी, तो चढ़ावा चोरी की बात कैसे?
1: पर जैसे अमिताभ कह रहे थे कि अगर 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कुछ फायदा नहीं हुआ, देन व्हाई आर वी अज्यूमिंग कि चोरी से उनको नुकसान हो जाएगा? दैट इज काउंटर इंटुइटिव, राइट?
2: नुकसान ये हो जाएगा कि जिन्होंने तब वोट दिया 24 में, वो
1: बट जब फैजाबाद में ही लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, तो अब वोट कटेंगे क्यों?
2: नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वोट नहीं मिला, हाँ चुनाव आ रहे हैं, वोट तो मिल ही है, ये थोड़ी एक जीरो वोट मिला है, वोट तो मिला ही उनको, तो उनमें भी कुछ फर्क पड़ सकता है।
1: ओके, फाइनली आई वांट टू आस्क व्हाट इज हैपनिंग विद विजय, व्हेन इज विजय बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर? राजन जी, टेल अस दैट।
3: नो ना, आई विश हिम वेल, यू सी, इन
1: हिंदी आई हैव टू से दिस फॉर दोस फ्रॉम उत्तर प्रदेश हु आर वाचिंग, देयर इज अ सेइंग आई यूज्ड टू लव, सूत ना कपास जुलाई से लट्टम लट्टा।
3: हां, जाने सूचक शब्द का इस्तेमाल ना करें।
1: नो, ओके, दिस इज प्योरली यू नो व्हाट वी यूज्ड टू से, बट no MP, why are Congress and TVK fighting with each other in Tamil Nadu over who will TVK support? How does it matter who they support?
2: Or abhi election bhi nahi hai.
1: I think election bhi nahi hai.
3: No, but Padmaja, on a more serious note, you see, every elected administrative, he's a MLA and he has a political party that governs his state, he's a potential contender. AG is on his side, he has a mass appeal. See, we must not forget that, you know, film stars find a better traction. If there is a good governance in 5 years from now, maybe he will become a contender. And we have very few, leaders from South, in the sense, the P.V. Narasimha Rao and H.D. Devegowda, there have been two prime ministers. So, I mean, theoretically speaking, it's right. But yes, of course, there is a lot to cover. But good governance would be a good answer. Remember, like Aam Aadmi Party, like some other political parties, the TVK is a, whiff of fresh air, because the two Dravidian parties have collapsed. The two parties had this alliance with two national parties. So it was a collapse of an entire political system, and he has emerged against the system. Whether he is able to take it forward in an election or two is yet to see.
1: Is there discomfort within the TVK about the Congress, or vice versa? Is there discomfort within the Congress about the TVK?
3: It's very simple. I think you asked a very sort of pertinent issue. Padmaja, this was built between the alliance between two individuals, Vijay and Rahul Gandhi. So the Congress party was not part of it. They were not privy to it that, Rahul Gandhi will flip, and they were with the DMK. And there was, of course, a lot of history to it. So therefore, whenever there is an individual alliance based, it always has a problem if it doesn't trickle down. Like Amitabh ji will say that, we had this kind of thing with this about, alliance with SP-BSP. On the paper, it looked very formidable. But worker level pe kuch bhi traction nahi tha. चाचा भतीजा वो मिल गए थे, वो सॉरी बुआ भतीजा, बट इट डिडंट वर्क ऑन द ग्राउंड सिचुएशन।
1: देयर इज ऑलवेज कंस्पिरेसी थ्योरी
2: अबाउट वर्कर लेवल पे। ट्रैक्शन था 93 में जब मुलायम सिंह काशीराम मिले थे,
3: जी
2: तब ट्रैक्शन था,
1: मिले मुलायम काशीराम।
2: अच्छा, इसी तब
3: आप दूसरा सेंटर
1: नहीं बोला मैंने।
0: ये जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है दोनों अलायंस पार्टनर्स का, ये इस घटना से पता लगता है, क्योंकि एक इमेजिनरी इशू है। अभी ना कोई चुनाव हो रहा है, जो कोई सवाल आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनने वाला है, नहीं बनने वाला है, उसको लेकर के अगर आप झगड़ रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि आपके जो अलायंस चल रहा है वो ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है इस अलायंस के भीतर। और हो सकता है कि आने वाले महीने में कुछ बड़ी खबर भी देखने को मिले।
3: नहीं, लेकिन अखिलेश
1: जी, बड़ी खबर है वो
0: टूट जाए,
3: अखिलेश क्वेश्चन दैट यू आस्क, इफ रोनाल्ड रीगन कैन बी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, व्हाई नॉट विजय इन इंडिया?
4: स्पीकर
0: हां दैट इज पॉसिबल सी इन पॉलिटिक्स यू कैन नॉट रूल आउट एनीथिंग
4: सी इंडिया में
2: वंस एनटीआर आल्सो ट्राइड

0: this.
1: But what I'm saying that election is in 2029. Right now, the issue.
2: बड़ा हमेशा एक left front का space है.
3: Good reason for TV के MLAs to
2: want to एक left front का space है. एक third का. There is no left now. Correct. It used to have 54 MPs. तो पहले आप था. अरविंद केजरीवाल उठे. अब विजय उठ रहा है. कांग्रेस में कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ये ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि इस भाई का 108 सीट खुद से है. 7 एडीएम के एमएलए रिजाइन कर चुके हैं. 115 हो जाएगा. ये मेजोरिटी होगा. इनके बाद इसको जरूरत ही नहीं है. ठीक है. तो इससे अच्छा तो कि हम तो डीएमके के साथ थे जो हमारा ट्राइड एंड टस्टेड अलाई था.
1: और आपको उसके कारण आपने नेशनल लेवल पे देखिए कितनी बड़ी इनसिक्योरिटी.
2: 22 एमपी कम हो गया.
1: इंडिया अलायंस से आपके 22 एमपी अलग हो गए. अब बीजेपी के साथ अगर आ जाते हैं तो बीजेपी डिलिमिटेशन बिल को पारित करा लेगी. तो फिर आपका सबसे बड़ा इशू तो आपके हाथ से निकल जाएगा. और दूसरा जहाँ तक विजय की बात है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो नॉर्थ इंडिया के कुछ यंग पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं कि तमिलनाडु में ये क्या हुआ, विजय कैसे जीत गए, विजय ने क्या स्ट्रेटेजी की थी. वो चाहते हैं कि अपने अपने स्टेट में उसी को फॉलो करें.
3: ओके, सो इट इज नॉट जस्ट द यंग पॉलिटिशियंस इन द नॉर्थ, बट आई थिंक एवरीवन वॉचिंग राइट नाउ ऑल्सो इज लुकिंग with great interest at what is happening across the country. Never a dull day when you're talking politics. So as always, thank you very much, gentlemen, for having joined us with your wisdom. And remember, when it really matters, when it is about politics, you can hear about it right here on NDTV. Thanks for watching.

मेरे पापा ने कहा, बोले बेटा तेरे को मैं कहानी सुनाता हूँ कि एक बहुत अच्छी बच्ची थी, परी थी, छह बहन भाई के बाद हुई थी वो, तीन भाई थे उसके, तीन बहनें थी उसके, 5 साल बाद वो हुई थी। उसके पापा शहर में चले गए, उसकी माँ पूरे दिन बकरियों का भेड़ों का जन्म करवाते करवाते वो थक गई थी, उसको होश रहा नहीं और वो बच्ची हुई। उसको ले जाके औरतों ने जमीन में गाड़ दी। फिर उसकी माँ को जैसे होश आया तो पूछा कि क्या हुआ था, मेरे बच्चा हुआ, रोया मैंने सुना था पर गया कहाँ। तो वो अपनी मौसी से, बहन से पूछा, उसकी बहन ने कहा कि तेरी लड़की हुई थी, उसको गाड़ दिया। वो उस बच्ची की माँ रो के उसकी बहन से पूछा कि मुझे वो एड्रेस बता, कहाँ वो जगह बता, कहाँ गाड़ा। तो रोने लगी। फिर उसकी बहन ने उसकी मदद करी। रात की 12-1 बजे रात को वो गई और जब उसकी बहन ने कहा कि वो तो मर गई होगी, अब कहाँ जिंदा मिलेगी तेरे को, पर उसकी माँ बड़ी जिद्दीली थी बेटा। तो उसकी माँ ने कहा कि देख, 9 महीने मैंने पेट में रखा है, वो मर भी गई होगी तो एक बार उसको छू के तो देखूं, फील तो कर लूं। और मेरा दिल कहता है वो मुझे जिंदा मिलेगी, वो पुकार रही है मुझे।

पापा मुझे गले लगा के कहा कर लो बेटा, वो बच्चा और कोई नहीं था, वो बच्चा आप थे, आपको ही गाड़ा था। तब मुझे पता चला कि मुझे गाड़ दिया था और मेरी माँ ने मुझे निकाला। अगर मेरी माँ कोशिश नहीं करती तो मैं जिंदा नहीं मिलती और आज मैं आपके सामने नहीं होती। दुआ मांगी थी ऊपर वाले से कि भगवान मेरे को ऐसी शक्ति देना कभी कि मैं जैसे जिंदा निकली हर बच्ची जिंदा रहे और आज के बाद किसी बच्चे की मौत नहीं हो इस तरीके से, बुरी तरीके से। और मैंने 14 साल की उम्र में आते आते ये लड़ाई मैंने बंद करी और ये बच्चियों को मारना और ये गाड़ना मैंने बंद कर दिया।

0: गर्मी हो रही है ना। अरे बाप रे। शायद बरसात आएगी आज तो।
1: नमस्कार, मारो नाम गुलाबो सपेरा और मैं बताऊँ था ना, मैं पद्मश्री हूँ। मैं बताऊँ आज की मारी दिनचर्या, मैं काय काय करूँ और मारो दिन कैसे स्टार्ट होवे वो बताऊँ मैं थाने आज।
0: माता के स्थान पे जो भी पूरे देवी देवता की तस्वीर है उनकी पूजा पाठ करके और दिन स्टार्ट हो जाता है। उन्हीं के साथ में खेलती कूदती रहती हूँ बच्चों के साथ। और ये खेल जो जल का लोटा रात भर जो मंदिर पे रखते हैं अपन, वो अपने पितृदेव और देवी देवताओं के नाम से हम लोग बाहर इसको डालते हैं ताकि उनको मिल जाए, उसके बाद हमारा दिन स्टार्ट हो जाता है। ये देवी देवताओं के नाम से हैं और ये हमारे पितृदेव के नाम से हैं। और ये सामने जो लक्ष्मी माता आती है उनके लिए हम लोग यहाँ ये उनका स्थान क्लीन करते हैं कि माता आए आप अंदर। मेरा नाम तो धनवंती है असली नाम, तो जो धनतेरस को जन्मी मैं, पर जो ये नाम है इसकी बड़ी स्टोरी है साथ में। मैं बहुत ज़्यादा एक बार बीमार हो गई थी। जब बीमार हो गई थी तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि तुम्हारी बेटी तो अब नहीं रही, ख़त्म हो चुकी। मेरे पापा ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले नहीं नहीं बाबा, तुम विश्वास नहीं कर रहे लेकिन मर चुकी। डॉक्टर से यहाँ से सीधे मेरे पापा मुझे वहाँ लेके गए पीर बाबा के, बाबा की जो दरगाह है उसमें मुझे लिटा दिया। एक घंटे बाद गुलाब का फूल आया अंदर से दरगाह से और मेरे सीने पे गिरा और मेरे हाथ पाँव चलने लगे, सांसें चलने लगी। बोले बाबा आपकी बेटी या बेटा जो भी है बच्चा, वो शायद से ही वो रो रहा है। बाबा बोले मैं मौलाना साहब, मैं इस मुर्दा लड़की को लेकर आया था यहाँ पे और पीर बादशाह ने इसको ज़िंदा किया है, तो आज से ये पीर बाबा की बेटी है और मैं इसका नाम गुलाबी रखूँगा। पापा ने कहा कि धनवंती यहाँ ख़त्म हो गई है, वो तो मर गई। मैं आज से गुलाब को लेकर जा रहा हूँ बाबा आपके यहाँ से। और मेरे पापा मुझे गुलाब का नाम दे के और वहाँ से लेकर रवाना हो गए और इसको आज के बाद गुलाबी बोलेंगे। अजमेर, अजमेर की हूँ वैसे मैं रहने वाली, और अजमेर के आसपास वाले गांवों में वहाँ ही रहते थे हम लोग। 6 महीने की हुई तो समाज के लोग यही कहते थे कि नहीं इसको मरना है, इसको जिंदा कैसे रखेंगे, जिंदा रखेंगे तो ये हमारे समाज पे कलंक है, समाज के खिलाफ है ये रूल, तो जिंदा नहीं रहना चाहिए इसको। तो मेरे पापा डरते थे कि कहीं मेरी बच्ची को मार नहीं दे, तो मेरे पापा मुझे साथ लेके जाते थे गांव ढाणी में, सांपों को नचाने जाते थे, दिखाने जाते थे, तो साथ लेके जाते थे कि कोई मुझे मार नहीं दे। जब मेरी माँ पूछती शाम को कि 6 महीने की बच्ची आप इसको क्या खिलाते हैं, बोला औरतें जो सांपों को दूध पिलाता हो ना वो बचा हुआ दूध इसके पिला देता हूँ। तो बोले सांपों का झूठा दूध, बोला हाँ रोज ही पिलाता हूँ मैं सांपों का झूठा दूध, पिला के इसका पेट भर जाता है बस।

बहुत अच्छा लगता है। ये पांचों पहाड़ियाँ ऐसा लगता है कि पहाड़ियों की गोद में बैठे हैं हम, पांचों पांडू बैठे हैं यहाँ पे। और बारिश के दिनों में तो इतना अच्छा लगता है ना हरियाली।

1981 की बात है, छुपके 20 औरतों के साथ में नाच रही थी बेन के ऊपर, उधर से टूरिज्म डिपार्टमेंट का कोई लोग हिम्मत सिंह जी और तृप्ति पांडे वो आए घूमते घूमते, उन्होंने देखा कि ये लड़की बीन के ऊपर डांस कर रही है। सपेरों की तो बीन के ऊपर डांस करती नहीं है लड़कियाँ, और वो तो सिर्फ सांपों को नचाते हैं। पहला लड़की है जो मेरा डांस देखा, मेरा हाथ लगा के देखा तो बोले तेरे बदन में हड्डियाँ भी यही है नहीं, रबड़ की गुड़िया की जैसे उछल रही है, तू तो एकदम यूं यूं यूं। मैंने देखा, मैंने कहा ये मैडम क्या कह रही है। फिर मेरे चाचा से बात करी कि बोले तुम लोग जो यहाँ डांस कर रहे हो ये शाम को करना वहाँ पे अंग्रेजों के सामने, वहाँ पे एक मंच है उसके ऊपर। फिर ये 1981 में ये मेरे को पहले बार मंच मिला। दो दिन मैंने डांस किया, तीसरे दिन मेला ख़त्म हो गया और समाज को पता चल गया कि ये लड़की तो तख्तों पर डांस करके आई है। समाज वालों ने कहा अरे तख्तों पर डांस किया इसने, जहाँ अच्छी लड़कियाँ डांस नहीं करती डांस किया इसने। ऐसे करके मेरे पापा को समाज से बाहर परमानेंट ही बाहर कर दिया। फिर बोला अब तो हम तेरे को नहीं रख सकते समाज में, अब तो तेरे को निकालना ही पड़ेगा। मेरे पापा को समाज से बाहर कर दिया, और पर मेरे पापा ने मुझे कुछ नहीं कहा। मेरे पापा ने इतना कहा कि ये तो बच्ची है, 7 साल की है अभी, बड़ी औरतें 20 औरतें साथ में थी, आप उन पर नहीं करोगे डंड मुंड। आदमी भी तो था साथ में, बीन बजा रहा था, डपली बजा रहा था। तो पंचों ने पता क्या कहा कि तेरी बेटी नृत्य नहीं करती तो हमारे ये लोग साथ नहीं जाते, हमारी औरतों को लालच नहीं उठता। ये काजल बिंदी के पैसों के चक्कर में ये इस लड़की को नृत्य करा रही थी, तो गलती सारी लड़की की है कि इसने नृत्य स्टार्ट किया। हमारे समाज में कोई बेटियां डांस नहीं करती तो इसने क्यों डांस स्टार्ट किया, ये नहीं कर सकते आज के बाद में। बोले ये तो तेरी बेटी की मौत या समाज से बाहर। मेरे पापा ने कहा कि मैं समाज से बाहर निकल जाऊँगा, लेकिन मैं बेटी की मौत नहीं कर सकता, मार नहीं सकता इसको।

पापा गुजर गए थे फिर 85 में, अमेरिका जाने से एक रोज पहले ही गुजर गए थे। तो मेरे को उसी रात जाना था, मैं दिल्ली में थी, मेरे को वापस बुलाया, फिर मैं बेहोश पड़ी रही 2-3 घंटे। फिर मेरे को लगा कि मेरे मेरे पापा जैसे आके मुझे जगा रहे कि पापा के बोले बेटा उठ, तेरे को तो अमेरिका देश में जाना, चील गाड़ी में नहीं बैठना है क्या? मैंने कहा हाँ। तो उठ, आँख खुली तो मेरे पापा नहीं थे, पर मेरी माँ को मैंने कहा, मतलब माँ पापा आए थे अभी। बोले बेटा पापा कहाँ से आएंगे? मैंने कहाँ से आएंगे, अभी आके मुझे जगाया है पापा ने, मेरे पापा गए नहीं है कहीं पे भी, मेरे पापा मेरे पास ही है, मेरे पापा मुझे अमेरिका भेज रहे हैं। माँ ने कहा बोले नहीं बेटा 12 दिन होगा, उसके बाद आपको जाना होगा। फिर मैं रोने लगी, तो माँ क्या आप मेरे पापा मदद करते थे, आप मदद नहीं करोगे क्या, आपको मदद करनी है ना? तो मेरी माँ ने रोई, फिर माँ चुप हुई, फिर कहा बोले चलो ठीक है बेटा मैं मदद करती हूँ, गए तो तेरे पापा ही है, मैं तो नहीं गई ना, मैं जब तेरे को धरती माता के पेट से ला सकती हूँ तो क्या समाज से नहीं लड़ सकती क्या? पहले भी तो लड़ाई लड़ी मैंने, अब बाकी लड़ाई मैं लड़ूँगी। तेरे पापा ने लड़ाई लड़ी तेरे जन्म से लेकर 81 से लेकर 85 तक, अब मैं लड़ूँगी आगे, तू जा। फिर मेरी माँ ने आंसू पहुँच लिए, कहा कि तू जा मैं लड़ूँगी कोई बात नहीं। फिर जब मैं वापस आई थी तब 2 महीने बाद तब फिर मेरी माँ को मैंने गले लगाया और माँ बहुत खुश भी हुई। मैंने कहा माँ देख आज मैं गई तो मेरे पापा का नाम अमर हो गया, मेरे पापा का नाम छप रहा है, आज समाज का नाम हुआ, देश का नाम हुआ, मैं नहीं जाती तो गुमराही रह जाती, मेरे जो पापा का सपना था वो आधा अधूरा रह जाता। तो बस ये अमेरिका से आने के बाद की फोटो है।

कोई सरदार जी थे उनका, कि गुलाबू बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ सर मैं बोल रही हूँ। बोला आपको पद्मश्री मिल रही है, आपका नाम नॉमिनेट हुआ है और आपको पद्मश्री मिल रही है। मैंने कहा क्या? 25 जनवरी को फ़ोन आया था मेरे पास में सुबह सुबह। जिंदगी का जो मेरी मेहनत थी उस पे उन्होंने एक मोहर लगा दी और वो एक मान्यता मिल गई है मुझे। उसको आप चाहे उसको कुछ भी मान ले, पर मेरे को वो जो मिला है ना पद्मश्री, मैं यहाँ एंड नहीं किया उसको। मैंने कहा कि पद्मश्री मिली है मेरे को, एक कदम बढ़ने का मौका मिला है आगे, तो मेरे को और आगे बढ़ना है, और आगे जाना है। मेरा नाम हो गया था 85 में। उसके बाद मैं तंबू डेरे में रही, मैंने मेरी बेटी मेरी शादी हो गई थी 86 में। तो उसके बाद फिर मैंने 91 में वो ज़मीन खरीदी

कभी 5,000 आए तो बनाया, कभी 20,000 आए तो बनाया, ऐसे कर करके वो बना हुआ है। तो इस तरीके से वो घर बना हुआ है मेरा टुकड़ों में, उसमें सब कुछ फोटो हैं, सब यादें हैं, सब कुछ। क्योंकि ये तो मैं अभी मेरी बेटियों की शादी करी ना, तो फिर मैं यहाँ आके रही हूँ। मार्च से हैं हम यहाँ, अभी तो कंप्लीट नहीं है ये घर, ये मेरा ड्रीम हाउस है। बच्चों को मैंने अपने गिफ्ट बना के दिया है, लेकिन मेरा तो झोपड़ा वही है, मैं तो वहीं रहूँगी, ये मेरे बच्चों के लिए है। तो वहाँ चलेंगे आप?

तो रोड पे नाचती थी हमेशा, और जैसे यहाँ पे ये इस रोड पे बहुत डांस किया है मैंने। एक तो धूप में, मिट्टी में, कंकरों पे, धूल में नाचती थी, और एक पहले बार मंच मिला और ऐसे लग रहा था कि जैसे पब्लिक जो बैठी है वो एक भगवान का रूप लेके बैठी है, और स्टेज है जो एक जैसे मंदिर है। जो रोड पे जो फुटपाथ पे मैं नाच करती हूँ और नृत्य करती हूँ, तो पैसे फेंकते हैं, कोई पैसे देते हैं, और ये लोग मेरे को ताली बजा के भगा रहे हैं, या फिर मेरे समझ में नहीं आ रही ताली बजती क्यों। तो पहले बार तालियों की गिड़गिड़ाहट सुनी तो वो लग रहा था कि शायद मुझे स्टेज से नीचे उतर रहे हैं, लेकिन मुझे तो अच्छा लग रहा था। तो मुझे पैसों का लालच नहीं था जितना मेरे को ऑडियंस का लालच था, जितना मुझे पब्लिक का लालच थी, जितने मुझे लोग मान सम्मान तालियां बजा के इतना प्यार दे रहे थे उसकी भूखी थी।

खजाना दिखाती हूँ आपको, जो मेरी जिंदगी भर की मेहनत है वो खजाना आप देखिए। आइए मेरे साहब हैं ये, मैं हूँ बहुत शादी से पहले की फोटो है ये, जब सगाई हुई थी हमारी 83 की फोटो है ये। और ये मेरी परिवार है मेरा पूरा, ये डेनमार्क वहाँ प्रोग्राम कर रहे थे हम लोग, वहाँ पे वहाँ की फोटो है ये। वो ऊपर वाली जो वो 92 की फोटो है, ये बहुत पुरानी फोटो है, मैं छोटी थी, मेरे ये भाई बहन है, ये मेरी मामी है मेरे माँ की भाभी, और ये उनके बच्चे हैं परिवार में, उनसे मिलने के लिए गई थी। तो ये जब की फ़ोटो है, हम लोग ऐसे टेंट में रहते हैं, ये वाले टेंट है हमारे। और ये मेरी बड़ी बहन है, हमारे लिए खाना बना रही है, और हम लोग यहाँ मिलने के लिए गए थे। तो ये हमारा यही ट्रेडिशनल है, इसी तरीके से हम लोग रहते हैं। ये फ्रांस की है, 96 की फ़ोटो है, ये हमारी पूरी टीम है, फ्रेंच टीम। फेस्टिवल था वहाँ पे अमेरिका, उसमें फ्रांस में ही, और वहाँ पे इन्हीं का प्रोग्राम था और मेरा भी प्रोग्राम था, और वहाँ पे हम लोगों ने ये साथ मिलकर डांस किया था। ये है फोटो, हाँ 83 की है, 83 जैसलमेर, यहाँ से फेमस हुई थी। तो ये ड्रेस पहन के मैंने पहली बार वहाँ पे डांस किया था 83 में। हम लोग यहाँ रहते हैं, ये शास्त्री नगर पहले रहते थे यहाँ पे, जहाँ से मैं इस जगह से अमेरिका गई, यहाँ से इस देरों में से ये सफ़र मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ।

झांका तो हो गया, मैंने पुराना सफ़र आपको दिखाया और पुरानी यादें ताज़ा करी। तो अब चलते हैं वापस स्वर्ण फार्म हाउस और वहाँ पे थोड़ा डांस करेंगे।

रोटी सब्जी और रोटी रोटी रोटी रोटी रोटी रोटी। आज हमारे खाने में बना है ये तो दही और चीनी है, ये तो दही और चीनी, और ये मेरे साकार की सब्जी है जो तोरू की सब्जी है। इसमें सिर्फ हरी मिर्ची डाली है और हल्दी डाली है और टमाटर है, और ये मेरे सिंगोड़े की रोटी है, और ये खीरा है। ये मेरा

कांकन हो गई, इसको कांकन कहते हैं, इसको पुंछिया कहते हैं, जो ये बड़ा वाला जो फुंदी होती है इसको बाजूबंद कहते हैं। तो पता नहीं ऊपर वाले का कोई ऑर्डर ही है कि मैं पहले ही एडवांस बना के रखूँ, क्योंकि मैंने 81 में तो स्टार्ट ही कर दिया था, ये 79 में मैंने बनाई थी ये ड्रेस। बाबा रामदेव जा रहे थे तब मैंने पापा से पैसे मांगे और हम लोग सारे जाके ये काली ड्रेस बना के इसको अलग अलग कलर डाल के सतरंगी ड्रेस बनाई और ये मेरे प्रोग्राम में काम आई। बाबा की गई थी मैं पहन के रामदेव राम। मैं बहुत छोटी थी, पापा की बहुत लाडली थी, तो मैंने एक बार पापा से पूछा था, मैंने कहा पापा मैं ही आपकी लाडली क्यों हूँ, मुझे आप इतना प्यार से क्यों रखते हैं। तो मेरे पापा ने कहा कि तू मेरी स्पेशल बेटी है, और पता है तू 3 भाइयों के बाद तू हुई और 5 साल बाद हुई, और माता रानी से दुआ मांगते मांगते तेरी माँ ने बहुत मांगा माता रानी से, फिर तू हुई। तो मेरे को पापा ऐसे टाल देते थे हर बार।

5-6 साल की होगी, तो एक बार मेरे सामने एक बच्ची हुई थी, मैं खुद एक खड़े खड़े देख रही थी वहाँ पे, लड़की हुई थी, तंबू में डेरों में तो होते थे हमारे, तो औरतें पर्दे करके जन्माया और मैं वहीं खड़ी थी। मैंने जब देखा तो बच्ची रो रही, रोती हुई बच्ची को खड्डा खोद के और उसमें गाड़ दिया जिंदे रोते रोते। तो मैं उन औरतों के पत्थर मार रही थी, तो एक औरत आई, मेरा हाथ पकड़ा, मेरी माँ के हाथ में थमाया कि तेरी छोरी को संभाल, ये वहाँ पत्थर मार रही है, पुकार रही है, वहाँ पे बच्चा मार दिया, बच्चा मार दिया। तो मेरे पापा ने मुझे धमकाया, बोले नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, मेरी माँ ने भी कहा नहीं करते। मैंने कहा ऐसा क्यों है? तो मैं जब दो रोज रोटी नहीं खाई, मेरे पापा ने कहा, बोले बेटा तेरे को मैं कहानी सुनाता हूँ। फिर मेरे को पापा मेरी स्टोरी मेरी कहानी के जरिए सुनाई मुझे, 5-6 के बीच में थी, तब मुझे पता चला कि मुझे गाड़ दिया था और मेरी माँ ने मुझे निकाला।

0: starting this edition with the top political story that we are tracking. Barely hours after the joint CJP Congress protest in Delhi, the Delhi police have taken Hindutva influencer Swatantra Bhardwaj into custody. Now, the case dates back to July of 23rd when Bhardwaj allegedly attacked the father of one of the protesters in Delhi. The police has invoked the SCST Act along with charges of voluntarily causing hurt and wrongful restraint as well. An attempt to murder charge is still under consideration, pending medical reports reacting to development. The protester who filed the case called this the first step towards justice. Meanwhile, Union Minister Chirag Paswan has distanced himself from the controversy, saying that his name was misused and has asked Delhi police to investigate.
1: हम अभी काफ़ी देर अंदर थे, पुलिस ऑफिसर्स के साथ थे, उन्होंने हमारे साथ कॉपरेट किया और वो कह रहे हैं कि 72 आवर्स के अंदर स्वतंत्र की गिरफ्तारी होगी, उसे अरेस्ट किया जाएगा और जल्द ही उन्होंने कहा है कि वो उनको अरेस्ट करेंगे
2: और
1: हाँ 72 घंटे के अंदर, और साथ ही वो कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे और इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और हमें भरोसा है कि ये वाकई में इस पे काम करेंगे। जिस तरीके से अब तक ये डिले करते आ रहे थे, अब ये और नहीं करेंगे।
3: ये खुद कह रहे, डंकी की चोट पे कह रहे, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम ट्रंप, नेतन्याहू, जितना को भी, अभी तो राहुल गांधी उतरा है ना, हम तो कह रहे हैं भारत के अंदर जितना विपक्ष नेता है, तुम जितना विपक्ष की सपोर्टर है, उन सारे लोग को लेके ग्राउंड पे उतर जाओ, तो भी अगर मेरा बाल विभाग कर दो तो मान जाए। नहीं हो सकता सर, जलवा है हमारा।
4: देखिए, जो जंतर मंतर में हिंसा हुआ था, जो ये स्वतंत्र नाम के गुंडे और उनके जो गैंग के मेंबर्स थे, वो घुस के उन्होंने एक दलित फैमिली, निशु, नाबालिग लड़की, उनके पिताजी के साथ जो बर्बरता की, संजय जी के साथ, उस मामले को लेके पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही थी, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही थी। सो मच सो कि अब ये गुंडा ऑनलाइन जाके अपना वीडियोज़ बना रहा है, रील्स काट रहा है और इंटरव्यूज़ दे रहा है, ये बोलते हुए कि मैंने अटेम्प्ट टू मर्डर किया था, लेकिन मुझे जेल में एक रात भी रुकना नहीं पड़ा। एंड इसलिए आज हम लोग गए एंड एडिशनल DCP, SHO, ACP और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उनको हमने बताया, हमारी सारी मांगे पूरी की गई।
5: इस विषय की गंभीरता को समझते हुए और क्योंकि उस व्यक्ति ने कई राजनेताओं के साथ साथ मेरे भी नाम का मिसयूज करने का